0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, आज 22 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 16 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 20% चांस है बारिश के आज, लेकिन सनसेट होगा 7:36 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत्यकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के फिर से लंच बॉक्स शो में। वेल यस, अगर आप मुझे सुन रहे हैं 12 बजे से तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अगर आपने मुझे अभी भी ज्वाइन किया तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। काफी मैसेजेस आए हैं, एक सवाल क्या था कि आज कौन से सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन अपना जन्मदिन अपना बर्थडे मना रहे हैं। 1981 को ये पैदा हुए थे, बट 2-time वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके हैं और 2 बार एज अ कोच भी चैंपियन रह चुके हैं अलग स्पोर्ट अलग कंपटीशन में, अलग नहीं एक्चुअली सेम, हाँ वन ऑफ इट इज सेम। या सो यस, आप मुझे अभी भी जवाब दे सकते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट में आपको बताने वाला हूँ, कहीं मत जाइए। लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी आप बने रहिए और एक कहानी भी लेके आने वाला हूँ इस आर में। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी आज के इस लंच बॉक्स शो में।
0: बचाओ के

0: वेल यस, ये रही मोटिवेशन कहानी आज की। वेल यस, एक यंग लड़का अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और उसे लगता था कि वो कितनी भी मेहनत कर ले, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक दिन वो एक ओल्ड टीचर के पास गया और बोला, सर मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ दैट मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। और टीचर ने उनसे कहा, चलो पहले चाय पीते हैं। टीचर ने कप में चाय डालनी शुरू करी, कप बाहर गिर गया, लेकिन टीचर चाय डालते ही रहा। चाय कप से बाहर गिरती रही और लड़के ने फिर तुरंत से पूछा, सर कप तो भर चुका है, आप और चाय क्यों डाले जा रहे हो? टीचर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, जब कप पहले से भरा हुआ है तो उसमें और कुछ नहीं आ सकता। फिर टीचर ने कहा, तुम्हारी लाइफ ही ऐसी कप की तरह है, तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि तुम्हें सब पता है, तुम्हारी किस्मत खराब है और तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब तक तुम अपनी पुरानी सोच को खाली नहीं करोगे, तब तक कुछ नया कैसे सीखोगे? ये बात उस लड़के को समझ आ गई। उसने अपनी गलतियों को फेलर समझना बंद किया और उनसे सीखना भी शुरू किया। और फिर उसने दूसरे की एडवाइस भी लेनी शुरू कर सुननी शुरू की, नए आइडियाज ट्राई किए, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ को बदलना शुरू किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी गाइस, लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी सोच होती है। हम अक्सर अपनी पुरानी फेलर्स, ईगो और नेगेटिव थॉट्स को इतना पकड़ कर रख देते हैं कि नए अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते। और याद रखिए, अगर लाइफ में कुछ नया पाना है तो कभी कभी पुराने सोच को भी छोड़ना पड़ता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को हर दिन बेटर बनाने की कोशिश करो। बिकॉज अ क्लोज्ड माइंड कैन मिस 1000 अपॉर्चुनिटीज, बट एन ओपन माइंड कैन डिस्कवर 1000 पॉसिबिलिटीज।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम। इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
7: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
8: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
9: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
10: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
11: Your favorite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki. All together Auckland.
1: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-44-2288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
12: दिवाली बस आने ही वाली है तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू और सबसे बढ़िया बात आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली
1: Lunchbox with Ketan.
13: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम. Lunchtime Rant Line.
0: चलिए बात करते हैं Lunchtime Rant Line की. यहाँ पे एक मैसेज आया मुझे विक्रम भाई का. वो कहते हैं, My rant is about people who play music or videos so loudly on their phone while sitting on the bus. I was traveling home after work yesterday and someone nearby was watching videos at full volume. No headphones, no consideration of for anyone around them. Everyone was tired and we had to listen to their videos the whole way. If you want to watch something, please use your headphone. Public transport is not your personal entertainment room. बात तो सही है, बात तो सही है. But again, मुझे जो चीज़ missing लग रही है, I am not sure अगर आपने उनको consult किया है, नहीं है. Because कभी-कभी क्या होता है, definitely, you know, जो आपने कहा है, बिल्कुल सही है. बट कभी कभी क्या होता है सामने वाले को रियलाइज नहीं होता है और वो इतना थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाता है दैट ही डजंट रियलाइज कि भाई और भी लोग हैं या फिर और भी लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं. सेम ऐसा आप बात करते करते कभी लाउड हो जाते हैं, कभी दिखता नहीं कि अगल बगल कोई सुन तो नहीं रहा है एटसेट्रा. सो सेम, सो उस केस में ये हो सकता है दैट यू जस्ट बोल दो उनको पोलाइटली कि ब्रो इफ यू डोंट माइंड कैन यू जस्ट डाउनग्रेड योर वॉल्यूम, डाउनसाइज योर वॉल्यूम. सो या, so yeah, it is very easy to just go ahead and tell it rather than you know just getting frustrated or andar hi andar aapko gussa bhi aata rahe ye sab bhi ho. So yeah, it's quite okay to do so, right? But thank you again Vikram bhai, thank you again aapke is message ke liye. Enjoy the song.
1: Lunch ke munch pe Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: Well, एक सवाल किया था आप सभी से कि आज किसका जन्मदिन है। काफी लोगों ने रिप्लाई किया है मुझे, सो यस सभी का जवाब सही है सिवाय दो के। सो यस गौतम गंभीर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। वो इंडिया के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन हैं और जो अपनी फाइटिंग स्पिरिट और प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने 75 रन बनाए, और 2011 वर्ल्ड कप के श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने 97 रन की काफ़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली थी। दोनों मैचेस में उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया की विक्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद गंभीर पॉलिटिक्स में आए और फिर कोचिंग की तरफ मूव किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर के रूप में उन्होंने 2024 में आईपीएल जीत टाइटल भी जीता। जुलाई 2024 में वो इंडिया के मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच भी बने और उनकी कोचिंग में इंडिया ने 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी। गंभीर की जो कोचिंग जर्नी है ट्रॉफी के साथ काफ़ी चैलेंजेस भी लेके आई है। वाइट बॉल क्रिकेट में सक्सेस के बावजूद इंडिया टीम को टेस्ट क्रिकेट में कुछ टफ डिफीट्स का सामना करना पड़ा। शुरुआत हुई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सो यस ये थी इनकी कहानी, बट ऑफ कोर्स हेड कोच हैं तो कारवा जो है यही, और हार जीत तो होती रहती है। सो यस आप मुझे बताइए लाइक इफ यू वॉन्ट टू विश गंभीर गौतम गंभीर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं यहाँ पे एंड लेट्स सेलिब्रेट हिज बर्थडे।

0: वेल, अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। किरीबाटी के 3 लोग समुद्र में 4 दिन तक लापता रहने के बाद रेस्क्यू किए जा चुके हैं। किरीबाटी के 3 लोग एक छोटी बोट में समुद्र में लापता हो गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड एयरफोर्स की हेल्प से उन्हें सेफली रेस्क्यू कर दिया गया है। न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के मुताबिक ये लोग 7 अक्टूबर से मिसिंग थे। संडे को उनकी 3.7 मीटर लॉन्ग व्हाइट फाइबर ग्लास बोट एबियांग आइलैंड और किरीबाटी की कैपिटल तारावा के बीच के एरिया में मिली। रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स के P-8A पोसेडोन एयरक्राफ्ट के क्रूज ने बोट को लोकेट किया और रेस्क्यू टीम्स के पास पहुंचे और उस पर नजर भी रखी। बाद में एक रेस्क्यू वेसल ने तीनों को सेफली सेफ्टी तक पहुंचाया। ये ऑपरेशन दिखाता है कि पैसिफिक रीजन में समुद्र में लापता लोगों को ढूंढने के लिए इंटरनेशनल सर्च और रेस्क्यू कॉपरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
1: Diwali Ramayan Gatha brought to you by Fortune Foods with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win. Big Bazaar, your one-stop Diwali superstore. Shop online at bigbazaar.co.nz. Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Finance World, your trusted finance advisory in South Auckland. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Arjun Supermarket and Food for Less, located in New Lynn and Botany. Sona संसार परंपरा की चमक त्योहार की पसंद। Shine out with specials. Visit Sona Sansar Papa Toy and Mount Roskill. And Ramayana movie releasing this Diwali through Forum Films.
2: हनुमान जी के मुख से प्रभु राम के आगमन की बात सुनते ही पूरी अयोध्या नगरी में

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: Breakfast show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This
5: record,
4: is my fancy
5: say.
4: English. That's a very.
5: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Weekdays, 6 to 10 a.m.
7: The trade-tested cabin sale is on now with up to 20% off our entire range. Nordic timber, easy to build and over 30 models to choose from. Make a backyard yoga studio or just build a bar. Genius! Head to trade-tested today.
8: Ends November 2nd.
9: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Visit your local Flooring Extra showroom and shop the wool sale today.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: Glad I got my enrollment sorted the other day.
12: See, mate, I told you it was easy.
13: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
12: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
13: Really? What if I miss it?
12: Well, your vote won't count for this year's election.
13: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
14: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
15: दिवाली आई खुशियां लाई BFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं BFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रो में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियां बढ़ाएं BFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च BFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई
16: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं प्योर मार्बल मूर्तिज कॉपर मूर्तिज गन मेटल मूर्तिज देवी देवताओं के वस्त्र सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स मिरर्स कर्टन्स सोफा कवर्स बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोईटोई योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि
17: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
18: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar chitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
19: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापटोईटोई में
20: Diwali bas aane hi wali hai. So the cosmetic clinic Sylvia Park has a special offer. Up se leke Monday tak get 50% off selected skin and laser treatments. Skin rejuvenation se leke laser treatments tak. The experienced team will help create a program tailored for you. Aur sabse badhiya baat, aapki consultation bilkul free hai. Book online at thecosmeticclinic.co.nz. Selected treatments par 50% off on now. The cosmetic clinic Sylvia Park ki taraf se. Happy Diwali.
2: Lunchbox with Ketan.
21: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम
2: लंच के मंच पे
22: पर अभी की खबर यह है कि शाहरुख खान के बर्थडे पर किंग का धमाकेदार टीजर आने की तैयारी में लग चुका है पूरा बॉलीवुड के जो निर्माता निर्देशक हैं वैसे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग एक्शन फिल्म किंग को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद 2 नवंबर को शाहरुख खान के बर्थडे पर फिल्म का एक्सप्लोसिव टीजर लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए हैं। फिल्म में SRK एक नए और पावरफुल एक्शन अवतार में नजर आएंगे और इस प्रोजेक्ट में उनकी डॉटर सुहाना खान भी है और फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मारफ्लिक्स पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के टीजर और रिलीज से जुड़ी डिटेल्स को लेकर फैंस काफी क्यूरियस है, लेकिन ध्यान रहे ये रिपोर्ट टीजर लॉन्च की प्लानिंग के बारे में है। 13 अक्टूबर 2026 तक इस स्पेसिफिक बर्थडे लॉन्च की ऑफिशियल कंफर्मेशन क्लियर नहीं थी। सो यस, लेट्स वेट एंड वॉच क्या अपडेट आता है इस बारे में।
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: Diggy.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Well, hamari team, yani ki hum radio, hum FM, aapke liye ले जाना चाहते हैं एक बहुत ही बढ़िया और बड़े मैच में। जी हाँ, ऑल व्हाइट्स न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का एक्साइटिंग मैच होने वाला है 12 नवंबर को, थर्सडे को, ऑकलैंड के गो मीडिया स्टेडियम में। हम एफएम और न्यूजीलैंड फुटबॉल की तरफ से आप जीत सकते हैं फ्री डबल पासेस। एंट्री करने के लिए हम एफएम के फेसबुक पेज पर जाओ, अपने फ्रेंड्स को टैग करो,

फाइनल स्कोर की प्रेडिक्शन कमेंट करो, तो जल्दी पार्टिसिपेट करो और लाइव मैच देखने का मौका जो है वो उसमें ड्रॉ में शामिल हो जाओ। हम FM कम्युनिटी को जोड़ता है फील पर भी और फील के बाहर भी।

0: Kia ora, namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox और यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की. इस आर में भी आपके लिए लेके आऊंगा मैं स्पोर्ट्स की खबर, कुछ लेटेस्ट खबर यहाँ पे, और एक और मौका जहाँ पे आप जीत सकते हैं ड्रॉ में शामिल होने का मौका, प्लस बहुत सारा ढेर सारा पैसा, कैश, वाउचर्स एटसेट्रा. क्या एग्जैक्टली उसके लिए तो आप बस सुनिए, एंजॉय करिए ये शो और एंजॉय करिए ये भी गाना.
1: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक। अभी की लेटेस्ट खबर में लेके आया हूँ, नॉर्थ शोर पर वुमेन की फैटल एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। वेल, ऑकलैंड के नॉर्थ शोर के एक दुखद खबर सामने आई है। पुलिस एक फैटल रोड एक्सीडेंट की जांच कर रही है, जिसमें एक वुमेन की जान चली गई है। एक लोकल न्यूज के मुताबिक मंडे शाम करीब 6:37 पर पुलिस को ट्रिस्टम एवेन्यू पर वायराव रोड के इंटरसेक्शन पर एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिली है। वुमेन को व्हीकल ने टक्कर मारी थी और इस इंसिडेंट के बाद उनकी डेथ भी हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अगर किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर डैश कैम फुटेज है तो पुलिस को तुरंत आप बता सकते हैं, 105 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी नॉर्थ शोर से जुड़ी कुछ लेटेस्ट खबर, बट आप बने रहिए, मैं स्पोर्ट्स की खबर लेके आने वाला हूँ कुछ ही पलों में।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
3: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
3: बस इतना ही।
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
5: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
11: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
10: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं। हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
12: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland.
13: How does one person finance on a new Jayco sound? Right now at West City Omura Jayco, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jayco J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jayco. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
14: रुजबे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
15: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलीडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
14: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
15: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलीडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
14: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
15: बुक नाउ विद सन टूर्स।
14: कॉल करें 0800 478686।
16: India aa raha hai Auckland and the Blue Tigers need your voice behind them. Dekhiye India ko All Whites ki against Go Media Stadium Thursday 12th November ko. Ek rare chance apni national team ko New Zealand ki zameen par live dekhne ka. Bring the family, wear your colours and fill the stadium with pride. Adult tickets sirf $20 se shuru, kids $10 se plus booking fees. Book now at Ticketek and be there for a historic night.

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay.
3: Well, स्पोर्ट्स की खबर बताऊं तो ऑल ब्लैक्स नंबर 10 जर्सी के लिए कौन होगा फर्स्ट चॉइस. ऑल ब्लैक्स के अपकमिंग ब्लेड इज स्लो कप क्लैश में सबकी नजरें जो है वो यंग प्लेमेकर जॉश जेकम पर है. सवाल ये है कि क्या जेकॉम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में स्टार्टिंग के नंबर 10 जर्सी मिलेगी या नहीं. ईडन पार्क में जीत के बाद न्यूजीलैंड की टीम को इंजरीज की वजह से कई चेंजेस करने पड़ रहे हैं. लेरोय कार्टर, असाफो ओमुआ और एंटोन सेगनर की अनअवेलेबिलिटी ने कोचिंग स्टाफ की मुश्किलें जो है वो काफी बढ़ा दी है. अब कोच डेव रेनी के सामने दो ऑप्शंस हैं, जॉश जेकॉम जैसे इमर्जिंग टैलेंट को मौका देना या फिर डैमियन मैकेंजी और ब्यूडन बैरेट के जो एक्सपीरियंस है उस पर भरोसा करना. ब्लेडिस्लो कप रिटेन हो चुका है लेकिन सिडनी में टीम सिलेक्शन का ये डिसीजन जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्या जेकॉम को मिलेगा नंबर 10 का मौका या इसके जवाब ऑफिशियल टीम अनाउंसमेंट के बाद ही मिलेगी. रग्बी की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बस हमारे साथ जुड़ते रहे, हम यहाँ पे बताते रहते हैं.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

चलिए मौका आ चुका है यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हिस्सा लेने का. विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम. तो कान खुले रखिए और क्या भेजना है, क्या लिख के भेजना है वो मैं अभी बताता हूँ. बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू 30 अक्टूबर तक ये 30 अक्टूबर को रिलीज होगा विद द नेम. सो यस, आज का जो स्पेशल वर्ड है जो आपको लिख के मुझे भेजना है वो है HL. हैरिंगटन लिविंग का इनिशियल है HL स्पेस. अपने नाम के साथ मुझे 5599 पे भेज दीजिए. हैरिंगटन लिविंग मनुकाओ स्प्रिंग सेल इज ऑन नाउ. आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फर्नीचर मिलेंगे वहां पे. 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ओनली एट हैरिंगटन लिविंग मनुकाओ. इसके जवाब में ऑफकोर्स अगर आप ड्रॉ में शामिल होते हैं और जीतते हैं तो जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग होम डेको और फर्नीचर वाउचर. एक लकी विनर भी उसमें भी होगा. विजिट hum.rua.nz फॉर टर्म्स एंड कंडीशन. एंड आपके पास ठीक 5 मिनट है अभी से जहां पे आप इन सारे मैसेजेस को भेज सकते हैं सो दैट यू गेट इन टू ड्रॉ एंड आपका किस्मत आजमाइए यहाँ पे.

0: एक और मौका है आप सभी के लिए. हम वुड लव टू सेलिब्रेट समवन स्पेशल इन योर लाइफ, एक दिया एक कहानी में, जिसके सेगमेंट में आपको मौका दिया जाएगा. आप हमें कॉल करेंगे 0800-004-866 पे और बताएंगे उस शख्स का नाम जो आपके फैमिली में तो नहीं है लेकिन स्टिल मोर देन अ फैमिली और नॉट लेसर देन फैमिली एज वेल. तो आप उसके जवाब के साथ हमें कॉल कर सकते हैं एंड आप उसी के थ्रू ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जीत सकते हैं $300 के उपहार. जी हाँ, दिवाली शाउट आउट. ऑफकोर्स ये बहुत ही खूबसूरत मौका है यहाँ पे आपको अगर एक शाउट आउट देना है अपने उस चहीते शख्स की, मेक श्योर वो आपकी फैमिली से ना हो बस. बट यस, दिस दिवाली लेट्स सेलिब्रेट द पीपल हु लव हु लाइट्स अप योर लाइफ. सो यस सर, इसका ड्रॉ जो होगा वो होगा 6 नवंबर को.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हाँ. वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rewind. Sirf Rova par.
1: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe where dreams begin.
2: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
3: MediaWorks Complaints. How can I help?
4: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
3: Nice.
4: And you talked me into creating this funny character.
3: Great.
4: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
3: Are you?
4: Yes.
3: Are you Bobby the Baker?
4: Yes.
3: What's that thing you do again?
4: Stop it.
3: You bring the mouth.
4: Stop it.
3: I'll bring the pie.
4: Stop it, please.
3: Okay.
4: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
3: So what's the problem?
4: My name's Bruce.
5: Advertise with
6: MediaWorks.
3: New Zealand listens to us.
7: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.

0: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-44-2288. Lotus Foreign Exchange. Getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
1: बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं प्योर मार्बल मूर्तिज कॉपर मूर्तिज गन मेटल मूर्तिज देवी देवताओं के वस्त्र सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स मिरर्स कर्टन्स सोफा कवर्स वीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोई योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि
2: रुजबेन 2026 में ना बहुत काम कर लिया है अब तो ब्रेक बनता है
3: बिल्कुल तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक बाली और बैंकॉक
2: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में
3: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज
2: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज
3: बुक नाउ विद सन टूर्स
2: कॉल करें 0800-478-688
4: इस दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए
5: अरे तेजल चल जल्दी जाइए धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार में तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता सोना संसार
4: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ 190 स्टोनाट रोड माउंट रॉस किल कॉल 0962933333
6: हम
7: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स लंच बॉक्स विद केतन
8: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं
7: इसके पीछे
6: हम
7: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI

आपको भी, एंड आई होप कि आपको भी शो पसंद आएगा, जो मौके दिए हैं उसे भी आपने अच्छे से अवेल किया है. सो थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून बिकॉज सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली फॉर द कॉफी ब्रेक एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, your favorite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki. All together Auckland.
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI।
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: Time check.
10: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
9: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Good afternoon, I'm Bridget Hastie with the latest at 3. A teenager who went missing on a school hike in Ruahine Forest Park has been found. A search began last night after the pupil became separated from their group. Taradale High says it's thrilled to confirm the student has since been located by a helicopter and is now with his parents. A sawmill near Tauranga has been ordered to pay more than $250,000 for the loss of a worker's finger and part of another. The damage was caused by a rotating edger drum for cleaning up wood in September 2022. Works say found it would rotate for approximately 15 minutes after power was switched off, creating a major hazard. Some of our most popular Pacific destinations are at risk of elevated cyclone activity over the next 6 months. Earth Sciences New Zealand Chief Scientist Chris Brandolino says that's the islands to the east of the international dateline.
12: Areas like Samoa, America Samoa, Niue, perhaps toward Tokelau, also the Cook Islands, particularly the Northern Cook Islands.
11: New data reveals Luna is Christchurch's favourite dog name, followed closely by Charlie. The City Council registry also features 30 Kevins, 15 Garys and 5 Sausages. It says Labradors dominate the breeds. To sport, the track cycling world champs are starting in Shanghai this hour. It's the start of the Olympic qualification cycle. In the opening session, Kiwis feature in men's and women's team pursuit qualifying and in the women's team sprint. And to rugby league with Machinery House in a league of their own, the World Cup kicks off tomorrow night in Sydney. There's disappointment for departing Warriors forward Marata Nukori, who is out of the Cook Islands campaign with a groin injury.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 22 डिग्रीज की तरह फील हो रहा है और आज को ओवरनाइट 14 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। सनसेट आज का 7:37 पर।
9: द बीट ऑफ बॉलीवुड
14: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
9: कॉफी ब्रेक विद सैंडी।
13: 3:02 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कैसे हैं आप? एंड कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है। इट इज़ 14th October। अगर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अ वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड अगर इस समय पर अपने बच्चों को पिक करने जा रहे हैं या फिर पिक करके आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे। एंड अगर समय पर आप काम पे हैं तो नॉट टू लॉन्ग टू गो नाउ। So, how's your day going so far? So far, कैसा दिन जा रहा है? You know, गर्मी बड़ी हो चुकी है. Like, full-on गर्मी वाली feeling already आ रही है, which is actually good. मेरे को तो खैर ऐसा वाला weather अच्छा लग रहा है. और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के अभी गर्मियों के कपड़े निकल चुके होंगे. डू यू डू दिस? आप भी क्या ये हमेशा करते हैं कि एवरी टाइम जो वेदर चेंज होता है, यू ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब कि क्या पहनने वाला है, वापस कहीं पे सूट केस में या जहाँ पे भी आप स्टोर करते होंगे वहाँ पे रखो, एंड जो पहनने वाले कपड़े हैं उनको बाहर निकालो, या फिर आपका वार्डरोब ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पे ऑलरेडी सेक्शंस हैं और आपका सारे कपड़े एक ही जगह पे है. What do you prefer? What do you do? So do you keep changing? क्योंकि मैं change करती रहती हूँ और मेरा अक्सर change होता रहता है weather की तरह. क्या करें, weather predictable नहीं है तो wardrobe कैसे predictable हो सकती है? तो और मुझे तो लगता है कि there are few things like एक jacket जो है ना, वो एक jacket तो हमें all the time in all seasons रखनी ही पड़ती है बाहर. ऐसा कोई सीज़न नहीं होता होगा यहाँ पे न्यूजीलैंड में कि जहाँ पे हम जैकेट्स को परमानेंटली अंदर स्टोर करके रख सकते हैं. एक आधी जैकेट हमें बाहर रखनी पड़ती है. आप हमेशा अपने साथ ऐसा जब भी जाते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ी जाएगी, ऐसा क्या लेके जाते हैं? काफ़ी लोगों के लिए अम्ब्रेला भी होगा कि गाड़ी में अम्ब्रेला रखते हैं या जैकेट रखते हैं. आप हमेशा क्या रखते हैं, शेयर कीजिए. यहाँ पे 5599 इज़ अ नंबर. एंड काफ़ी बार लोगों के लिए ये जो टाइम होता है जब कपड़े अंदर बाहर कर रहे होते हैं, परफेक्ट टाइम है घर की फुल क्लीनिंग करने के लिए, डीप क्लीनिंग करने के लिए भी. बिकॉज एनीवे दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले पहले काफ़ी लोग अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, या फिर स्प्रिंग क्लीनिंग भी हम इसको कहते हैं, स्प्रिंग क्लीनिंग भी करते हैं. तो हैव यू ऑलरेडी डन इट? बिकॉज नवरात्रि तो खैर शुरू हो ही चुके हैं. हैव यू ऑलरेडी डन इट? या फिर ऑन द वे कर रहे हैं, प्लान्ड है कमिंग वीकेंड पे, क्या सीन क्या है तो बताइए. यहाँ पे 0800 हम पे कॉल करके भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैसेज करके भी आप शेयर कर सकते हैं 5599 पर.

0: वाजिद की आवाज में ये गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे। 3:13 हो चुके हैं और दिवाली के टाइम पे ढेर सारे गिव अवेज जीतने का मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है। $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जीतने का आपको मौका यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी की कहानी शेयर करते हैं यहाँ पे, अपनी कहानी बेसिकली दिवाली शाउट आउट में, तो उसमें भी $300 जीतने का मौका है। सो टोटल ऑफ दिवाली के मौके पे $5,300 वर्थ ऑफ मनी जीतने का मौका है आपके पास यहाँ पे। और इसी के साथ साथ कुछ और इवेंट्स भी आपके सुपर सिटी में हो रहे हैं जिसके बारे में आपको बता दूँ। दिवाली की बात हम कर ही रहे हैं तो नॉर्थ शोर दिवाली ये भी हो रही है। सो नॉर्थ शोर दिवाली में जो है सैटरडे 24 अक्टूबर, परफेक्ट वेदर भी है और लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा नॉर्थ शोर में जाके इसकी सेलिब्रेशन करने के लिए। सो सैटरडे 24 अक्टूबर को नॉर्थ शोर में दिवाली की सेलिब्रेशन करें टीम पुनीश एंड एना फ्रॉम बफर्ड एंड थॉमसन, दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे तक स्मॉल्स फॉर्म ताकापुना में। सो स्मॉल्स फॉर्म है SMALES, स्मॉल्स फॉर्म है ताकापुना में, वहाँ पे दोपहर के 12 से लेकर रात के 9 बजे तक ये सेलिब्रेशन होने वाली है, जहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेस रहेंगी थ्रू आउट द डे, फन एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, डिलीशियस फूड स्टॉल्स भी है, फेस्टिव शॉपिंग एंड और भी बहुत कुछ। और रात के 9 बजे एक बहुत ही अच्छा फायरवर्क डिस्प्ले भी होने वाला है। फ्री एंट्री ऑफ कोर्स एंड फ्री पार्किंग भी, ढेर सारी पार्किंग वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, तो मेक श्योर कि आप भी ज़रूर पहुँचिए ताकापुना में ये दिवाली की सेलिब्रेशन 24 अक्टूबर को 12 बजे से दोपहर के रात के 9 बजे तक।
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी। इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, PFSL, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
2: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
3: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
4: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
5: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
7: It's Carpet Court's massive 3-day sale. Right now, save thousands on carpet, vinyl and hard floor, including massive savings on big brands like Rhino. Bring in your floor measurements today. Hurry, sale ends Saturday, only at Carpet Court.
8: Now when you're in the loop with ANZ and jump on a bus, money loops back. Get 50% cashback on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT buses with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
9: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
11: Award goes to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
12: Kahani of Indelible Homes.

0: 3:19 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड न्यूजीलैंड में पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है इलेक्शन ईयर में, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट है। और इस बार मेरे को लगता है कि पहली बार ऐसा ईयर है जब कहीं पे कुछ भी हो सकता है, ये प्रिडिक्ट नहीं हम कर पा रहे हैं। अब लास्ट नाइट की जो डिबेट है इसी की ओर देख लो, एक नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है जस्ट इन केस अगर आपने इस डिबेट को मिस आउट किया है। काफ़ी सालों से, और कह सकते हैं कि पिछले कुछ सदियों से, पिछली 3 सदियों से विंस्टर पीटर हैज़ बीन द मैन जिसको हर कोई देखता है, जिसके ऊपर नाम है किंग मेकर का, नो विंस्टर पीटर। सो ही फॉर्म्स, मतलब उनके हाथ में होता है कई बार गवर्नमेंट को फॉर्म करना मोस्ट ऑफ द टाइम। बट नाउ देयर इज अ न्यू कंटेंडर एंटरिंग द किंग मेकर कन्वर्जन एंड वी टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर क्यूले वोंग। वेल, क्यूले वोंग से वैसे हम इसी थर्सडे को बात करने वाले हैं बिटवीन 5 to 6 PM, सुनना ज़रूर उनकी बातें यहाँ पे। एंड वो इसलिए बिकॉज ये जो कल डिबेट हुई थी, एक्चुअली में मल्टी पार्टी डिबेट थी, इसमें वो सॉ कि जो माइनर पार्टीज है दे आर गोइंग हेड टू हेड, एंड जो टाइमिंग है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है। सो जो पॉल था उसमें, जो बाद में पोलिंग हुई थी उसमें अपॉर्चुनिटी पार्टी को भी काफ़ी यू नो बैलेंस ऑफ पावर मिला था। क्यूले वोंग वॉज चैलेंज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी वन ऑन स्टेज, जिसमें विंस्टर पीटर थे, ग्रीन पार्टी की लीडर क्लोई भी थी, बट शी हेल्ड हर ग्राउंड। उसने डिफेंड किया हर विलिंगनेस टू वर्क विद डिफरेंट पार्टीज। अभी रिसेंटली क्रिस हिपकिंस ने भी बोला था कि आप उनको वोट मत कीजिएगा, आपका वोट वेस्ट हो जाएगा, ऐसा भी कमेंट्स आया था। बट शी डिफेंडेड कि शी इज़ विलिंग टू वर्क विद एवरी डिफरेंट पार्टी। और ये सवाल हम यहाँ पे भी उनसे पूछेंगे जब हम उनसे बात करेंगे। एंड शी मेड इट वेरी क्लियर शी वुडंट सपोर्ट अ गवर्नमेंट विद पीटर्स एज अ फॉरेन मिनिस्टर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी। मीनवाइल जो एक्ट के डेविड सेमर है, ही स्टूड फॉर्मली बिहाइंड पॉलिसीज अदर पार्टीज अपोज्ड, एंड मौरी पार्टी फोकस्ड ऑन विनिंग इलेक्टोरेट सीट्स। द बिग क्वेश्चन नाउ इज़ कि आर न्यूजीलैंड वोटर्स मूविंग अवे फ्रॉम वो जो ट्रेडिशनल बिग पार्टी बैटल होती थी, एंड कुड अ न्यू पोलिटिकल प्लेयर होल्ड द की टू नेक्स्ट गवर्नमेंट? यू नेवर नो। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ है वही आगे आए। ये जो नए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सो इट विल बी गुड टू हैव अ कन्वर्सेशन जो कि हम इसी थर्सडे को, वो कल करने वाले हैं, एक्चुअली में कल ही हम बातें करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर क्यूले वोंग से। तो अगर आपने कल रात को इनकी डिबेट देखी है, शी साउंड्स वेरी प्रोमिसिंग। यू नेवर नो, ये कल को ये किंग मेकर भी हो सकती है। सो अगर आपका कोई सवाल है अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर क्यूले वोंग से, मैसेज कीजिए यहाँ पे 5599 इज़ अ नंबर ड्राइव कीवर्ड के साथ। एंड मेक श्योर कि आप टाइम पर अपने सवाल यहाँ पे भेज रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि उस समय पर जब हम बात करते हैं लिमिटेड टाइम होता है, तो हमारे पास जो ऑलरेडी आपके जो सवाल आ चुके होते हैं वो प्रायोरिटी रहते हैं पूछने के लिए, रहते दैन जो उस समय पर सवाल आते हैं। सो मेक श्योर यू टेक्स्ट ओवर हेयर 5599 पर, आज ही आप सवाल भेज डालिए ड्राइव कीवर्ड के साथ। अपॉर्चुनिटी पार्टी की लीडर से क्या सवाल आप पूछना चाहेंगे?
1: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 3:31 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं फिलहाल कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे रिसेंटली इसी साल में अगस्त में एक और बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 7-year-old स्काइलर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। सो फॉर पुटिंग ऑन 50 स्वेटर्स जो होते हैं कार्डिगन्स एक ही साथ पहनने का, सो उससे पहले का रिकॉर्ड था 46 का। सो अगर आपके बच्चे स्वेटर नहीं पहनते हैं, खैर तो वेदर चला गया स्वेटर पहनने वाला, बट स्टिल कपड़े पहनने में कई बार बहुत वो नौटंकी करते हैं, ये रिकॉर्ड दिखाइए उनको जाके 50 स्वेटर्स एक ही बार में पहने हैं। बट द हार्ट वार्मिंग पार्ट इज़ नॉट जस्ट कि ही डिड दिस रिकॉर्ड दो, बट द पॉइंट इज़ कि इस बच्चे ने ये सब कुछ किया फॉर अ चैरिटी, फॉर अ क्लोदिंग ड्राइव। सो वट मेक्स अ स्टोरी इवन बेटर इज़ कि जो स्वेटर्स थे दे वर डिस्टाइन फॉर अ क्लोदिंग ड्राइव। सो ये जस्ट एक रिकॉर्ड नहीं था, इट वॉज अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एज वेल, एंड दैट इज़ वट ये स्टोरी जो है बहुत सही है। सो किड्स कैन बी क्रिएटिव, डिटर्मिंड एंड इनक्रेडिबली थाटफुल एज वेल। ये हमने भी यहाँ पर देखा है, जब आप में से काफ़ी पेरेंट्स जो है ये बच्चों को लेके यहाँ पर रेडीथॉन के टाइम पर आते हैं, उस समय पर उनके थॉट सुन के हम ही सरप्राइज हो जाते हैं कि यार हम इतने अपने बचपन में इतना थॉटफुल नहीं हुआ करते थे, इतना ज़्यादा गिविंग बैक वाली थिंकिंग नहीं होती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे में तो नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चों में वो है, जो कि बहुत सही बात है। सो आपके बच्चे में भी कोई अनयूजुअल टैलेंट है, वो कुछ करते हैं ऐसा, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर शेयर करते, वुड लव टू नो अबाउट इट। इफ़ योर किड हैज़ सम टैलेंट जिससे आप बहुत प्राउड है, एंड कई बार होता है ना कि आपको लगता होगा कि यार इसके बारे में क्या बात करनी, बट यू नेवर नो, इट कैन मोटिवेट समवन एल्स एक्चुअली। तो यहाँ पे कॉल करके या मैसेज करके भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 पर।
1: yeah.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: You went to Big Boss, right?
3: I went there once, yeah.
4: That was for Nikamma, na?
3: For Nikamma, yes.
4: So, what do you think about Salman Khan?
3: मैंने सलमान सर के एक गाने का कवर किया था. मुझे उन्होंने कहा था कि तुमको गाना गाना है एक

0: 3:41 एट द मोमेंट हो चुके हैं फिलहाल. कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी ऑल वाइट्स का मैच होने वाला है टीम इंडिया के साथ. फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, सो फुटबॉल फैंस गेट रेडी बिकॉज ऑल वाइट्स आर टेकिंग ऑन इंडिया इन ऑकलैंड थर्सडे 12th of November को थैंक्स टू न्यूजीलैंड फुटबॉल. सो आप यहाँ पे गो मीडिया स्टेडियम में लाइव इस मैच को देख सकते हैं. वन ऑफ यू जो कि डबल पास जीतेंगे, बाकी टिकट खरीद के जाइएगा देखने के लिए. सो अगर आपको ये डबल पास जीतना है, इस ड्रॉ में शामिल होना है, आपको करना क्या है, हमारे फेसबुक पेज पे जाना है, वहाँ पे फीचर्ड फोल्डर में पिंड पोस्ट है ऑल वाइट्स वर्सेज इंडिया के मैच की, उसके कमेंट सेक्शन में टैग अ फ्रेंड जिसके साथ आप जाना चाहते हैं, प्लस प्रेडिक्ट द स्कोर, प्रेडिक्ट द फाइनल स्कोर ऑफ दिस गेम, एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया 12 नवंबर को गो मीडिया स्टेडियम में होने वाला है. सो अगर आप इस मैच के लिए टिकट जीतना चाहते हैं तो गो टू आवर फेसबुक पेज जिसका नाम है हम 104.2 FM.
1: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development.

0: 3:47 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड जहाँ पे इवेंट्स के बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिवाली के इवेंट के बारे में बताया. एंड नाउ आपको एक ऐसे इवेंट के बारे में बता रही हूँ जो कि इसी जो आने वाले लॉन्ग वीकेंड पे एक्चुअली में होने वाला है. अम्बेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब आपके लिए 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चर टूर्नामेंट लेके आ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से हम आपको बताते आ रहे हैं कि अबाउट डिफरेंट स्पोर्ट्स जो वहाँ पे होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए और भी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दियो कि आप नॉट जस्ट स्पोर्ट्स वहाँ पे जाके देख सकते हैं जिसमें कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर होंगी, लेकिन साथ ही साथ कल्चरल इवेंट्स भी आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं. सो 24th एंड 25th अक्टूबर को कॉलिन लॉरी फील्ड्स जो कि 47 रेनॉल्ड्स रोड पुकेकोही में है, वहाँ पर आपको पहुँचना है. एक्साइटिंग 2 डे का सेलिब्रेशन है विच विल ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर. कॉम्पिटिशन्स, लाइव म्यूजिक, ये सब कुछ वहाँ पर रहेगा. इतना ही नहीं, आप वहाँ पर फ्री परफॉर्मेंस देख पाएंगे ऑफ पंजाबी सिंगर माशा अली. सो माशा अली जो कि सुपर्ब सिंगर है, इनका लाइव शो देखने वाला होता है. सो वन ऑफ द मेजर हाईलाइट इज कि इस पूरे टूर्नामेंट में 24th अक्टूबर को माशा अली लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. सो एक ऐसी सेलिब्रेशन है जो पूरी की पूरी फैमिली के साथ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज बच्चों के लिए राइड्स भी है वहाँ पे, खाने पीने के स्टॉल्स भी वहाँ पे रहेंगे. द इवेंट इज़ अल्कोहल फ्री, सो इट इज़ अ वेरी वेलकमिंग इन्वायरमेंट वहाँ पे रहने वाला है. सो बच्चों के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ पे रहने वाला है. सो यू कैन एक्चुअली गो दिस लॉन्ग वीकेंड जाके वहाँ पे, यू नो, आप पिकनिक टाइप भी कर सकते हैं. एंड एंट्री फ्री है फॉर एवरीवन, लेकिन अगर किसी को स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी रहेगी. सो सैटरडे 24th अक्टूबर एंड संडे 25th अक्टूबर, 2 दिन पुकेकोही में ये रहने वाला है. एंड आप भी वहाँ पे ज़रूर पहुँचे. इन केस अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्रदीप कुमार से बात कर सकते हैं. इनका नंबर है 021-238-5948. इट्स 021-238-5948.
1: Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: अंडा, अंडा, अंडा, अंडा, हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है. ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेल, मौसम की हालचाल। इस समय टेम्परेचर बाहर का ऑलमोस्ट 22 डिग्रीज है और आज का ओवरनाइट 14 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। वेदर बीन ऑलमोस्ट फाइन आज का एंड कल का वेदर भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है।
2: Drive show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: 4:03 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी। आज रुजबे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपका साथ जरूर दे रही हूँ 7 बजे तक। हाउ इज इट गोइंग सो फार। हम डे पे हम आ चुके हैं, 14 अक्टूबर है एंड नॉट टू लॉन्ग टू गो। बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड आर ऑन द वे। इसके बाद बहुत सारी छुट्टियाँ भी काफ़ी लोगों की शुरू होने वाली है, बट बिफोर दैट आई थिंक इट्स क्वाइट बिजी विद लॉट ऑफ पीपल। सो वेल, बिजी से याद आया कि अब करण जौहर बड़े बिजी होने वाले हैं। सो कॉफ़ी विद करण का अपेरेंटली लास्ट सीजन है ये। सो कई बार करण जौहर जब कॉफ़ी विद करण करते हैं तो उनका ये होता है कि यार इसके बाद नहीं करने वाला, जस्ट लाइक सलमान खान सीज कि इसके बाद बिग बॉस नहीं करने वाला। बट कॉफ़ी विद करण इज़ कमिंग बैक, सीजन 9 आने वाला है एंड ही मेड इट ऑफिशियल कि दिस इज़ अ लास्ट सीजन एंड द फर्स्ट गेस्ट इज़ सलमान खान। सो वंस अपन अ टाइम सलमान खान आ चुके हैं कॉफ़ी विद करण में एंड दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ एपिसोड। तो या ये सीज़न जो है सलमान खान से शुरू होने वाला है। इनफैक्ट सलमान खान ने ये क्वेश्चन रेज भी किया जो ट्रेलर हमने देखा है कि यू नो कहीं तुम ये बोल बोल के कि ये लास्ट सीज़न है, हम सबको तुमने मनाया है, हो सकता है ये तुम्हारा लास्ट ना हो। बट या करण जौहर कन्फर्म कि दिस इज़ द लास्ट सीज़न एंड अपेरेंटली जो लिस्ट है काफ़ी हाई प्रोफाइल पेयरिंग एंड कपल्स की लिस्ट है, जैसे कि अभी ये कन्फर्म नहीं है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान दे माइट बी कमिंग। ये पॉसिबल भी हो सकता है बिकॉज करण जौहर के ये जो कॉफ़ी विद करण है ना, इसके हर एक सीजन में हमने करीना कपूर को देखा ही है। डिफरेंट रिलेशंस के साथ हमने करीना कपूर को देखा है, शाहिद कपूर के साथ भी देखा था हमने। एंड कमिंग टू दैट, हमने लाइक डिफरेंट लोगों के साथ हमने करीना कपूर को देखा है। एंड देन अनदर यूमर इज़ कि विजय देवरकोंडा एंड रश्मिका मंदना माइट बी कमिंग इन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा एडवानी, वरुण धवन एंड जाह्नवी कपूर आ सकते हैं। देन सिबलिंग सारा अली खान एंड इब्राहिम अली खान का भी नाम है। कुछ और लाइनअप भी है जैसे कि दिल चाहता है का रीयूनियन भी, जैसे कि आमिर खान, सैफ अली खान, फरहान अख्तर एंड अक्षय खन्ना। ये साथ में मुझे लगता है कि दिस गोना बी रियली गुड एपिसोड। मतलब करण जौहर के सामने आमिर खान, सैफ अली खान, फरहान अख्तर, अक्षय खन्ना, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत सही है। एंड एक्सपेक्टेड है कि दलजीत दोसांझ, विकी कौशल ये वहाँ पे आए। वेल, हो सकता है। इससे पहले वैसे दलजीत दोसांझ गए हैं कॉफ़ी विद करण में, बट अलॉन्ग विद बादशाह। एंड द न्यूज़ इज़ कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के साथ भी आ सकते हैं। वो तो मुझे लगता है बहुत ही सही एपिसोड होने वाला है बिकॉज शाहरुख खान की नॉलेज वेट तो है ही फेमस एंड आर्यन खान कम नहीं है। तो दोनों को साथ में, मुझे लगता है दोनों की केमिस्ट्री हमने साथ में किसी इंटरव्यू में ऐसे नहीं देखी है, तो ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एपिसोड रहने वाला है। एंड ऑल्सो द न्यूज़ इज़ कि समय रायना एंड फराह खान ये भी शायद आने वाले हैं कॉफ़ी विद करण में। लेट्स सी, ये जो मैंने लिस्ट अभी बोली है इसमें से कितने र्यूमर्स है, कितना सही है, ये अभी आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा। वैसे आई थिंक आज ही से शुरू हो रहा है कॉफ़ी विद करण।

4:15 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। फिलहाल ड्राइव शो आप यहाँ पे सुन रहे हैं। थोड़ी देर में लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला से भी हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। अगर आप आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे सवाल आप कर सकते हैं, अभी भेज सकते हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ। 5599 इज द नंबर। एंड आपको बता दें कि कल 15 अक्टूबर, कल यहाँ पे 5 बजे के बाद हम बात करने वाले हैं, स्पॉटलाइट पे डालने वाले हैं अपॉर्चुनिटी पार्टी की लीडर क्यूले वोंग को। सो क्यूले वोंग जो कि कल की डिबेट में बहुत ही, मतलब ऐसा लगा कि विंस्टर पीटर की जगह ये हो सकती है किंग मेकर। मतलब कल क्या डिबेट की थी क्यूले वोंग ने। सो आज तो नहीं, लेकिन यस, कल हम 5 बजे के बाद क्यूले वोंग के साथ बात करने वाले हैं। आपका कोई सवाल है पार्टी लीडर से तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं आज ही ड्राइव कीवर्ड के साथ। एंड दिस दिवाली आपके लिए हम रामायण की टाइमलेस स्टोरीज भी लेके आ रहे हैं। आपके लिए रामायण एक गाथा लेके आ रहे हैं जो कि 1 to 2 मिनट की एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स होता है। सो अक्रॉस डिफरेंट टाइमिंग्स थ्रू आउट द डे, सुबह 8:15 to 20 के बीच में, देन लंच बॉक्स में 1:30 PM एंड ड्राइव शो में 6:45 PM। इन तीनों टाइमिंग्स पे आप ये 1 to 2 मिनट का एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट सुनते हैं फ्रॉम रामायण। And it's a really nice one, guys. और अगर आप ये miss out कर लेते हैं, don't worry, आप दिवाली लिख के भेजिए 5599 पर। ऑटो रिप्लाई में हम आपको लिंक भेज देंगे जहाँ पर आप ये सुन सकते हैं। तो आज ये 6:45 पे यहाँ पर हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसके लिए भी just stay tuned.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. दो lucky winners. हर eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: Moisture और ventilation का problem लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
8: It's a very good time to go electric with Winger Motors. Limited time ke liye drive away in a new JQ J5 EV Summit. 0%

0: credit criteria. Fees, T's and C's apply.
1: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
2: Yes, Bebo.
1: Catch kya hai?
2: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
1: I still can't believe it. No catch.
2: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
3: PNC Supply.
4: Diwali bas aane hi wali hai. So the cosmetic clinic Sylvia Park has a special offer. Up se leke Monday tak, get 50% off selected skin and laser treatments. Skin rejuvenation se leke laser treatments tak. The experienced team will help create a program tailored for you. Aur sabse badhiya baat, aapki consultation bilkul free hai. Book online at thecosmeticclinic.co.nz. Selected treatments par 50% off on now. The Cosmetic Clinic Sylvia Park ki taraf se. Happy Diwali!
5: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
6: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
8: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
9: Main laun apna A game.
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
10: 422 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लॉजिक फाइनेंस से बहुत ही जल्दी मेरे साथ यहाँ पे गुरु केंडोला शामिल हो जाएंगे. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गुरु, हाउ आर यू?
11: गुड आफ्टरनून सैंडी जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो?
10: एकदम फर्स्ट क्लास है. एंड वेदर भी मुझे लगता है कि अभी फर्स्ट क्लास हो ही गया है.
11: ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल वेदर.
10: या सो
11: ब्यूटीफुल वेदर टू क्रूज आउट.
10: या तो अगर आप बाहर शॉप अराउंड करना चाहते हैं घरों का ये सब चीजों का, तो मेरे को लगता है बहुत ही सही वेदर है ये.
11: ब्यूटीफुल वेदर है बिल्कुल.
10: या सो गुरु, हमारे पास ना सवाल आया था यहाँ पे रिगार्डिंग पर्सनल लोन या कार लोन, कि अगर किसी को बिग परचेज करनी है या फिर तो उसके लिए वो पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं. बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि ऑलरेडी बहुत सारे डेट भी होते हैं, तो उसमें आप क्या एडवाइस देते हैं?
11: सी, अगर आपको अगर पर्सनल लोन्स चल रहे हैं ऑलरेडी आपके, सैंडी जी की आपने दो चार पर्सनल लोन ऑलरेडी चल रहे हैं और फिर आप एक गाड़ी लेना चाहते हो, तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी अगर लेंडर आपको पर्सनल लोन देता है या कोई भी लोन देता है, वो उसका एक असेसमेंट का क्राइटेरिया है और हर एक बैंक का और हर एक लेंडर का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है. बट जो उसका बेसिक रूल है वो यही है कि कितनी इनकम इनसाइड आ रही है और कितने एक्सपेंस बाहर जा रहे हैं. और उस एक्सपेंसेस में फिर आपकी ये जो आपकी जो रीपेमेंट्स हैं, जो आपके पर्सनल लोन्स की जो इधर उधर चल रही हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं, आपके बच्चों की कोई पर्सनल ट्यूशन फीस हैं, यू नो मतलब ऐसे जो फिक्स करते हैं, जब वो आप देखते हैं कि इनकम अंदर कितनी आ रही है बाहर कितनी आ रही है, तो क्या लोन दिया जा सकता है. तो कई बार क्या होता है कि आपके जो पर्सनल लोन चल रहे होते हैं उनकी जो रीपेमेंट्स होती हैं, अब आपने लिया होगा, हो सकता है दो साल के लिए, तीन साल के लिए, वो खत्म होने वाला आ रहा है कि बिल्कुल खत्म हो रहा है, और उसकी जो रीपेमेंट्स है वो बेसिकली आपकी अभी भी वो मतलब वही हाई चल रही है. तो जब उसको आप देखोगे, सर्विसिबिलिटी कई बार लूज हो जाती है. तो आपको जो एक्स्ट्रा लोन लेना था अभी आपको गाड़ी के लिए या पर्सनल लोन के लिए, वो मे बी आप उसमें अफोर्डेबल नहीं हो पाओगे. बट देन दे आर वेज कि जिसमें आप उन डेट्स को अगर आप कंसोलिडेट कर दो, अगर उस जो तीन चार डेट आपके चल रहे हैं ऑलरेडी, उसको एक साथ एक डेट में कन्वर्ट करके उसका जो लोन टर्म है, तो हो सकता है किसी लोन का आपका लोन टर्म दो साल रह गया होगा, किसी का तीन साल बचा है, किसी का पांच साल बचा है, बट ओवरऑल अगर हम तीनों को मिला के हम सबका ही पांच साल कर दें लाइक ओवरऑल, तो उसमें आपकी जो एक वन रीपेमेंट बनेगी इंटरेस्ट रेट जो भी उसको आपको वहाँ मिलेगा, इंटरेस्ट रेट भी आपको उसी बेस पे मिलता है कि आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है. Okay. अगर आपका वीक प्रोफाइल होगा यू विल गेट एक्सपेंसिव रेट, आपका गुड प्रोफाइल होगा यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट रेट्स, आपका मीडियम प्रोफाइल होगा यू विल गेट समवेयर इन द मिडल. सो इट ऑल द इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो गेट इन दिस पर्टिकुलर स्पेस ऑल्सो गेट डिसाइडेड बाय द हाउ सॉलिड द प्रोफाइल इज, हाउ सॉलिड इज योर क्रेडिट रेटिंग रेटिंग इज. तो जब आपका कंसोलिडेशन करने के बाद एक रीपेमेंट बन जाता है, समटाइम्स उसमें यू आपका हो सकता है इंटरेस्ट आप रेट आपको कम मिल गया, बट लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो कि आपने जो दो साल का लोन था वो अब आप पांच साल में उतार रहे हो, तो आप तीन साल के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरोगे. सो दैट मींस देयर इज एन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यू कैन पे. बट अगर आपके पास कैपेसिटी आती है किसी टाइम पे, आपके पास पैसा आ जाता है, तो इन द कंज्यूमर स्पेस यू कैन पे ऑफ दीज लोन्स विदाउट एनी पेनल्टीज. तो उसमें पेनल्टीज नहीं होती हैं कंज्यूमर लोन में. सो यू कैन यू नो देयर इज जस्ट नॉर्मल एडमिन फीस होती है जो अराउंड $50 to $100 होती है, पर आप उसको अर्ली पे ऑफ कर सकते हो. बट आज की डेट में बिकॉज यू वॉन्टेड टू बाय समथिंग और यू वॉन्ट टू गेट समवेयर, यू मेड दैट प्लान कि जिसमें आपने सारे डेट कंसोलिडेट कर दिए और उसमें आपने फिर एक्स्ट्रा टॉपअप भी डाल लिया सेम टाइम पे 5,000 to 10,000 का, डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी कैपेसिटी उसको अलाउ करती है.
10: Okay.
11: वो सारा मिला के एक ही लोन हो गया. एंड देन वन पेमेंट विल ओनली गो आउट ऑफ योर अकाउंट. यू डोंट हैव टू लुक फॉर योर कल उसकी पेमेंट जानी है, परसों उसकी जानी है, यू नो चौथे दिन उसकी जानी है. सो दैट्स नॉट गोना हैपन, इज ओनली गोना बी वन पेमेंट व्हिच कैन हैपन. नाउ दिस इज द प्रोसेस फॉर गेटिंग पर्सनल लोन्स, इवन इनटू द कार लोन्स की अगर आपको कार लोन्स में भी करना, सो दिस कैन बी कंसोलिडेटेड एंड देन द कार लोन कैन बी अप्लाइड एज वेल. सो देयर इज डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट लेंडर्स आउट देयर जो सिर्फ स्पेशलाइज ही करते हैं पर्सनल लेंडिंग के लिए. एंड दे आर द लेंडर्स हु आर जस्ट अप्रूव लोन्स within a couple of hours, and if the money is really urgent then we have to escalate it and we can get settled on the same day as well, but it's not gonna be like, it's case by case, not every deal we can get it this through in this particular way. Nahi to abhi sab mujhe phone karenge ki guru aapne abhi bola tha abhi to nikalo abhi aaj hi nikalo. But
10: yeah,
11: again that depends on kitna us deal ka kitni urgency and how much we have to escalate to the lender as well.
10: Okay.
11: इनके जो रेट्स होते हैं दे स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर फ्रॉम 7.95 व्हिच इज गोना बी अ काइंड ऑफ बेस्ट प्रोफाइल एंड इट कैन गो अप टू 29.99% एज वेल. सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन रियली वर्स्ट काइंड ऑफ प्रोफाइल, क्रेडिट पूरा यू नो खराब हो रखा है एंड लाइक, सो दे स्टिल थिंक यस हम इसको पैसा दे सकते हैं बट ये हाई रिस्क वाला बंदा है तो इसको लेकिन हम ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. सो दैट इज द रेंज.
10: Okay.
11: But you can borrow up to even $200,000 to $250,000 agar aapka profile badhiya hai, and you will be able to get a better rate on this personal loan space, on the car loan space.
10: इंटरेस्टिंग. और आपके पास ऐसे रियल केसेस आ चुके हैं जहाँ पे आपने इस वजह से हेल्प की है.
11: ये रियल केसेस की तो स्टोरी बता रहा हूँ, अगर रियल केसेस नहीं होते तो मुझे भी कैसे समझ आता ये कैसे हो रहा है. बेसिकली रियल स्टोरी में तो ऐसे ऐसे केस आते हैं कि यू वुडंट बिलीव. कि अभी हमने लास्ट वीक ही एक लोन किया जिसका बेसिकली यू नो दे हैड दे वांटेड टू बाय $100,000 का, राइट, बट लेकिन और वो उनको चाहिए थी, बट लेकिन उनके अलग लोन्स और भी चल रहे थे बिकॉज 50,000 का कहीं और उनका चल रहा था, 30,000 का कहीं और चल रहा था. वी एबल टू गेट देम वन लोन टूगेदर फॉर 200,000 और बेसिकली एक ही पेमेंट बना. तो बेसिकली जो उनके जो बार वाले जो 80,000 to 90,000 के लोन थे वो हमने कंसोलिडेट कर दिया और 100,000 की उनको गाड़ी ले दी और 10,000 एक और टॉप अप ऊपर ले दिया उनको. सो बेसिकली ओवर 200,000 का उनको इज वन लमसम पेमेंट बनी और इंटरेस्ट रेट दे अचीव 8.95 और बेसिकली वी गॉट इट अप्रूव फॉर 7 years टर्म. सो 7 साल के लिए लोन उनका अप्रूव हुआ. सो देयर आर केसेस जो बेसिकली इन हियर हाउ टू अचीव दोस, व्हाट टू डू. कई बार डिफरेंट आपको strategies use karni padti hai, but that all depends on the personal situation or financial situation of the person.
10: Yeah, definitely. So guru, agar iske baad kisi ko inquiry karne ye sunne ke baad, to what is the best way to approach you?
11: Simple logic lagana hai Sandy ji. Logic finance agar aap search karoge google pe to you will get my details or you will get my business partner's details, but agar aapko mere se directly deal karna hai to you can call me on 0800 number which is free number. It's called 0800 Logic G. 0800 Logic G, जब आप अपने मोबाइल पे टाइप करते हो कीपैड पे तो इट कम्स टू मी which is 0800-564-424. 0800-564-424 is the number to get in touch with me.
10: Brilliant. Thank you so much, Guru. And jaldi fir aap se baat hogi.
11: Thank you, Sandy ji. Much appreciated.
10: Yeah, thank you.

0: 437 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून। इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है। $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली आपके नाम हो सकते हैं। एंड थोड़ी देर पहले लॉजिक फाइनेंस के गुरु किंडोरा से हम बात ही कर रहे थे। लॉजिक फाइनेंस की ओर से आपको मिल सकता है $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स। वेल, न्यू वर्ल्ड वाउचर किसको नहीं चाहिए ऐसे फेस्टिव टाइम पे, किसको नहीं शॉपिंग कर रही है वहाँ पे जाके। तो इसका एक ही विनर रहने वाला है, सो यू कैन ट्राई योर लक ओवर हियर। आपको करना क्या है, आपको लॉजिक स्पेस अपना नाम लिख के बस भेजना है 5599 पर। सो लॉजिक स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599 और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर आपके नाम हो सकते हैं। और आपका समय अभी शुरू होता है, सो अभी आप मैसेज करना शुरू कर दीजिए $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर जीतने के ड्रॉ में, अगर अपना नाम आप डालना चाहते हैं। सो रिमेंबर, आपको करना क्या है, लॉजिक स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है। स्पेस एज इन की दोनों के बीच में से स्पेस होनी चाहिए, स्पेस लिखना नहीं है। सो लॉजिक और अपना नाम लिख के भेजिए 5599 पर।
1: The Drive Show with Sandy and Ruzbain, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
3: Accurate traffic.
4: Experience Picasso like never before.
5: Cloudy overnight with a low of 16. Town to Constellation Drive, 24 minutes right now to Silverdale taking 50. Earlier crash on the northwestern has cleared. Town to Massey, 20 minutes. On the southern, it's heavy northbound from Sylvia Park to Newmarket. Town to Manukau, 40 minutes to Drury, 1 hour 6. Southwestern heavy from Puhanui Road to the southern.
4: Picasso, designed by Paul Smith, 80 original works, on now at Auckland Art Gallery.
6: Discover the magic at Go Bananas Child, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन। ये हमेशा आपके पास है। गो बनानास चाइल्ड केयर 12th बर्थडे ऑफर, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी ज्वाइन करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
7: Hey you! Your scrolling just got rewarding. Renew 3 times in a row with Skinny to collect Everyday Rewards points. Skinny and Everyday Rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny. Happy, happy, happy,
8: oh. सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
9: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
8: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड इस तमा की लाइट्स पापा टोटो।
10: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
11: We can't predict an earthquake, but we can be prepared by practicing what we do. Wherever you are on October the 21st at 1:30 p.m., join the rest of the country and drop, cover, and hold. If you use a mobility aid, you can sit or lock before you cover and hold. And if you're in a coastal area, practice your tsunami evacuation hikoi too by heading inland or to higher ground. Sign up to find out all you need to know at shakeout.govt.nz.
12: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी 2 फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November. T's and C's apply.
3: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Drive Show फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. एंड जो न्यूली फॉर्म्ड मेगा मिनिस्ट्री है, जिसमें मिनिस्ट्री फॉर सिटीज, एनवायरमेंट, रीजन्स, ट्रांसपोर्ट ये आती है, इन्होंने प्रपोज किया है टू कट 400 रोल्स. वेल, इस न्यूली फॉर्म्ड मेगा मिनिस्ट्री का नाम है MCERT. सो दे मेट विद स्टाफ एंड उन्होंने अनाउंस किया है इस प्रपोजल को, जिसमें 365 उन्होंने बोला है जो रोल्स है दे बिंग एक्सड, जो अभी वेकेंट है, दे आर करंटली वेकेंट राइट नाउ. सो इट हैज़ अबाउट 1700 स्टाफ इन टोटल वैसे. एंड मिनिस्ट्री होप करिए टू डिलीवर $50 million इन एनुअल सेविंग्स बाई 2028 and 2029. ये जो मेगा मिनिस्ट्री है, इसे जुलाई में क्रिएट किया गया था, जहाँ पर इन्होंने मर्ज कर दिया मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स एज वेल. सो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं किया बनाया गया है, बट नथिंग वॉज फाइनल अंटिल स्टाफ हैड देयर से. उसके बाद ही सब चीज़ें जो है ये फाइनल की जाएगी. फिलहाल जस्ट प्रपोजल है to cut off 400 jobs in restructure.
2: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: 4599 पर मैसेज करके. सो पजल ये है कि अ फादर इज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन. ठीक है, फादर इज फोर टाइम्स ओल्ड एज ए सन. इन 20 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन. हाउ ओल्ड आर दे नाउ, ये आपको बताना है. सो अ फादर इज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो कि जो सन है वो 10 साल का है, फादर जो है 40 ईयर्स का है. अ फादर इज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. इन 20 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. हाउ ओल्ड आर दे नाउ, ये आपको बताना है. 5599 पर लेट्स सी कि कितने लोग इस मैथमेटिक के सवाल को, जो सुनने में टेढ़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सीधा, 5599 पर अपने आंसर्स आप यहाँ पे भेज सकते हैं. एंड कम्युनिटी में बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं गाइस, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म हम यहाँ पे करते रहते हैं. लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम जो होने वाली है ऑल वाइट्स वर्सेज इंडिया के बीच में. इंडिया की फुटबॉल टीम यहाँ पे आने वाली है एंड थैंक्स टू न्यूजीलैंड फुटबॉल आप इस मैच को लाइव दे सकते हैं, वो भी फ्री डबल पास के साथ. वेल, टिकट खरीद के तो आप वहाँ पे जा ही सकते हैं गो मीडिया स्टेडियम में 12th of November को. लेकिन यहाँ पे अगर आपको डबल पास जीतना है तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, विच इज़ हम 104.2 FM. वहाँ पे जाइए, पिंड पोस्ट में फीचर फोल्डर में आपको एक कंपटीशन पोस्ट दिखाई देगी ऑल वाइट्स वर्सेज इंडिया की. उसके कमेंट सेक्शन में आपको टैग करना है जिसको आप साथ में लेके जाना चाहते हैं. प्लस आपको प्रेडिक्ट करना है फाइनल स्कोर. यू नीड टू प्रेडिक्ट द फाइनल स्कोर ऑफ ऑल वाइट्स वर्सेज इंडिया का एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे यू कैन विन अ डबल पास. ऑल वाइट्स पहले इंडिया को फेस कर चुकी है टू ओकेजन्स पे, 1981 में एंड 2018 में. 1981 में ड्रॉ हुआ था, 2018 में ऑल वाइट्स की जीत हुई थी. नाउ कट टू 2026 में क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम दोनों टीम्स एक दूसरे को फेस करने वाली है. सो क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन है? सो फार काफ़ी प्रेडिक्शंस जो है ये वन साइडेड है, ऑल वाइट्स की ओर है, बट अंडर एस्टिमेट नहीं करने का. तो बताइएगा कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है. आपको फेसबुक पेज पे जो पोस्ट है ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया की, उसी के कमेंट सेक्शन में जाके आपको लिखनी है प्रेडिक्शन. एंड यू आर इन द ड्रॉ टू विन द डबल पास फॉर दिस मैच.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
2: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: 255 एट द मोमेंट हो चुके हैं. जो सवाल आपसे पूछा था, फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. इन 20 इयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. हाउ ओल्ड आर दे नाउ? सो इफ द सन इज 10 एंड द फादर इज 40, इन 20 इयर्स दे विल बी 30 एंड 60. That's the right answer. Anyway, thank you so much आपके messages के लिए. यहाँ पे चरण, हिमांशु, नवनीत एंड कईयों ने रिज आपका मैसेज आया है और कईयों ने अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखा है.
1: Super से ऊपर, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम. Accurate traffic.
8: Corfe Festival this Saturday.
9: Cloudy overnight with a low of 16 on the northern. Heavy traffic heading north through Albany town to Silverdale, 53 minutes. The northwestern's heavy from Waterview to Te Atatū. On the southern, heavy traffic heading north from Mount Wellington to Ellerslie Panmure and south from Newmarket to Penrose Road. Town to Manukau, 40 minutes, just over an hour to Drury. Southwestern's heavy from Puhanui Road north to Mangere Bridge.
8: Corfe Festival this Saturday in Warkworth. Live music, food trucks, free entertainment. CorfeFestival.nz.
10: The in-laws are coming for dinner, so tonight's not the night to wing it. Luckily, delicious Woolworths New Zealand sirloin steak with garlic and herb butter lets me take all the credit. Oh, it was nothing. Just my kind of woolies.
11: Save big at Rebel and get the family sorted for the summer season. Take 15% off all kids' Nike clothing. Their selected big brand kids and adults tees, 2 for $50. Plus, get 20% off selected bags and bottles. Summer value is on now, only at Rebel Sport. See you on T's and C's.
12: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
13: Minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to peak hour commute, bae. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
14: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
13: Yeah, that sounds like me.
14: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
13: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
8: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
15: आपका टैक्स रिटर्न अप टू डेट है? फाइल करने में एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए?

5:03 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू। पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए शुरू हो चुका है। कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा गया है? इट्स बीन हम्प डे, सो हाउ वाज योर डे टुडे? आप यहाँ पे जरूर शेयर कीजिए। 14 अक्टूबर है, अगर आज आपका बर्थडे है अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आज आपकी एनिवर्सरी है अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वैसे आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज आज बहुत ही सालों बाद कॉफ़ी विद करण का जो एपिसोड है, जो सीज़न है, ये आने वाला है। लेकिन उससे पहले यस, रुजबे यहाँ पे नहीं है आज, रुजबे की छुट्टी है, बट यस कल वो यहाँ पे शामिल हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू कॉफ़ी विद करण, सो अपेरेंटली करण जौहर ने जो अनाउंस किया है कि ये लास्ट सीज़न होने वाला है, टुडे इज़ अ डेट कि कॉफ़ी विद करण आने वाला है। एंड आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज सलमान खान इज़ अ गेस्ट, इज़ अ फर्स्ट गेस्ट। मैंने ट्रेलर देखा है जहाँ पे यू नो करण जौहर ने बोला है सलमान खान को कि इतना ज़्यादा तुम आजकल ज्ञान दे रहे हो कि तुम्हारा फेमस ही हो गया। उसका वो जो डायलॉग था, इट्स डन ब्रो, वो तो हर कोई यूज़ कर रहा है, हर जगह पे यूज़ हो रहा है। आई थिंक इट्स डन ब्रो ना, ये लाइन ऑफ 2026 बन चुकी है ऑलरेडी, इट्स बिन यूज्ड एवरीवेयर। सो इसके ऊपर भी काफ़ी बातें कर रहा है करण जौहर इस एपिसोड में। अब सलमान खान के आंसर्स कैसे रहते हैं वो पता नहीं, बिकॉज वी हैव सीन लास्ट टाइम जब सलमान खान आए थे कॉफ़ी विद करण में तो क्या हुआ था। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड। एंड आने वाली जो लिस्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो देखते हैं कि और आगे कौन कौन से गेस्ट जो है ये आने वाले हैं। जहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे हैं, वैसे जेलर 2 के जो मेकर्स हैं इन्होंने कन्फर्म किया है कि रजनीकांत की मूवी जेलर 2 विल बी हिटिंग थिएटर्स ऑन 15th अक्टूबर। सो टीम ऑफ जेलर 2 इन्होंने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दी है रिगार्डिंग रिपोर्ट्स की सराउंडिंग द हिंदी रिलीज ऑफ रजनीकांत मूवी कि ये कब होने वाली है। सो काफ़ी स्पेकुलेशंस को इन्होंने एड्रेस किया है एंड उन्होंने बोला है, कन्फर्म किया है कि हिंदी वर्जन डेफिनेटली रिलीज होने वाला है अलॉन्ग विद द अदर लैंग्वेज वर्जन। पहले था बीच में कि शायद हिंदी वर्जन नहीं वो रिलीज़ करेंगे, ऐसी स्पेकुलेशंस थी। बट 15th अक्टूबर को यानी कि कल ये मूवी जेलर 2 का हिंदी वर्जन भी एक्चुअली में रिलीज हो रहा है। सो रजनीकांत के फैंस आउट देयर कीप एन आई जेलर 2 के लिए भी।

0: ए.आर. रहमान की कॉम्पोजिशन एंड ए.आर. रहमान की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे। मूवी ने कुछ खास नहीं किया था लेकर हम दीवाना दिल, लेकिन इस मूवी के गाने काफी ज्यादा अच्छे रहे थे। एनीवे, वैसे आज वेंसडे है और आज के दिन आपके लिए हम एक सिचुएशनशिप लेके आते हैं, बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो। इस सिनेरियो में अगर आप होते या फिर आपको ये पावर या कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती तो आप इसमें क्या करते। सो टुडे द सिनेरियो इज कि आपको ट्रूथ बटन मिल रहा है। ट्रूथ बटन जो है, ये जो ऐसा बटन है, इट फोर्सेस एनीवन टू टेल यू द ट्रूथ, एंड उसमें कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, टोटल ट्रूथ। ये एक ऐसा ट्रूथ बटन है, लेकिन इसको सिर्फ आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ट्रूथ बटन है, ये आप किसके ऊपर यूज़ करेंगे और क्या सवाल होगा आपका? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, ऐसा कोई ट्रूथ बटन इस दुनिया में बना नहीं है कि किसी के ऊपर यूज़ हो जाए, बट ऐसा अगर हो जाए, जिस वजह से हमारी टेक्नोलॉजी जा रही है, कुछ भी पॉसिबल आने वाले दिनों में। सो बताइए कि ट्रूथ बटन जो है, ये अगर आपको मिलता है, दैट फोर्सेस एनीवन टू टेल यू द रॉ ट्रूथ इन डिटेल, तो ये आप किसके ऊपर यूज़ करेंगे? क्योंकि एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, किसके ऊपर यूज़ करेंगे, क्या सवाल होगा आपका? 0800 हम पर कॉल करके आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या फिर 5599 पर मैसेज भी कर सकते हैं, बट कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यू नो, अक्सर हमारे माइंड में आता है ना कि यार इसकी सच्चाई क्या है हमें नहीं पता है, सच क्या है हमें नहीं पता है, हमने ये डायलॉग बहुत बार बोला है। सो दिस इज़ योर चांस, जैसे कि किसके ऊपर यूज़ करेंगे और क्या सवाल आप पूछेंगे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। इट कैन बी एनी वन एक्चुअली इन द वर्ल्ड, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। मेरे को अगर मिले तो मैं दुनिया के, मेरे लिए तो एक बटन बहुत कम है, मैं दुनिया के हर एक पार्टी लीडर से एक सवाल पूछना चाहूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, एवरी पार्टी लीडर से। बट आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ माई, ऐसा किसी पार्टी लीडर से ही कोई सवाल पूछने का, तो जो उनके लिए ट्रूथ बोलना बहुत मुश्किल होता है। उससे याद आया कि कल यहाँ पे 5 बजे के बाद हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर क्यू ले वॉन्ग के साथ। नो, लास्ट नाइट की डिबेट अगर आपने देखी है, उसने बहुत सारे दिल जीत लिए हैं। यू नो, अभी तक लोग कहते आए हैं कि द किंग मेकर इज विंस्टर पीटर, बट आफ्टर लास्ट नाइट्स डिबेट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि किंग मेकर जो है, ये अपॉर्चुनिटी पार्टी की लीडर क्यू ले वॉन्ग भी हो सकती है। वेल, कैसे चीज़ें पलट जाती है ये पता नहीं चलता। लास्ट नाइट की डिबेट में द वे शी फेस्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ न्यूजीलैंड फर्स्ट ग्रीन पार्टी, हैट्स ऑफ टू हर। एंड इसीलिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नया पॉलिटिकल लीडर भी कोई बहुत आगे जा सकता है एंड कुड बी अ किंग मेकर एज वेल। तो कल हम अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर क्यू ले वॉन्ग के साथ बातें करने वाले हैं यहाँ पे अबाउट हर पॉलिसीज़। एंड यू नो, इस डिबेट में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली अपनी अलाइनमेंट के बारे में, तो ये बातें भी हम उनके साथ करने वाले हैं। एंड जो उनको कह रहे कि उनका शायद अलाइनमेंट ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये सवाल भी उनसे पूछेंगे। तो अगर आपके पास कोई सवाल है उनसे पूछने के लिए, क्यू ले वॉन्ग से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे, तो आज ही आपको मैसेज करना होगा ड्राइव कीवर्ड के साथ। सो ड्राइव स्पेस, अपना सवाल आप लिख के यहाँ पे भेजिए 5599 पर, एंड कल ज़रूर उनसे हम सवाल पूछेंगे। कल इसी टाइम के अराउंड एक्चुअली में उनकी इंटरव्यू यहाँ पे रहने वाली है।
1: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी।
2: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
6: That is very that is a very acceleration.
5: That's a very acceleration. Yeah.
6: Amazing acceleration.
5: This is my fancy English. That's a very.
6: अरे होता है यार, सब चलता है, आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: Hum. accurate traffic.
8: Kitchen Mania free installation.
9: Cloudy overnight with a low of 16 on the northern town to Silverdale, taking 47 minutes. The northwestern's heavy from Point Sheaf to Te Atatū. The southern is heavy heading north from Sylvia Park to Market Road, south from Green Lane to Penrose Road, and from Highbrook Drive to Manukau. Town to Drury, 58 minutes. Southwestern heavy northbound from Puhinui Road right through to Mangere Bridge.
8: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
10: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
11: T's and C's apply. Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
12: Be in to win one of five $10,000 MyTitan gift cards. Zara socho, isse kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. Camping ka pura gear le sakte ho. Ek room ka makeover kar sakte ho. Ya apne garden goals ko reality. Now the possibilities are endless. Bus $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo, and you are in the draw. Plus club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at MyTitan.
13: Your data just found a plus one. Join or renew on an eligible Spark prepaid value pack and get double the data. Offer ends 30 November 2026. Double data doesn't roll over. Join Spark prepaid today. T's and C's apply.
14: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
15: Yes, Bebo.
14: Catch kya hai?
15: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
14: I still can't believe it. No catch.
15: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
16: PNC Supply.
17: Are you ready to go home?
7: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
0: बज के 20 मिनट हो चुके हैं. पावर ड्राइव एट 5 आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड मेरे साथ यहाँ पे फोन लाइन पे शामिल हो चुके हैं. हाय, गुड इवनिंग टू यू.
18: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया, आप कैसे हैं?
18: मैं ठीक हूँ जी. मैं अपना ना नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी.
0: हाँ, ठीक है, क्योंकि सवाल ऐसा होगा क्या?
18: क्योंकि आपने बोला ना लाइक ट्रुथ.
0: हाँ, ट्रुथ वाला ना, ऑब्वियसली.
18: यस,
0: दैट्स
18: मैं ना बॉलीवुड, क्योंकि अगर नाम पता चल गया ना वो इंसान को पता चल जाएगा ना, यू नो.
0: ओह या ऑफ कोर्स. हां, बोलो बोलो.
18: तो लाइक पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ना इट्स ओके, वो तो एक सच बोल देंगे तो बाकी तो सब झूठी चलता
0: है.
18: रियल लाइफ में इफ आई वांट ना, मैं अपने ना हस्बैंड के एक बेस्ट फ्रेंड को के ऊपर ये यूज करना चाहूंगी. बिकॉज माई हस्बैंड इज अ वेरी फर्म बिलीवर कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसको फुल ट्रस्ट करते हैं एंड ऑल दैट. आई डू रिस्पेक्ट दैट, बट कहीं ना कहीं मे बी अ वुमन इंटेंशन और सम हाउ आई फील लाइक कि उसके दिल में कुछ और है, लाइक वो कल को धोखा देगा. अगर मेरे पास ऐसा बटन होना तो आई जस्ट गेट टू नो सो दैट आई कैन सेव माई हस्बैंड फॉर गेटिंग डिच्ड इन द फ्यूचर, ऐसे वैसे करके ना.
0: और आपका जो सिचुएशन है बहुत मतलब ट्रिकी सिचुएशन है ना, इसमें ये है कि आप अपने हस्बैंड को कुछ बोल भी नहीं सकती है. इफ यू, बिकॉज आपकी इंट्यूशन है वो, इट्स नॉट कि या ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ऐसे कुछ वैलिड रीजंस है, बट यू हैव इंट्यूशन. एंड कई बार आई नो यू आर सेइंग कि वुमेन की हमारी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है, कुछ चीज कुछ वाइब्स को लेके हम थोड़ा पिक कर लेते हैं.
18: जिसको बोलते हैं ना इंसान परखने की आंख जो वुमन की है वो उतनी चेंज की नहीं होती है, जितना मर्जी शातिर बन जाए कि नहीं मेरे को सब पता होते नहीं है.
0: आई एक्चुअली एग्री ऑन दिस. सो कोई डिसएग्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर बोल सकते हैं, बट आई एक्चुअली एग्री ऑन दिस.
18: एंड अगर बोलो भी, मैंने बोला उनको मेरे को नहीं लगता कि ये चलेगा ज्यादा. बोलते हैं नहीं तुम लोग ज्यादा सोचते हो, तुम नेगेटिव हो, ये है वो है. मैं कहा चलो ना ही जाए तो आई स्टिल हो, बट काश मेरे पास होता बटन तो मैं पता कर लूं. मैं बोलूं देखा देखा मैंने बोला मैंने
0: वही हुआ ना. एंड क्या है ना कि दोस्ती के चक्कर में फिर पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है ना कि ब्लेम वुमेन के ऊपर आ जाता है कि एक लड़की की वजह से हमारी दोस्ती खराब हो गई. ये बॉलीवुड ने बहुत फेमस करके रखा है. सो या तो ये इवेंचुअली हो जाता है. सो अभी आप सिर्फ यही कर सकते हैं, समय के ऊपर छोड़ सकते हैं.
18: जी जी बिल्कुल, भगवान पे समय पे वो तो छोड़ा है, बाकी साइंटिस्ट पे छोड़ा है, कोई बटन डिस्कवर कर दे तो अलग बात.
0: That's a really good one.
18: Nice topic too. Sandy loved it.
0: Thank you so much and all the best to you. Hopefully aisa na ho, but yeah, all the best.
18: Thank you. Have a good evening.
0: You too. Bye bye. Well, बहुत ही जेन्युइन सा उनके अंदर ऐसा था. जो सवाल अगर आपने मेरा मिस किया है कि आज के सिचुएशन में अगर आपके पास ट्रूथ बटन होता और सिर्फ एक ही के ऊपर वो ट्रूथ बटन आप यूज कर सकते हैं एंड आपको रॉ ट्रूथ इन डिटेल मिलेगा, तो किसके ऊपर वो ट्रूथ बटन आप यूज़ करेंगे एंड क्या सवाल आपके लिए आपका रहेगा. एंड और मुझे लगता है ना कि जिन्होंने अभी फ़ोन किया, दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन कंसर्न. एंड एक विमेन के पर्सपेक्टिव में आपको बताती हूँ कि काफ़ी विमेन इस चीज़ से लेके हेजिटेट करती है बोलने के लिए, बिकॉज लाइक आई सेड बॉलीवुड एंड बहुत सारे मीम्स बने हैं, फेमस करके रखा है कि देखो ना लड़की की वजह से दोस्ती खराब हो गई, लड़की की वजह से ये खराब हो गया, एक नोशन बन के रखा है. कितने लोग बिलीव करते हैं उसमें नहीं ये नहीं पता, बट इसकी वजह से काफ़ी हेजिटेशंस भी हो जाती है. सो या एनीवे, सो आप भी इससे रिलेट कर पाते हैं तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर रहे हैं. यू कैन टेक्स्ट 5599 या फिर कॉल 0800 हम.
2: Hollywood's most wanted.
16: Kundi khadao. Ya seedha andar aao. Main laun apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरमान मलिक एंड यशस्वी की आवाज में गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे. डोंट बी शाय, ये मूवी आने वाली है, इसी मूवी का एक्चुअली में गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे. नौ वक्त आ चुका है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने के लिए, वेयर यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस हम पे, एंड डिफरेंट टाइमिंग्स में आपको पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे मौका मिलता है. नाउ इज द टाइम टू पार्टिसिपेट. $1,000 कैश अगर आप चाहते हैं, या $1,000 कैश कैसे यूज़ करेंगे इस हॉलीडे टाइम पे? यू नो, आजकल का जो महंगाई का समय है, अगर कहीं पे हमें थोड़ा अमाउंट भी जीतने का मौका मिलता है, वो लेके येस वी आर इन, बट दिस इज़ लाइक $1,000. एंड थैंक्स टू फॉर्च्यून, फॉर्च्यून के यू नो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे, ग्रॉसरी में फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स, एसेंशियल विटामिंस इनके ग्रेन्स में रहते हैं. एंड थैंक्स टू फॉर्च्यून, $1,000 कैश जीतने का मौका है. आपको करना क्या है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपको फॉर्च्यून स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर, जहाँ पे स्टैंडर्ड करियर रेट सप्लाई. सो फॉर्च्यून स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599. जितनी मर्जी एंट्रीज आप यहाँ पे भेज सकते हैं, दैट्स टोटली ओके, बट रिमेंबर स्टैंडर्ड करियर रेट अप्लाई जब भी आप 5599 पर मैसेज करते हैं. और ये जो कॉम्पिटिशन है, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है. इफ यू विजिट आवर वेबसाइट hum.rover.nz, वहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी मिलेगी. तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हर किसी की टर्म्स एंड कंडीशन हमारी वेबसाइट पे ही आपको मिलती है. और वेबसाइट पे जाके वैसे यू कैन स्ट्रीम डिफरेंट म्यूजिक स्टेशंस एज वेल, जैसे आप रोवा पे जाके स्ट्रीम कर सकते हैं. यू कैन गो टू अवर पॉडकास्ट एज वेल एंड लिसन टू अवर पॉडकास्ट. वहीं पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे पॉडकास्ट मिलेगा. वी हैव कवर्ड वेरियस टॉपिक्स दिस ईयर. हमने इस साल में टोटल अभी तक जो रिलीज़ हुए हैं 18 एपिसोड्स किए हैं एंड काफ़ी एपिसोड्स अभी लाइंड अप भी है. एंड ये जो एपिसोड्स है, इन 18 एपिसोड्स में वी ट्राई टू कवर डिफरेंट टॉपिक्स जो कि काफ़ी स्पेशलिस्ट के साथ भी है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंसर्न करते हैं. तो ऐसे टॉपिक्स हम इस बार अनफिल्टर्ड में लेके आए थे, तो आप भी जाके ज़रूर सुनिएगा. जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड हैव अ लुक एट द डिफरेंट टॉपिक्स एंड उनके जाके सुनिए. और आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज अनफिल्टर्ड में हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं कि अनफिल्टर्ड में और क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, व्हाट डू यू वांट टू हियर फ्रॉम अनफिल्टर्ड. तो आप भी प्लीज़ ज़रूर हमें यहाँ पे बताइएगा, कॉल करके मैसेज करके यहाँ पे शेयर कीजिए व्हाट इज़ योर फीडबैक ऑन दिस. एंड अच्छा लगेगा आपसे सुनना, तो दैट बिकॉज इवेंचुअली क्या है ना कि ये सारी चीज़ें जो पॉडकास्ट है, जो शो है, ड्राइव शो, ये आप ही के लिए हम लेके आते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट डू यू वॉन्ट आउट ऑफ इट एज वेल. एंड रिमेंबर, थोड़ी देर में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा एक और कॉम्पिटिशन में, जिसका नाम है एक दिया एक कहानी. अगर आपने अभी तक नहीं बताई अपनी कहानी, तो स्टे ट्यून, आपको मौका मिलेगा बताने का.
1: थोड़ा तो हॉल बना दे.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: Here for the first long weekend in ages, when you bust out the jandals, you dust off the chili bin and take that first dip. Just the toes, of course. Whatever you're planning for the long weekend, see you at Foursquare. What'll it be today?
1: Are you ready to go home?
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
3: Power Drive at 5.
4: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
5: 21 मिनट बाकी है 6 बजने में. 6 बजे ट्रेंड मेकर्स आपके लिए शुरू हो जाएगा. और आज ट्रेंड मेकर्स की जो थीम है, बिकॉज आज बर्थडे है एक ऐसी एक्ट्रेस का जो कि जस्ट वन मूवी ओल्ड है, बट वो जो वन मूवी है वो उसने धमाकेदार मूवी कर दी है. मतलब ऐसी मूवी की कि लोगों ने बोला कि यार क्या एक्ट्रेस है, उसके फैन हो गए. शी हैज़ डन जस्ट वन मूवी इन द बॉलीवुड सो फार, एंड अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट कर रही है कि कौन सी मूवी वो सिलेक्ट करने वाली है. तो उसका आज बर्थडे है, तो ऐसे में हम रिलेटेबल थीम हम लेके आ रहे हैं, बिकॉज उसकी इतनी सारी मूवीज़ है नहीं कि पूरा आवर हम कर सकें. बट या आपको क्या लगता है, ये कौन सी एक्ट्रेस है जो कि जस्ट वन मूवी ओल्ड है बॉलीवुड में एंड सुपर डुपर हिट मूवी की है, मतलब चार्ट बस्टर मूवी इस बंदी ने की है. एंड मूवी में लोगों को रुलाया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रुलाया है. किस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही हो? लेट्स सी कितने लोग इस एक्ट्रेस का नाम यहाँ पे गेस कर पाते हैं. आप गेस कीजिए और साथ ही कॉल कीजिए यहाँ पे टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन. एक दिया एक कहानी आपको कॉल करना है अगर आप $300 कैश जीतना चाहते हैं इस ड्रॉ में शामिल होने के लिए. 0800 00 हम पर 0800 00 4866 इज द नंबर. सो एक दिया एक कहानी में आपको किसी को शाउट आउट देना है, दिवाली शाउट आउट. तो क्या है कि इस कैंपेन में क्या है कि वी आर डूइंग दिस फॉर समवन. जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा होगा, नॉट योर फैमिली में बट आउट ऑफ योर फैमिली, जिसने आपको कभी मेंटोर किया होगा, या फिर आपका वो कुलीग हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है वो, या फिर जिसे आप कभी रैंडमली मिले और उनकी बातों ने आपको ऐसा ज्ञान दे दिया कि आपकी लाइफ में बहुत काम आया. तो आज टाइम है उन्हें यहाँ पे शाउट आउट देने के लिए. सो यू कैन कॉल ऑन 0800 00 हम 0800 00 4866 पर. किसी एक को अगर आप शाउट आउट देना चाहेंगे, किसी एक के बारे में अगर आप यहाँ पर कुछ शेयर करना चाहेंगे, उनको आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे, तो वो कौन है आपकी लाइफ में जिसे आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे? इट कैन बी एनी वन. जब आप मे बी नए आए थे इस कंट्री में, जिन्होंने आपकी हेल्प की, वो आपके फ्लैटमेट भी हो सकते हैं, रूममेट हो सकते हैं. जब आप यहाँ पे आए तो किसी ने आपकी हेल्प की चीज़ों को समझने में, वो भी वो हो सकते हैं, या फिर आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, एनी वन. सो 0800 00 हम 0800 00 4866 इज अ नंबर जहाँ पे कॉल करके आपको दिवाली शाउट आउट देना है, एंड आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे यू कैन विन $300 कैश. ये आपके नाम हो सकता है. एंड हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है कॉल पिक करने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और एक ही को चांस मिलता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए. तो अभी कॉल कीजिए अगर आप अपना चांस यहाँ पे मिस आउट नहीं करना चाहते हैं. और इसी के साथ आपको बता दूं कि लॉन्ग वीकेंड पे 24 अक्टूबर को नॉर्थ शोर दिवाली भी होने वाली है, जो कि स्मेल्स पार्क, स्मेल्स फार्म ताकापुना में होगी 12 noon to 9 PM. डांस परफॉर्मेंसेस वहाँ पे रहने वाले थ्रू आउट द डे, फन एक्टिविटीज़ रहेगी बच्चों के लिए, डिलीशियस फूड स्टॉल्स भी होंगे, एंड 9 PM पे आपको वहाँ पे फायरवर्क डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा. दिस इज़ बाय टीम पुनीश एंड एना फ्रॉम बाफडेन थॉम्सन. फ्री एंट्री है, फ्री पार्किंग है, ढेर सारी पार्किंग वहाँ पे होती है. सो नॉर्थ शोर की, और अगर आप दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दिस वन विल बी द परफेक्ट दिवाली सेलिब्रेशन फॉर यू. एंड बाली बैंकॉक का ट्रिप हमारा ऑलमोस्ट गाइस फाइनल हो चुका है. काफ़ी चीज़ें उसमें फाइनल हो चुकी है आइटेनरी में कि क्या क्या हम वहाँ पे करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग मार्च 2027 में. मैं और रुजबे सन टूर्स के साथ जा रहे हैं, एंड हमारे साथ कुछ लिसनर्स ऑलरेडी जिन्होंने टिकट बुक कर ली है वो तो साथ में जा रहे हैं. फ्यू स्पॉट्स आर लेफ्ट अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं. तो बाली एंड बैंकॉक दो जगह पे हम ट्रैवल करने वाले हैं. दिस इज़ वन पैकेज जिसमें आपकी फ़्लाइट की टिकट्स, फाइव स्टार रिकमेंडेशन, तीनों टाइम का खाना और वहाँ की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है एवरी डे की, वो सब कुछ कवर्ड है उसमें. सो जस्ट हैव टू पैक योर बैग्स एंड गो अलॉन्ग. सो ये दिवाली स्पेशल दे रहे हैं सन टूर्स. वैसे अगर दिवाली से पहले आप बुकिंग करते हैं तो यू विल रिसीव फ्री 2-night 3-day कार्निवल क्रूज पैकेज एज वेल, जो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर खुद भी यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर. एक साल के लिए ये वैलिड है. सन टूर से बात कीजिएगा अगर आपको ये ट्रिप बुक करना है. 0800 सन टूर्स इज़ अ नंबर, या फिर आप डायल कीजिए 0800 4786 868. अगर आप गूगल पे सर्च भी करते हैं सन टूर्स तो आपको नंबर एंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यू कैन जस्ट सर्च ऑन द गूगल एज वेल सन टूर्स के नाम से.
3: Let's go.
4: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: तेरे साथ तो उन्होंने गाया भी था.
1: Shirley Setia, Unfiltered. Catch the full conversation
2: on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
3: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: Accurate traffic.
4: Fuel savings at gas today.
5: Cloudy overnight with a low of 16 degrees on the northern to Silverdale, taking 40 minutes on the northwestern to Massey, 26, a bit heavy from Point Chef to Waterview. Southern still busy, northbound from Luke Street to Green Lane and south from Green Lane to Sylvia Park. Town to Manukau, 35 minutes, Drury, 50. Southwestern very heavy northbound from Puhinui Road to Mangere Bridge.
4: Save 15 cents per litre on fuel today at gas with your everyday rewards card.
6: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
7: Lots.
6: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
7: Probably.
6: Am I paying for this free coffee?
7: Definitely.
6: Will they talk me into an upgrade?
7: Oh.
6: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
8: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस, इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
9: Yo, what's up? I'm fun. We went to school together, remember? We'd hang out behind the bike sheds. Anyway, I need you to look up NZHL. They help people like you to have a mortgage and a life. Which means less time being boring and more time buying berries out of season, turning coffee into lunch, and booking non-refundable airfares to Fiji before checking with your partner. Risky. Have a mortgage and a life with NZHL. Book a free chat today.
10: NZHL.
11: Save big at Rebel and get the family sorted for the summer season. Take 15% off all kids' Nike clothing. Their selected big brand kids and adults tees, two for $50. Plus, get 20% off selected bags and bottles. Summer value is on now, only at Rebel Sport. See you on T's and C's.
12: Pick up a prepaid plan for peanuts with 2 degrees. Starting from just $8, our prepaid prices are nuts. Minimum $10 top-up applies. Plans auto-renew monthly if you have enough credit. Check 2degrees.nz for T's and C's.
13: Ah, the in-laws are coming for dinner, so tonight's not the night to wing it. Luckily, delicious Woolworths New Zealand sirloin steak with garlic and herb butter lets me take all the credit. Oh, it was nothing. Just my kind of woolies.
14: Make a splash with Instant Kiwi for your chance to win up to $50,000. Dive into your local Lotto NZ store and ask for a $3 Sequest ticket or play online at mylotto.co.nz. It's one quest with two ways to play. You never know. R18.
2: Time check.
15: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
2: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Auckland's Watercare is apologising to customers after a billing error that affected nearly 44,000 accounts. It says the issue during an upgrade of the billing system resulted in direct debit and credit card payments being processed before their due date. The payments totaled about $6.1 million. National is heading out at Te Pāti Māori and the Greens over a meeting with the mongrel mob. Photos posted online show some candidates posing for photos with members at a hui. National's Justice spokesperson Paul Goldsmith is suggesting they're prioritising gangs over victims. However, Greens co-leader Chloe Swarbrick told RNZ the best way to stop the cycle of gang violence and criminality is to understand what's driving it in the first place. Motorists have been left queuing for hours at petrol stations in Bali amid crippling fuel shortages. Some drivers have reported visiting multiple stores only to find stocks exhausted. A rise in cocaine use is showing up in workplaces. It has been found in 3.2% of recent positive drug tests compared to 1.5% a year ago. The Drug Detection Agency's Glenn Dobson says it's part of a global trend.
17: Cocaine use can move up and down, but certainly this level of cocaine we haven't seen in New Zealand shores for quite some time.
16: To sport, the Breakers are playing tonight away to the defending champion Sydney Kings from 9:30. The early season form away from home hasn't been great, with the Breakers standing at 1-3. There are also a few bodies down, including star guard Parker Jackson-Cartwright. And the track cycling world champs in Shanghai, the New Zealand women's team Pursuit has qualified 7th, more than 7 seconds down on the top-ranked Great Britain.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
3: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbane. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura Jaiku.
3: Let's go! 3, 2,
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
7: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
18: 6:02 हो चुके हैं. ट्रेंड मेकर्स आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी एंड 7 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है. रुजबे आज यहाँ पे नहीं है. ट्रेंड मेकर्स में आज अनीत पड्डा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. अनीत पड्डा जिन्होंने सैयारा मूवी से धूम मचा दी. तो आज एक्चुअली में इस आवर में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ ऐसे डुओज को जिन्होंने साथ में डेब्यू किया है. तो ऐसी मूवीज़ के गाने आप सुनने वाले हैं जहाँ पे हीरो हीरोइन ने एक साथ एक ही मूवी में डेब्यू किया है. तो विल स्टार्ट विद सैयारा मूवी ऑफ कोर्स, बिकॉज अनीत पड्डा का आज बर्थडे है. अनीत पड्डा वैसे ये शी वॉज बॉर्न इन अमृतसर एंड बहुत सारी वेबसाइट्स जो है उनका बर्थडे बहुत डिबेटेबल बताती है, 13th और 14th अक्टूबर. एंड अनीत पड्डा की वैसे जो पहली स्क्रीन अपेयरेंस थी, इट वाज नॉट सैयारा मूवी, मतलब सैयारा मूवी वाज द फर्स्ट लीड रोल हम कह सकते हैं. इससे पहले शी अपेयर्ड इन सलाम वेंकी जो कि 2022 में आई थी, जिसमें काजोल थी. तो उसमें उसने नंदिनी का रोल किया था. बट बाद में सैयारा वाज काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू एज अ लीडिंग लेडी इन हिंदी मूवी. एंड ऑल्सो शी डिड वन सीरीज एज वेल. 24 में शी प्लेड रूही आहूजा. एक प्राइम वीडियो पे एक सीरीज़ है जिसका नाम है बिग गर्ल्स डोंट क्राई. तो ये भी एक्चुअली में उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है. काफ़ी लोगों ने ये सीरीज़ बाद में जाके देखी है. सो शी ऑल्सो हरसेल्फ इज़ अ म्यूज़िकल टैलेंट भी है उसके पास. तो उसने काफ़ी कुछ गाने लिखे भी है. इनफैक्ट वो जो सीरीज़ है ना बिग गर्ल्स डोंट क्राई, अनीत पड्डा ने उसमें कुछ गाना, एक गाना है एक्चुअली में मासूम, उस मूवी में एक गाना है जो उसने लिखा है, कंपोज किया है और ख़ुद गाया भी है. सो बट शी वर्क्ड हार्ड टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़ बिफोर बिकमिंग फेमस. अपेरेंटली शी सेंट अराउंड थाउजेंड्स ऑफ कोल्ड ईमेल्स टू प्रोडक्शन हाउसेज सीकिंग द एक्टिंग अपॉर्चुनिटी. बहुत सारी ऑडिशंस भी उसने दिए थे, रिमाइंडर्स उसने दिए थे, कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिला. फाइनली शी लैंडेड अप विद अ लीडिंग रोल सैयारा में. एंड सैयारा मूवी के लिए भी जब ऑडिशन के लिए वो गई थी एंड जो डायरेक्टर मेकर्स है उन्होंने उनको बोला था कि तुम एक नो सिंपल सा कुर्ता पहन के आओ एंड उसमें तुम्हारी एक्टिंग हम देखना चाहते हैं. एंड जो कुर्ता पहन के वो ऑडिशन के लिए आई थी वही कुर्ता बाद में उन्होंने मूवी के लिए भी यूज़ किया था. सो यस, ये मूवी ने उनको काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ भी दी. बट शी इज़ वेरी सेलेक्टिव काइंड ऑफ पर्सन. उन्होंने ये बोला हुआ है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो ऐसा नहीं है कि भाई यू नो एक हिट मूवी होगी उसके बाद अगर मैं कोई मूवी नहीं करूँगी तो लोग भूल जाएंगे, ऐसा वो बिलीव नहीं करती है. शी बिलीव्स इन क्वालिटी वर्क देन क्वांटिटी वर्क. तो सैयारा मूवी के गाने से ही शुरुआत करते हैं और इस आवर में और भी ऐसे गाने आप सुनने वाले हैं. इसके बाद हीरो मूवी का गाना भी आप सुनने वाले हैं जिसमें कि हीरो एंड हीरोइन जो है हमारे, इन दोनों ने एक्चुअली में डेब्यू किया था. सो हीरो मूवी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें जो एक्टर एक्ट्रेस है इसका नाम है आथिया शेट्टी एंड सूरज पंचोली.

छह बज के 15 मिनट हो चुके हैं और आज कुछ ऐसी मूवीज के हम गाने प्ले कर रहे हैं जहाँ पे हमारे एक्टर एक्ट्रेस दोनों ने डेब्यू साथ में किया है। नाउ कमिंग अप जो गाना है विकी डोनर का सुनने वाले हैं। विकी डोनर जो है शुजित सरकार ने इस मूवी को बनाया है, प्रोड्यूस किया जॉन अब्राहम ने। वैसे इसमें डबल डेब्यू ही हुआ था बिकॉज इट मार्क्ड आयुष्मान खुराना बॉलीवुड डेब्यू एंड यामी गौतम्स डेब्यू एज अ लीडिंग एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा एज वेल। सो यामी गौतम ने अभी तक लीडिंग एक्ट्रेस का रोल नहीं प्ले किया था हिंदी सिनेमा में। सो दिस वॉज हर फर्स्ट वन, यू नो, बिकॉज एक टैबू सब्जेक्ट था। तो यामी इनिशियली थॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग अ फिल्म अबाउट स्पर्म डोनेशन वॉज अ जोक। सो जब उसको सबसे पहले ऐसे सुनने को मिला इस मूवी के बारे में, स्पेशली ऑडिशन के टाइम पे, एंड बट देन व्हेन शी फाउंड आउट देन लाइक कि ओके दिस इज़ अ रियली गुड प्रोजेक्ट अगर उसको मिलता है। एंड यू नो आयुष्मान एंड यामी दे वर फैमिली फ्रेंड्स बिफोर वर्किंग टुगेदर इन दिस फिल्म। एंड अवार्ड विनिंग डेब्यू था वैसे। आयुष्मान वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू, वाइल यामी गौतम को नॉमिनेशन मिला था फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड्स में। काफ़ी मेमोरेबल ट्रैक्स भी इस मूवी के रहे थे, तो सुनते हैं इसी मूवी का ये गाना। एंड इसके बाद थोड़ी देर में आपके लिए कम्युनिटी न्यूज़।

0: Makers.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, a household name in finance and insurance industry, and fortune, bring home the fortune.
3: रुजबेल, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
4: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
3: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
4: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
3: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
4: बुक नाउ विद सन टूर्स।
3: कॉल करें 0800 478686। Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/food festival.
5: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु केंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
6: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 LOGIC G, विच इज 0800 564424।
7: The sky cracks open. Your nemesis descends. He's brought an army. It's a bit dramatic. And there you are, cape billowing, jaws set, underwear over your pants. The fate of Tamaki Makaurau rests on your buff shoulders, so you leap into the sky, adjust your underwear, and shout!
8: The next station is Te Waihorotiu.
9: Watch, scroll, draw, game, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains, and ferries.
10: Now when you're on the loop with ANZ and take the train, money loops back. Get 50% cashback on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
11: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
13: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
14: The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari koi branch nahi hai.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
16: ट्रेंड मेकर्स आप यहाँ पे सुन रहे हैं और आज हम ऐसे मूवीज़ के गाने ट्रेंड मेकर्स में प्ले कर रहे हैं जहाँ पे एक साथ डेब्यू हुआ है डुओज का, तो डबल डेब्यू बेसिकली जहाँ पे हुआ है. एंड नेक्स्ट कमिंग अप जो गाना आप सुनने वाले हैं फगली मूवी से सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट सम सेलिब्रेशन. नवरात्रि सेलिब्रेशन हैपनिंग इन योर सुपर सिटी. रामकृष्ण मंदिर 25 ऑन्सलो एव मैनकाओ में सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि 20th अक्टूबर तक. फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स गरबा एंड डांडिया रास रहेगा आफ्टर कथा. श्री हनुमान मंदिर में आप जा सकते हैं नॉर्थ शोर में फ्रॉम 6:15 PM और डीजे गरबा रहेगा 8-10 बजे से लेके 9:30 बजे तक. श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर फ्रॉम 11th अक्टूबर टू 20th अक्टूबर सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि की सेलिब्रेशन 7 PM टू 9 PM एंड ये 38A वॉम्सली रोड ओटाहू में लोकेटेड है. दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट वहाँ पे भी जा सकते हैं आप 6:30 PM ऑनवर्ड्स. वहाँ पे गरबा डांडिया एंड हुदा तासा रास डेली होगा आफ्टर कथा. माँ दुर्गा टेम्पल में आप जा सकते हैं एवरी डे फ्रॉम 7 PM अंटिल 19th अक्टूबर. एक्चुअली में आप जा सकते हैं कन्या पूजन विल बी ऑन 18th एंड 19th अक्टूबर. श्री राम मंदिर हैंडरसन में आप जा सकते हैं 6 PM ऑनवर्ड्स. लाइव गरबा रहेगा वहाँ पे 8:30 PM ऑनवर्ड्स. एंड इसके रिलेटेड कुछ और इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे कि गरबा इवेंट हो रहा है दिस फ्राइडे 16 एंड सैटरडे 17 को बाय नॉर्थ शोर कम्युनिटी इवेंट्स एट बाफुड एंड थॉम्पसन नेटबॉल सेंटर में, जो कि नॉर्थ शोर में है. 7 PM ऑनवर्ड्स एंट्री एकदम फ्री है. ऑल्सो इस साल संप्रीति सेलिब्रेट कर रहे हैं सेकेंड एनुअल दुर्गा पूजा, जो कि 17th एंड 18th अक्टूबर को होने वाली है. इवेंट एकदम फ्री है, ओपन टू एवरीवन. सो ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा एंड अंजलि में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. भोग और मील सर्व किया जाएगा दोनों दिन में. कल्चर परफॉर्मेंसेस भी रहेंगी 7 PM ऑन बोथ इवनिंग्स. सिंदूर खेला एंड अदर ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस भी वहाँ पे रहने वाली है. लोकेशन इज फ्रीमैन्स बे कम्युनिटी हॉल 17th एंड 18th अक्टूबर को 7 PM ऑनवर्ड्स. एंड कोमल निषद आपके लिए वैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग लेके आ रहे हैं और इसकी डिटेल्स आपके साथ मैं थोड़ी देर में शेयर करने वाली हूँ. बट फॉर नाउ फगली मूवी का ये गाना, बिकॉज कियारा एडवानी एंड मोहित मारवा दोनों ने साथ में डेब्यू किया था. डबल डेब्यू हुआ था फगली मूवी में इन 2014. कियारा शी मेड हर हिंदी फिल्म डेब्यू प्लेइंग देवी, वन ऑफ द 4 यंग फ्रेंड्स इसने प्ले किया था. इसके बाद शी गॉट सम मूवीज लाइक MS धोनी, देन वहाँ पे एक रोल किया था उन्होंने जो कि धोनी की वाइफ का रोल किया था साक्षी का. देन कबीर सिंह मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ही अलग काइंड ऑफ रोल रहा था, कबीर सिंह एंड शेरशाह. मोहित मारवा ही मेड हिज बॉलीवुड डेब्यू इस मूवी के थ्रू. And another debut was Olympic medalist as well. So Indian boxer Vijendra Singh, he also made his Bollywood debut in Fugli movie. So उन्होंने गौरव का रोल इसमें प्ले किया था. इस मूवी में एक सोशल मैसेज भी था एंड दे वॉज इस मूवी को यू नो रिकोगनाइज ज़रूर किया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस में ये मूवी ज़्यादा नहीं चल पाई थी. इसी मूवी का ये गाना है रफ्तार की आवाज़ में.
17: डीजे वाले भाई साहब लगा दो कोई डुबचिक डुबचिक.

ट्रेंड मेकर्स में आज आप डबल डेब्यू मूवीज के गाने यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे कम्युनिटी न्यूज के बारे में बात करते हैं तो कोमल निषाद आपके लिए लेके आ रहे हैं रागा बाय द बे, एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल शो होने वाला है, फ्री इवेंट है, होस्टिंग सरोद प्लेयर प्राशेक बोरकर फ्रॉम मैयर घराना जो कि यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, तबला पे मनजीत सिंह रहने वाले हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे पंजाब घराना को। सो इट्स गोना बी अ रियली नाइस इवनिंग, एक बहुत ही म्यूजिकल एक क्लासिकल इवनिंग रहने वाली है। अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है दिस इवनिंग इज़ फॉर यू। सैटरडे 24th अक्टूबर को 6 PM ऑनवर्ड्स फ्रीमैन्स बे कम्युनिटी सेंटर में ये इवेंट होने वाला है। एंट्री एकदम फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए ऑन 02-109-8592, इट्स 02-109-8592। और एक और इवेंट हो रहा है 18th अक्टूबर को, मेनोपॉज ग्लोबल प्रेजेंट कर रहे हैं फ्री ऑनलाइन इवेंट फॉर वर्ल्ड मेनोपॉज डे। सो globalpowersearch.com पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द लाइव इवेंट एक्चुअली में, जहाँ पे आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट मिलेगी, अबाउट द मेनोपॉज के बारे में मिलेगी। अम्बेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब आपके लिए 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चर टूर्नामेंट लेके आ रहे हैं जिसकी एंट्री एकदम फ्री है। सो एक फैंटेस्टिक वीकेंड आपके लिए रहने वाला है विच इज़ अ लॉन्ग वीकेंड, तो 24th एंड 25th अक्टूबर। सो म्यूजिक कल्चर एंड फैमिली एंटरटेनमेंट रहेगा जहाँ पे ये पुके कोही में होने वाला है, कोलिन लॉरी फील्ड्स जो कि 47 रेनॉल्ड्स रोड पुके कोही में है। एक्साइटिंग 2 डे की सेलिब्रेशन ये है। टूर्नामेंट में कुछ स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स भी रहेंगे जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर। एंड वन ऑफ द मेजर हाईलाइट इज कि पंजाबी सिंगर माशा अली परफॉर्म करने वाले हैं 24th अक्टूबर को। सो इवेंट जो है 24th एंड 25th दो दिन में रहने वाला है, कोलिन लॉरी फील्ड्स 47 रेनॉल्ड्स रोड पुकेकोही में, फ्री फॉर एवरीवन, अल्कोहल फ्री एंड फैमिली फ्रेंडली इवेंट है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रदीप कुमार से बात कर सकते हैं ऑन द नंबर 02-1-238-5948। एंड अभी सुनते हैं एक ऐसी मूवी का गाना, वेल ये जो डेब्यू है ये साथ में तो हुआ लेकिन बाद में बहुत सारी न्यूज़ भी बनी। आई एम टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर एंड सोनम कपूर। सोनम कपूर ने इस मूवी के बाद बोला था कि वो कभी भी रणबीर कपूर के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहती।

ट्रेंड मेकर्स, आप यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरा वक्त हो चला है यहीं पे आपको टाटा बाय बाय कहने का। थोड़ी देर में ये जो अभी गाना सुनने वाले हैं, वैसे इसमें डेब्यू हुआ था धड़क मूवी में जानवी कपूर का और ईशान खट्टर का। वेल इसके बाद आप रामायण एक गाथा सुनने वाले हैं। रामायण एक गाथा हम एक 1 to 2 minutes का सेगमेंट यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपके लिए, एंड एवरी डे 3 times in a day हम लेके आ रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट स्टोरीज जो है फ्रॉम रामायण आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। शॉर्ट स्टोरीज है 1 या 2 minute की जो आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। एंड अगर आप ये मिस आउट कर लेते हैं, यू वॉन्ट टू हेयर इट अगेन सुनने के बाद भी, तो दिवाली लिख के भेजिए 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे रामायण एक गाथा ये आप सुन पाएंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, अब मेरी आपसे मुलाकात होने वाली है कल।

0: बहने लगी।
1: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
2: Traffic.
3: Experience Picasso like never before.
4: Cloudy overnight with a low of 16 on the northern from Town to Silverdale, taking just half an hour to Massey 15 minutes. On the southern, still keeping northbound from Ellerslie-Panmure to Green Lane, Town to Drury half an hour. Southwestern heavy heading north through Mangere Bridge. State Highway 16 closing fully westbound between Great North Road and Te Atatū Road tonight from 10 till 5 tomorrow morning.
3: Picasso, designed by Paul Smith, 80 original works, on now at Auckland Art Gallery.
2: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
5: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
6: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800 564424।
7: The Cooperative Bank are in the house. Got that home dream, but don't know where to start? Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for where you could be tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. We got you.
8: Busy day. Looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। Brought to you by Finance World, Ramayana Movie by Forum Films, Indelible Homes, Lotus Foreign Exchange, ABC Business Consultants, Sona Sansar, Passion Landscape, Amma's Food, PFSL, Arjun Supermarket, Big Bazaar, and Fortune Foods.
3: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
8: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
9: Be in to win one of five $10,000 MyTitan gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho, camping ka pura gear le sakte ho, ek room ka makeover kar sakte ho, ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo, and you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at MyTitan.
10: Exclusive UK and Europe flights are on sale now at Flight Center. Experience world class with Singapore Airlines, flying return to London from 2,625 per person. Book online or in store today. These T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
2: Enrolled yet?
1: How about you?
2: Are you enrolled?
3: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
4: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
7: At Bunnings, we've got what you need to kickstart your garden this spring, like Scott's Osmocote 40-litre premium potting mix, just $14.85. Start growing your garden for less this spring at Bunnings.
8: Bunnings Warehouse.
7: Lowest prices are just the beginning.
9: Want to save more on your next holiday? Webjet makes it easy. With holiday package deals across destinations like the Gold Coast, Bali and Fiji, you could get more value from your holiday budget by combining your flight and hotel as a package. Less back and forth and more of your trip sorted in one place. Book your holiday package at webjet.co.nz and go somewhere. T's and C's apply.
10: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
11: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
12: Check. Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
13: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
14: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Labour has unveiled its plan to boost the economy. The party would redirect $50 million from the Super Fund into the Elevate Fund for innovative businesses. Nationals hitting out at Te Pāti Māori and the Greens over a meeting with the mongrel mob. Photos posted online show some candidates posing for photos with members at a hui. Nationals' Paul Goldsmith is suggesting they're prioritising gangs over victims. The government has extended its agreement with Z Energy over the diesel reserve at Marsden Point to August next year. It means about 500,000 barrels can continue to be stored. Minister Shane Jones says fuel supplies remain consistent. In sport, the Breakers playing tonight from 9:30 away to the Sydney Kings. The Breakers come into the matchup 1-3 on the road. And the Track Cycling World Champs in Shanghai, the opening session on day one, qualifying in the men's and women's team pursuit. The Kiwi men qualified fifth, over 5 seconds behind the top qualifiers, Denmark, and the women qualified seventh, more than 7 seconds slower than Great Britain.
15: Sports News.
13: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari koi branch nahi hai.
13: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
17: हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस शो. मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए और आपको बॉलीवुड की दुनिया में लेके जाने के लिए. क्योंकि आज जबकि वेंसडे है तो नाइट कैफे 8 to midnight चलता है, लेकिन कुछ स्पेशल होता है 8 to 9 के बीच. हमेशा मंडे को आपके लिए नो लॉजिक मंडे, ट्यूजडे को कुक स्टूडियो रिलोडेड और वेंसडे को हो जाता है आपके लिए नाइट कैफे मिक्स मिड वीक मसाला, जिसमें आपके लिए होता है बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें. तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं और आपका स्वागत करते हैं नाइट कैफे मिड वीक मसाला में.
13: थोड़ा हटके, थोड़ा स्पाइसी, ये है मिड वीक मसाला.
17: वेलकम एवरीवन, नाइट कैफे मिडवीक मसाला में आपका स्वागत है. लेटेस्ट मसालेदार बॉलीवुड गॉसिप, ताज़ा तरीन खबरें और आपके सितारे क्या कुछ कर रहे हैं अभी बॉलीवुड में और लेटेस्ट बॉलीवुड गपशप, ये भी आपके लिए हम लेकर आते हैं इस सेगमेंट में. तो नाइट कैफे मिडवीक मसाला शुरू कर रहे हैं. हम बातें करेंगे आज तनुश्री दत्ता, जिन्होंने नाना पाटेकर के बारे में बहुत कुछ बोला है और नाना पाटेकर्स ऑटोप्सी रिपोर्ट ने क्या कुछ कंफर्म किया है अबाउट हिज कॉज ऑफ डेथ. आमिर खान्स नीज डिस्प्लेज इंजरीज आफ्टर डिटेंशन. एक टाइम इमरान खान को मुंबई प्रोटेस्ट में डिटेन किया गया और साथ में विजय वर्मा और हुमा कुरैशी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट इन्होंने दिखाया, अपना समर्थन दिखाया. और इसके अलावा कुछ और भी अन्य खबरें हैं हमारे पास जिसके लिए आपको हमारा साथ देना है, क्योंकि बहुत कुछ हम लेकर आए. खासतौर पर रामायण अनाउंसेस इट्स वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट, इस पर भी जानकारी आपके लिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. वेलकम टू द शो एवरीवन, नाइट कैफे मिडवीक मसाला में आपका स्वागत है.

मिडवीक मसाला नाइट कैफे मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है। सबसे पहले शुरू करते हैं रामायण, जिनका वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट अब रिलीज कर दिया गया है। लोकेशन जो है वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज बोला गया है। और मेकर्स अनाउंस कि रणबीर कपूर और यश तारा रामायण अब 5 नवंबर को रिलीज होगी। द फिल्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स जो इंडियन सिनेमा ने अब तक शायद प्रस्तुत किया होगा। तो अब 5 नवंबर को रणबीर कपूर और यश द्वारा अभिनीत ये फिल्म को हम देख पाएंगे। इस फिल्म की ट्रेलर को मैंने देखा है, लाजवाब ट्रेलर दिख रहा है, थोड़ा बहुत रियल दिखा है ना, जैसे कि कुछ और जो फिल्मों को बनाया गया है रीसेंट फिल्मों को रामायण पर, तो बहुत AI या बहुत एनिमेटेड दिख रहा है, लेकिन शायद ये थोड़ा हट कर है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कितना हमें पसंद आता है वंस वी वॉच द होल मूवी। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, कुछ और गाने आपके लिए। इसके बाद में तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बारे में जो बातें हो रही है इस पर जानकारी आपके लिए।

0: Night Cafe. Wednesday ka tadka. Midweek masala on Hum.
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। तनिश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के बारे में बोला है, ये इन्होंने नाना पाटेकर्स डेथ को डिस्क्राइब किया है एज ए सिग्निफिकेंट पर्सनल डेवलपमेंट इन अ लाइफ। और इनका वीडियो भी मैंने देखा है जहाँ पर इन्होंने आके कहा है कि इनको बहुत तसल्ली मिली, इनको जस्टिस मिला है जब नाना पाटेकर की मौत हुई है। इनका रिमार्क्स तब हुआ जब एक पब्लिक डिस्कशन हो रहा था सराउंडिंग द एलिगेशंस शी मेड ड्यूरिंग इंडियाज़ मी टू मूवमेंट, जहाँ पर इन्होंने नाना पाटेकर के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। और इन्होंने कहा है कि अब जाकर इनको एक सेंस ऑफ जस्टिस मिला है जब नाना पाटेकर इनके बीच नहीं रहे और इनके आसपास नहीं रहे। तनुश्री दत्ता के काफ़ी वीडियोस मैंने देखा है जो अभी सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया में, ये अब चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ ही देर में नाना पाटेकर ऑटोप्सी रिपोर्ट ने क्या कन्फर्म किया है अबाउट हिज कॉज ऑफ डेथ, इस पर जानकारी आपके लिए।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मिडवीक मसाला
2: नाइट कैफे मिडवीक मसाला आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। नाना पाटेकर ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वेटरन एक्टर नाना पाटेकर डाइड फॉलोइंग ए हार्ट अटैक जो जिसका कोज हुआ था बाय ए कोरोनरी आर्टरी ब्लड क्लॉट। ये 75 इयर्स ओल्ड थे और इमरजेंसी रिससिटेशन एफर्ट्स किए गए थे लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहे हैं। तो इनकी मौत कहा गया है कि ये हार्ट अटैक से हुआ है जो कि ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड क्लॉट की वजह से हुआ है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। खासतौर पर एक्टर इमरान खान को मुंबई प्रोटेस्ट के दौरान डिटेन किया गया है, इस पर जानकारी।

0: Night Cafe on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: Now's the time to switch to hybrid at Winger Motors, your home of Chery. Make the most of up to $3,000 off across the Tiggo 4 Hybrid, Tiggo 7 Super Hybrid and Tiggo 8 Super Hybrid range. T's and C's apply. Get into a hybrid SUV for summer starting from just $29,990 plus on-road costs. Hurry, offer ends October 31st. Visit Winger Motors West Auckland, Green Lane at Pukekohe or winger.co.nz.
8: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
9: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari koi branch nahi hai.
10: Hum. Night Cafe on Hum. Thoda hotke, thoda spicy. Ye hai midweek masala.
12: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे, इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे। एक्टर इमरान खान को मुंबई प्रोटेस्ट के दौरान डिटेन किया गया है। ये एक्टर जो है ये एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे कनेक्टेड टू ए कॉल बाय द सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन। इनकी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन और जैन मरी खान को भी डिटेन किया गया था। अभी कहा गया है कि डिटेंशन के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं इस पर जानकारी हमें नहीं मिला है, लेकिन कहा गया है कि इनको और इनके गर्लफ्रेंड और जैन मरी खान को डिटेन किया गया था। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, कुछ और गाने और भी जानकारी आपके लिए बहुत ही जल्दी हम लेकर आएंगे नाइट कैफे मिडवीक मसाला में।
13: hey! This is Deepak P. Songa.

पीसफुल प्रोटेस्ट एज अ क्राइम. इन्होंने कहा है कि कानूनी जुर्म नहीं होनी चाहिए जबकि लोग अपने ओपिनियन और प्रोटेस्ट से अपना ह्यूमन राइट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं इन राइट्स को. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ आज के लिए नाइट कैफे में, मिडवीक मसाला में बस इतना ही. अगले घंटे पर मिलते हैं विद मोर फन, मोर म्यूजिक और मोर मस्ती.

0: Rovia.
1: Streaming on Rover.
2: दिवाली आई खुशियाँ लाई PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं PFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई
3: Time check.
4: Brought to you by Maan Tyres for all kinds of tyres and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
3: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
5: Good evening to you. With the latest at 9, I'm Jeff Bryan. The latest leaders debate, Christopher Luxon and Chris Hipkins, both agreed to work together on a bipartisan long-term plan for medicine funding within the first 100 days after the election. And there's been the usual battle over budgets and national debt. Auckland's Water Care is apologising to customers after a billing error that affected nearly 44,000 accounts, totalling about $6.1 million. It says the issue occurred during an upgrade of the billing system. Multiple emergency services have reportedly rushed to Roberts Road in Masterton. Two people were taken to hospital. In sport, reports across the Tasman, the NRL is seeking feedback from clubs about expanding the playoffs as early as next season. It would introduce a wild card weekend for teams finishing 7th to 10th. Rugby League with Machinery House in a league of their own. And the Track Cycling World Champs Day 1, the Kiwi men's team Pursuit qualified 5th and will ride against Germany in the first round. The women were 7th. And in the women's team sprint, New Zealand qualified 7th. And later tonight, the women's scratch race featuring Prue Fowler.
6: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. 1
7: मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। नवरात्रि की सेलिब्रेशन सभी जगहों पर है तो माँ की पूजा सभी जगहों पर हो रहा है। जय जयकार देवी माँ की हो रही है तो ऐसे में काफी जगहों पर आप जाकर भाग भी ले सकते हैं। रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाउ फ्रॉम संडे 11th अक्टूबर टू ट्यूजडे 20th अक्टूबर तक होगा फ्रॉम 6 PM। गरबा और डांडिया रास अर्ली आफ्टर कथा यहाँ पर होगा, डेली आफ्टर कथा होगा। श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बर्गडेल नॉट शो ओकलैंड फ्रॉम 6:15 PM। डीजे गरबा फ्रॉम 8:10 PM टू 9:30 PM। भजन जैमिंग और डीजे गरबा यहाँ पर होगा 18 अक्टूबर फ्रॉम 6:30 PM। इसके अलावा श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर फ्रॉम 11th अक्टूबर टू 20th अक्टूबर फ्रॉम 7 PM टू 9 PM एट 28A वॉम्सली रोड ओटाहू ओकलैंड में नवरात्रि मनाया जा रहा है तो आप यहां पर भाग लेने के लिए जा सकते हैं। देव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम संडे 11th अक्टूबर टू ट्यूजडे 20th अक्टूबर फ्रॉम 6:30 PM एट द के 5/57 केवेंडिश ड्राइव मनुका ऑपोजिट वेयर हाउस। गरबा डांडिया और हुद्दतासा रास डेली यहाँ पर होगा कथा के बाद। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। कुछ और सूचनाएं कुछ ही देर में।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
2: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें। जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind, ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे। Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
3: Curtain Studio's massive three-day sale is on now. Our top-selling studio curtain and blind range is now half price. That's right, 50% off all studio ready-mades and custom fabrics and blinds. But be quick, sale ends Saturday, only at Curtain Studio.
4: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
6: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
7: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
8: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
7: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
8: हम
7: नाइट कैफे ऑन हम।
9: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। Hum wants to send you to the big match. Football fans, तैयार हो जाए क्योंकि All Whites are taking on India in Auckland on Thursday, 12th November. और thanks to New Zealand Football, आप यहाँ पर live इस game को देखने के लिए जा सकते हैं at the Go Media Stadium. Double pass जीतने का मौका है to watch New Zealand take on India. अगर आपको इस action का हिस्सा बनना है, तो अभी ही Hum FM के Facebook page पर जाए, tag the friend you want to take along और अपना prediction for the final score बताएं। Will it be a win for the All Whites या फिर India की जीत होगी? अपना prediction बताएं, enter the competition और you could be cheering your team on in person. Games को announce किया गया था by Honorable Mark Mitchell as part of Indian Prime Minister Narendra Modi's visit to New Zealand, or it will form part of a series of sporting events to celebrate 100 years of unity through sport between both nations. पहले ऑल वाइट्स का सामना हो चुका था विद इंडिया ऑन टू ओकेजन्स, ड्रॉइंग नील ऑल इन 1981 और फिर विनिंग 2-1 इन 2018. ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया नवंबर 12th को खेला जाएगा गो मीडिया स्टेडियम में। आज ही आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए। थैंक्स टू न्यूजीलैंड फुटबॉल, यू कुड बी गोइंग टू द गेम और इन पर्सन आप जाकर अपने फेवरेट टीम को चीयर भी कर पाएंगे। हम एफ एम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर ऑन एंड ऑफ द पिच आपके लिए। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। और आपको बता दूं कि रोवा डाउनलोड करने में बहुत फायदे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत सारे शानदार प्राइजेस, कंपटीशन में भाग लेने का मौका, म्यूजिक प्लस स्टेशंस की अगर बात करें तो 80s जुक बॉक्स, हम रिवाइंड, फिजी भजन, चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, फिजी कीर्तन संग्रह जिसमें बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब यहां पर ला दिया गया है, राहत फतेह अली खान के सूफी और कवाली सॉन्ग्स यहां पर आपको मिलेंगे, 80s के गाने अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, हम रिवाइंड में 60s और 70s के हिट सुनना चाहते हैं तो रोवा आज ही डाउनलोड करें और इसमें काफी फायदे आपके लिए होता है और हमको अपने करीब रखने का मौका हमेशा रहता है। कृष्ण का

सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Festival of Fortune. Win your share of $5,000 worth of prizes with hum. This Diwali, 30th October, ko draw hone ja raha hai. To abhi ek aur competition aapke liye shuru karenge hum, taki aap jeet sake $1,000 worth of fuel voucher. One winner ko milega $1,000 of fuel voucher. Imagine kijiye, ye bahut hi shandar inaam jeetne ka mauka hai. You'll have $1,000 worth of fuel voucher to yourself. IH text kare apne naam ke saath 5599 par. Abhi aapke paas mauka hai. IH letter I aur letter H text kare apne naam ke saath 5599 par to be in the draw to win Indelible Homes, your building experts. Ye proudly aap तक लेकर आ रहे हैं ये प्राइज indelibleHomes.co.nz आप विजिट कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए. तो याद रहे IH के साथ अपना नाम 5599 पर ड्रो में शामिल होकर $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर जीतने का मौका है और ये किसी एक विजेता को मिलेगा, लकी विजेता को मिलेगा. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. दिवाली की धूम सभी जगहों पर है, तो ऐसे में एक दिया एक कहानी. This Diwali on Hum. हम आपके लिए सेलिब्रेट करना चाहता है उस शख्स को जो समवन स्पेशल है आपके ज़िंदगी में. नॉट फैमिली बाय ब्लड, लेकिन फैमिली बाय हार्ट. कौन है वो लाइट ऑफ योर लाइफ, आप हमें बताएं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, इंस्पायर किया, मेड यू स्माइल, सिंपली मेड योर लाइफ ब्राइटर बाय बीइंग इन इट. उनके होने से आपके ज़िंदगी में एक अलग रोशनी है. 0800-004-866 पर आप कॉल कर एक स्पेशल दिवाली शाउट आउट उनको दे सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि वाई यू अप्रिशिएट हैविंग देम इन योर लाइफ एंड गो इनटू द ड्रॉ टू विन $300 इनफैक्ट जीतने का मौका रहेगा. ड्रॉ विल हैपन ऑन फ्राइडे 6th November. तो दिस दिवाली वी आर सेलिब्रेटिंग द पीपल हु लाइट अप आवर लाइव्स, और हम ये मौका आपको दे रहे हैं एक दिया एक कहानी के दौरान. दिस दिवाली ओनली ऑन हम. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, जो कि बहुत ही धमाकेदार प्राइजेस जीतने का सिलसिला आपके लिए शुरू कर दिया गया है हम पर टू विन प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। दिवाली बहुत ही करीब है तो ऐसे में ड्रॉ डेट भी बहुत ही करीब आ चुका है। 30 अक्टूबर को ड्रॉ होगा फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून के जरिए आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। तो अभी $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग अगर आपको जीतना है, होम डेकोरेशन या फिर फर्नीचर वाउचर, वन विनर ओनली होगा। तो इसके लिए आप HL टेक्स्ट करें अपने नाम के साथ 5599 पर टू बी इन द ड्रो। हैरिंगटन लिविंग मनुकाउ स्प्रिंग सेल शुरू कर दिया गया है। ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री आपको मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। दिस इज ओनली अवेलेबल एट हैरिंगटन लिविंग मनुकाउ। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी आप भी अपना नाम HL के साथ 5599 पर भेजे टू बी इन द ड्रो।

0: Cafe on Hum.
1: Driving you home.
0: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
9: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
2: तो क्या करें?
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
13: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
14: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
15: They say there's nothing like a hot bath.
16: Code Interior say there's nothing like a bath that matches perfectly to the basins.
15: Code Interiors is the expert in exclusively designed baths and basins that complement and refine any bathroom on any budget.
16: Don't settle for nearly, settle for exact.
15: Whether it's Cove Concrete, Villa Stone or acrylic.
16: Code Interiors, perfecting baths and basins.
15: Find your nearest stockist at codeinteriors.co.nz.

0: Coffee on Hum.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इलेक्शन स्पेशल इन ड्राइव शो. कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं लेबर कैंडिडेट खरक सिंह तकनीनी, और आप इनको आप सुन पाएंगे हम पॉडकास्ट के जरिए अनफिल्टर्ड ड्राइव में. कुछ मुद्दों पर बातें की गई है, जैसे स्मॉल बिजनेस एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग, सुपर मार्केट कॉम्पिटिशन, रिटेल क्राइम एंड कम्युनिटी सेफ्टी, पुलिसिंग, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनके विजन फॉर तकनीनी एंड साउथ ओकलैंड. इनके आंसर्स क्या है, इनका लेटेस्ट पॉलिटिकल जो डिबेट अभी चल रहे हैं बिटवीन क्रिस हिपकिंस एंड क्रिस्टोफर लक्सन, इस पे इनका टेक क्या है, इनके आंसर्स क्या है, और व्हाट डज लेबर हैव प्लान्ड, और व्हाट कुड दीज पॉलिसीज मीन फॉर आवर कम्युनिटी. फुल कन्वर्सेशन अभी अवेलेबल है आपके लिए. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर. फुल इंटरव्यू आपको मिल जाएगा विद खरक सिंह, लेबर कैंडिडेट फॉर तकनीनी ऑन हम. Outer OS speaks, so hear the conversation before you make your decision. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. हमारी मुलाकात होती है अब आपके साथ कल रात को आ जाएंगे 8 बजे, 8 to midnight हमारा साथ होगा और आपके लिए होगा रिदम एंड रोमेंस. तो अपना बहुत ही ख्याल रखिए. कल रोमांटिक सिलसिला जो शुरू होगा हमारे साथ में, उसमें आपकी सहयोग और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा कल. अपना बहुत ही ख्याल रखिए. गुड नाइट एवरीवन.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की

0: करनी चाहिए थाईलैंड।
1: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
3: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
4: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
5: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
6: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
5: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
7: नाइट फ्लाइट।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: रुजबेल 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है.
2: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक.
1: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में.
2: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज. बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज.
1: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज.
2: बुक नाउ विद सन टूर्स.
1: कॉल करें 0800-478-686.
0: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर. अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स. स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर फॉर यू. और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है. बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz. सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ. द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली.
3: Diwali is here और नोट शो में होगा रोशनी का जश्न. Bigger and brighter than ever. Stefano's Financial Solutions with Team Punish and Anna from Barfoot and Thompson presents नोट शो Diwali. Festival of Light at Smales Farm, Takapuna. Saturday, 24th October, 12 noon to 9 pm. Dance performances all day. Fun activities for the kids. Yummy khana and shopping. और रात 9 बजे spectacular fireworks. Free entry, free car park. नोट शो Diwali. Celebrate the light with your people.

हीरोज पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरी

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
2: एक घर, एक दिवाली और एक लिस्ट जो खत्म ही नहीं होती। दिवाली डेकोरेशंस, वाटर क्ले और इलेक्ट्रिक दियास, आइडल्स, पूजा सामग्री, करवा थाली सेट और किचन में हीरो की एंट्री। प्रेशर कुकर, ट्राइप्लाई कुकवेयर, स्टील यूटेंसिल्स, NZ सर्टिफाइड गैस स्टोव, तंदूर, डिनर सेट्स, ब्लॉकबस्टर सेल, अप टू 35% ऑफ प्लस फ्री ऑकलैंड डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $50. गुरुमार्ट, घर का सामान, लो प्राइसेस, हाई क्वालिटी, हमेशा।
3: गुरुमार्ट, 154 कोलमा रोड, पापेटोय या gurumart.co.nz।
4: क्या आपका टैक्स रिटर्न अप टू डेट है? फाइल करने में एक्सपर्ट

0: Night Flight on Hum.
1: Listen up, yo. It's Valentine's Day.
2: Groove.

0: Amsterdam AM. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
4: Media Works Complaints, how can I help?
5: Yeah, hello?
4: Hi.
5: Hi, yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
4: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
5: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
4: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
5: Great, sing it to me.
6: Advertise with
7: Media Works.
6: New Zealand listens to us.
8: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Budget the gun name.

0: dear.
1: Streaming on Rover.
2: Mitreton Mega Henderson अब weekdays पे सुबह 6 बजे से खुला है. Building supplies, timber, power tools और trade essentials सब कुछ site पे जाने से पहले ही उठा लो. Get in, get sorted and get the job done earlier. Open from 6 AM. Mitreton Mega Henderson.
3: डिब्बा खुल गया.
4: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे. संजना का डिब्बा खुल गया.
5: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा. फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया. हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले. बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
7: Elite Bathroom Wear has 25% off Voda and Greens tapware for the month of October.
8: That's right, 25% off the full Voda and Greens tapware ranges.
7: Basin mixers, bath mixers, shower mixers, kitchen mixers.
8: Plus a great range of finishes to match your bathroom or kitchen.
7: See them all in person at Elite Bathroom Wear's huge 670 square metre showroom.
8: The team can help you find the right tap for your space and budget.
7: Shop in store at Allens Road, East Tamaki or elitebathroomwear.co.nz.
8: Elite Bathroom Wear, a reflection of you.
9: Media Works complaints. How can I help?
10: Yeah. Hello.
9: Hi.
10: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
9: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
10: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
9: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
10: Great. Sing it to me.
11: Advertise with
12: Media Works.
11: New Zealand listens to us.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
0: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800 564424।
2: It's Carpet Court's massive three-day sale. Right now, save thousands on carpet, vinyl, and hard floor, including massive savings on big brands like Rhino. Bring in your floor measurements today. Hurry, sale ends Saturday, only at Carpet Court.
3: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
4: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
5: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
6: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है।
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI।
9: फ्री गोल्ड कॉइन्स और डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
10: यस बेबो।
9: कैच क्या है?
10: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू।

0: और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
0: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड।
2: PNC सब

अंडा अंडा अंडा अंडा। हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है। ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

0: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
1: Kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
2: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
3: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
4: Flooring Extra. Adore your floor.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
9: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
12: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
13: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
14: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
15: एक घर, एक दिवाली और एक लिस्ट जो खत्म ही नहीं होती। दिवाली डेकोरेशंस, वाटर, क्ले और इलेक्ट्रिक दियास, आइडल्स, पूजा सामग्री, करवा थाली सेट और किचन में हीरो की एंट्री। प्रेशर कुकर, ट्राइप्लाई कुकवेयर, स्टील यूटेंसिल्स, NZ सर्टिफाइड गैस स्टोव, तंदूर, डिनर सेट्स, ब्लॉकबस्टर सेल, अप टू 35% ऑफ प्लस फ्री ऑकलैंड डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $50। गुरुमार्ट, घर का सामान, लो प्राइसेस, हाई क्वालिटी हमेशा।
16: गुरुमार्ट, 154 कोलमा रोड, पापेटोई या gurumart.co.nz।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।

मेधासी देवी विदिताक्ष शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्भव सागर नौर संगह श्री कैट भारी हृदय कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिक प्रतिष्ठा ईशत सहासम मलम परिपूर्ण चंद्रा बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम प्रहृत मातुरुषा तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषा असुरेण दिष्ट्वा तु देवी कुप्तम भ्रकुटी करालम उद्यच्छशांक सदृश छवि अन्य सद्यः प्राणान मुमोच महिषस्तदैव चित्रम कैर्जीव्यते ही कुप्तांताक दर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाये सद्यो विनाश ऐसी कोवती कुलानि विज्ञातमेतद्धुनैव यदस्तमेदन नीतम बलम सुविपुलम महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांशिना च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निभृतात्मज भृत्यदारा येषां सदा अभ्युदयदा भवति प्रसन्ना हे देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी आप प्रसन्न हो परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वही देश में सम्मानित हैं उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि यत्याद्रिता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गम प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तो स्वस्तै स्मिता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्द्रिचित्ता एविर्हितैर् जगदुपैति सुखम् तथैति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युम् अधिगम्य दिव्यम् प्रयान्तु मत्वेति नून महितान्विन हंसि देवी दिष्ट्वैव किन्न भवति प्रक्रोति भस्म सर्वासुरान् रेषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि शस्त्र पूता इत्थम् सतिर्भवति तेष्वपि ते साध्वी खड़ग प्रभानिक विस्फोरणैस्तथोग्रैः शूलाग्र कांति निभेन्द्रिशो असुराणाम् यन्नागताम् विलय मनसो मदिन्दु खंडम् योग्याननम् तब विलोकयताम् तदेतत् हे देवी आप ही की कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। हे देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती इसमें एक रहस्य है।
ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाव की धनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे।

ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देव्योवाच ब्रियताम तदशा सर्वे यदस्मोत्तो अभिवांछितम। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवाउचु भगवत्या कृतम सर्वम न किंचदवशिष्यते यद्यम निहतः शत्रुस्माकं महिषासुरः यदि चापं वरो देयस् त्वयास्मकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मृत्यः स्त्वैवैर्भिस्त्वां स्तोष्यत्र मलानने तस्य वित्तर्थ विभवैर धनदारादि संपदाम वृद्धे अस्मत् प्रसन्नाम त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट से बचावें। तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि इरोवाच इति प्रसादिता देवैर जगतो अर्थे तथात्मनः तथेत्युक्ता भद्रकाली भूवान्तरहिता नृप इत्येतत् कथितं भूप संभूता स यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी पुण्यश्च गौरी देहात्।

ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।

ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवतः अनुष्टुप छंदा भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूप

तीन्धनांत विलसच्छीं तांशु तुल्य प्रभावम् गौरी देश मुद्भवाम् त्रिजगताम् आधार भूताम् महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुभादि दैत्यार्दिनी। पांचवें अध्याय के प्रारंभ में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, अध्याय के अंत तक इन्हीं का विवरण है। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधार भूता और शुंभ आदि दैत्य का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूं। ओम कलीम ऋषि रुवाच पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम सुराभ्याम शचीपते

0: दत्तो यथा अपत्सु स्मृताखिलः भवताम् नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः।
1: इति कृत्वा मतिर्देव हिमवन्तम् नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीम् विष्णुमायाम् प्रतुष्ठुः।
2: ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित करके राज्य भ्रष्ट पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से त्रिस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे।

0: 10 a.m.
1: Glad I got my enrollment sorted the other day.
2: See, mate, I told you it was easy.
3: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
2: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
3: Really? What if I miss it?
2: Well, your vote won't count for this year's election.
3: Achcha! You've convinced me. I'll enroll tonight.
4: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
5: मैं हूँ हरीश लोडिया दिवाली की धूम एट सोना संसार नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस सोना संसार 190 स्टोरा रोड माउंट

0: की है। फिलहाल तो आज के सुबह की शुरुआत भी हो रही है आपके साथ, जहां पर ब्रेकफास्ट कैचअप में क्या कुछ है ये खबरों में आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में।
1: बिल्कुल बताएंगे और आपको इन्फॉर्म्ड और एंटरटेन्ड रखेंगे अभी से लेकर 10 बजे के बीच। बहुत सारी चीजें होनी है और हो रही है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारियां हम आपको देंगे।
2: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

0: दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
1: माइटन मेगा हेंडरसन अब वीकडेज पे सुबह 6 बजे से खुला है। बिल्डिंग सप्लाईज, टिम्बर, पावर टूल्स और ट्रेड एसेंशियल्स सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो। गेट इन, गेट सॉर्टेड एंड गेट द जॉब डन अर्लियर। ओपन फ्रॉम 6 एएम। माइटन मेगा हेंडरसन।
2: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
3: The big sale is on now at Bazaar Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Bazaar Us Manukau and Pukekohe where dreams begin.
4: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
5: मैं हूँ हरीश लोढ़िया। दिवाली की धूम एट सोना संसार। नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है। सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है। लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है। डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस। सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड। हमारा फोन नंबर 629-3333। फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau. Global Headlines.
8: आज सुबह के मुख्य समाचारों में जेमिनी में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगने से 3 इंडियन नागरिकों की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हुए हैं। फायर फाइटर्स को दूसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट से 2 महिलाओं और एक पुरुष के शव मिले, जबकि आग स्टेवल के जरिए फैलने से रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफ़ी परेशानी आई। पुलिस ने जमीन पर रहने वाले 41 साल के रोमेनियन नागरिक को मर्डर और आर्सन के शक में अरेस्ट कर लिया है। ईरान में 23 साल की अकाउंटिंग स्टूडेंट को सोशल मीडिया पर ब्लास्फेमी के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई है। साइबर पुलिस द्वारा ऑनलाइन एक्टिविटी फ्लैग किए जाने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था, जहां उन पर प्रॉफिट मोहम्मद और इनफॉलिबल इमाम्स का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। नजमे अमीनी को दी गई इस सज़ा ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक उन्हें एक प्रिजन में 3 महीने सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और सीवियर फिजिकल अब्यूज का सामना करना पड़ा, जबकि ये डेथ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। फिजी में नेशनल फेडरेशन पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में सुधार की मांग करते हुए क्लोज 1 से क्रिश्चियनिटी को फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हटाने और इक्वल राइट्स के साथ 56 मेंबर MMP इलेक्टोरल सिस्टम की सिफारिश की है। नेशनल फेडरेशन पार्टी ने मिलिट्री को सिविलियन अथॉरिटी के अंडर रखने, इम्यूनिटी प्रोविजन खत्म करने और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए टाइमलाइन को मिड दिसंबर तक बढ़ाने की शर्त रखी है। पार्टी के प्रधान प्रमोद चंद के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी जनता के कंसेंट से आनी चाहिए और इन जरूरी बदलावों के बिना NFP का सपोर्ट कंडीशनल रहेगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित हो रहा है। यह मैच फिलहाल खेला जा रहा है और इसे जीतने के लिए भारत को 16 बॉल्स में 47 रन की जरूरत है। वेस्टइंडीज ने अपने इनिंग्स में तीन खिलाड़ी खोकर 247 रन बनाए। अभी 17.2 ओवर्स के बाद छह खिलाड़ी खोने के बाद इंडिया 201 रन पर है। यूएफा चैंपियंस लीग के मैचेस आज एक बार फिर खेले जा रहे हैं। अभी प्रथम हिस्से में लिवरपूल की जीत LASK के खिलाफ 2-0 से हो रही है, जबकि फायनूड और कोमो 1-1 गोल से बराबर है। बाकी के मैचेस सुबह 8 बजे शुरू होंगे, जिन पर जानकारियां आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 20 minute है फिलहाल, अब 6 बजकर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और आज बॉलीवुड से भी रिलेटेड कई स्टोरीज आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं और इनकी जानकारियां जो है ये तो हम आपको देते ही रहते हैं। रोहित शेट्टी ये काफ़ी बिजी रहे हैं अभी, खतरों के खिलाड़ी का जो नया सीजन है कुछ दिन पहले रैप अप हुआ है और इनका 2027 भी काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस दौरान होने को हैं।
1: क्या क्या ऐसा क्या कर रही है, मतलब इज ही डायरेक्टिंग एनी अदर मूवी और प्रोड्यूसिंग एनी मूवी?
0: गोलमाल 5 रिलीज होने को है
1: और नेक्स्ट ईयर,
0: हाँ
1: ओके।
0: और उसके अलावा जॉन अब्राहम के साथ इनकी फिल्म आ रही है मारिया IPS, जिसमें गोल जो जॉन अब्राहम है ये टॉप कॉप राकेश मारिया की भूमिका निभाएंगे। और इसके अलावा ये एक प्रोजेक्ट जो है इसको भी बैक कर रहे हैं जिसमें साउथ की लीडिंग एक्ट्रेस जो है कृति शेट्टी ये बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं।
1: ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक द नेम ऑफ दैट वन वुड बी हम तेरे प्यार में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने कहीं पर पढ़ा था आई थिंक। तो देखते हैं कि ये फिल्म जो इनके लिए कितनी कमाल की साबित होती है। बट ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी बता दें कि खोसला का घोसला ये फिल्म आपने देखी है?
0: नहीं मैंने नहीं देखी।
1: तो व्हेन इट कम्स टू यू नो अ मूवी जो इस जॉनर का हो जहाँ पर कुछ ज़रूरी मैसेज भी पहुँचाया जाए और साथ में हंसी मजाक भी थोड़ा बहुत किया जाए, खोसला का घोसला एक ऐसा फिल्म है जिसे हमेशा याद किया जाता है। तो दिस पर्टिकुलर मूवी इसका पार्ट 2 आने वाला है, खोसला का घोसला 2, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज सपोज टू रिलीज दिस ईयर, अब उसे पोस्टपोन कर अगले साल मार्च महीने के लिए जो है ये टाल दिया गया है।
0: सो लेट्स सी, बॉलीवुड से और भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस प्रोग्राम में। आज गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस जो है ये भी आए हैं 4 बजे के वक्त। बॉबी मान जी का मैसेज जो है ये आया था, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमारा साथ देने के लिए। और उसके अलावा गुड मॉर्निंग टू ऑल, राज ड्राइविंग फॉर RV प्रकाश ट्रांसपोर्ट, बी सेफ एंड हैव अ गुड एंड ब्लेस्ड डे। और साथ में राम राम जय साई राम, हैप्पी थर्सडे एवरीवन। मिस्टर मटा मटा आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग और बिनीता जी सुबह सुबह याद करने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: Accurate traffic.
5: Experience Picasso like never before.
6: Cloudy today but windy and wet at times, high of 19 degrees. Coming in on the northwestern motorway, fine up to St Luke's, but then kind of heavy from there to the city. We've got a breakdown blocking the middle lane just before Newton Road as you close into the CBD. Southern motorway, 25 minutes Manukau to town, slow Papakura to Papatoetoe and building overall. And northern, 18 minutes in from Constellation, slow there to Milford.
5: Picasso, designed by Paul Smith, 80 original works, on now at Auckland Art Gallery.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
10: Now when you're on the loop with ANZ and take the train, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
11: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
4: barbecue just got baconated at Wendy's. Meet the new barbecue baconator range. Go all in with the barbecue baconator or get cheesy with the barbecue cheesinator. Then top it off with a new coffee frosty shake. Available in-store or on the app. Only at Wendy's.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: वैसे फिलहाल अगर समय की ओर देखें तो 30 मिनट हो रहे हैं 6:00 और आज है ट्यूसडे 15th of October। आज के इस दिन क्या कुछ कहां पर मार्क किया जा रहा है, क्या क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा आपके साथ हम जरूर करेंगे। सो याद रहे कि अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या आज आपकी शादी की सालगिरह है, आप हमारे पास अपने मैसेजेस जो है ये सेंड कर सकते हैं on 5599 और आपको अगले घंटे हम विश करते हुए ज़रूर चलेंगे।
3: और ये मैसेजेस जो है 7:30 के बाद आपके लिए होंगे। आज के दिन अगर देखें कई चीज़ें जो है ये मार्क की जाती हैं और इनमें शामिल हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन।
2: ओके।
3: और उसके साथ आज 15th of October इज गेट टू नो योर कस्टमर्स डे। आज वर्ल्ड वैल्यूज डे ये मार्क किया जाता है। इसके अलावा गेट स्मार्ट अबाउट क्रेडिट डे ये भी आज मार्क किया जाता है। इंटरनेशनल क्रेडिट यूनियन डे और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ये सारी चीज़ें आज मार्क की जा रही हैं।
2: तो देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डेज जो आप भी सेलिब्रेट कर सकते हैं जिससे जुड़े अवेयरनेस लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं आपकी जानकारी में। और इसके अलावा आप भी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हुए समझते हुए इस दिन को आज मार्क कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब बारी है कि आपका या आज का हमारा जो पहला कॉम्पिटिशन ये आपके लिए हम लेकर आए। नॉर्मली इस दौरान हम क्या करते हैं, हम फिल्मों के बारे में पूछते हैं, हमारी जो बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे ये इस टाइम पर आपके लिए हम लेकर आते हैं, पर आज ये नहीं रहेगा। इनफैक्ट आज हम आपको देने वाले हैं दैट वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन अ सेंस हमारे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के तहत, जहां पर आपको पता है कि $5,000 वोट ऑफ प्राइजेस जीतने का मौका है आपके पास। और $5,000 वोट ऑफ प्राइजेस में से अगर आप अपना शेयर जीतना चाहते हैं तो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में आपको हिस्सा लेना होगा। नाउ टू टेक पार्ट इन दिस वेरी फर्स्ट कॉम्पिटिशन, उससे पहले ये बता दें कि आप जीत क्या सकते हैं। आज जो पहला इनाम आपके नाम हम कर रहे हैं, इट इज फॉर्च्यून की ओर से $1,000 कैश। सो $1,000 आपके हो सकते हैं और ये $1,000 कैश अगर आपको जीतना है तो आप बस अगले 5 मिनटों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और अपनी एंट्रीज हमारे पास आप सेंड कीजिए।
3: और याद रखें कि फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून। उनकी ओर से ये $1,000 कैश आपका हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई, hum.rover.nz आप विजिट कर सकते हैं। और जब भी 5599 पर आप टेक्स्ट करते हैं तो इतना ख्याल रखें कि स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ इज कि आप अपनी एंट्री जो है ये हमारे पास भेजें। जितनी ज्यादा एंट्रीज भेजते हैं जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं।
2: बिल्कुल, और इसीलिए हम आपको जब ये मौके दे रहे होते हैं तो आप बस ऐसे ऐसे जाने ना दे, बल्कि जितना हो सके उतना इसका इस्तेमाल करें और जीतने के लिए एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है उसका भरपूर फायदा आप उठाइए। तो चलिए अब हम आपको दे रहे हैं 5 मिनट्स टाइम और इन नेक्स्ट 5 मिनट्स ऑल यू नीड टू डू इज आपको लिखना है सबसे पहले फॉर्च्यून, FORTUNE, Fortune, FORTUNE लिखें, फिर उसके बाद में आप अपना नाम लिखें और हमारे पास 5599 पर आप इसे टेक्स्ट कर दें। सो फॉर्च्यून लिखें, अपना नाम लिखें और 5599 पर भेज दें। वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि आपको एंट्रीज भेजने में कोई प्रॉब्लम ना हो और सही गलत जवाब जो है इसके जो झमेले हैं इसमें भी आप ना पड़े, बस अपनी एंट्री आप सेंड कर दीजिए। तो दिवाली के इस मौके पर याद रहे फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इसमें आज का पहला इनाम ऑन द ब्रेकफास्ट शो $1,000 कैश। इस ड्रो में शामिल होने के लिए अपनी एंट्रीज इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आप भेज दीजिएगा। फॉर्च्यून स्पेस योर नेम 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है।
4: Let's go.
5: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: थर्सडे 15th of October की ये सुबह जहाँ पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और अभी समय की ओर देखें तो बस 22 मिनट्स अवे फ्रॉम 7:04 नाउ. इधर हमने आपको मौका दिया है हमारे साथ आज फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के पहले कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का और जीतने का $1,000 कैश.
1: और इसके लिए हमने कहा कि आपको फॉर्च्यून और अपना नाम ये लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करना है. बस इतना आप करेंगे और आपका नाम जो है ये ड्रो में शामिल हो जाएगा. एंड बहुत सारे लोगों ने अपनी एंट्रीज जो है ये हमारे पास भेजी हैं. सो प्रतिमा, आपने फॉर्च्यून की जगह फॉर्च्यून्स लिखकर भेज दिया. तो इस जैसे हमने पहले भी आपको बताया, यू नीड टू पे अटेंशन कि आप किस तरह से अपना टेक्स्ट जो है ये हमें भेज रहे हैं.
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गलत कीवर्ड लिखोगे तो आपकी एंट्री वैसे ही इनवैलिड हो जाती है. आप ऐसा कीजिए कि अगर आपने अपनी एंट्री हमारे पास अभी सेंड की है और ऑटो रिप्लाई में आपके पास फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन ये एक यू नो ऑटो रिप्लाई आया है विद द लिंक फॉर गुड मैनफील्डर्स जो सर्विस लिंक है इसके लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही तरीके से अपनी एंट्री सेंड की है. लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास कुछ और आया है, थैंक्स फॉर योर एंट्री वगैरह ऐसा कुछ आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत तरीके से एंट्री भेजी है और इस चक्कर में आपका जो टेक्स्ट है ये इनवैलिड हो गया है.
1: तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है कि अपना टेक्स्ट जो है ये आप हमें सही तरीके से भेज रहे हैं. फिलहाल द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और इस प्रोग्राम में इनाम जीतने के तो और भी अपॉर्चुनिटीज जो है ये डेफिनेटली
0: हम आपको दो मिनट बाकी है अपनी एंट्री सेंड करने के लिए.
1: हाँ वो तो पता है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि और भी कई अपॉर्चुनिटीज है इनाम जीतने के जिनके बारे में आपको बारी बारी से जानकारियाँ हम जरूर देंगे. पर महाराज जी, आपके गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.
0: बिल्कुल, और इसके साथ साथ याद रहे 2 मिनट्स का टाइम और दे रहे हैं आपको अपनी एंट्री सेंड करने के लिए. सो फाइनल 2 मिनट्स है ये, बिकॉज आफ्टर दिस विल रैप इट अप. तो आपको क्या करना है, फॉर्च्यून लिखना है सबसे पहले, FORTUNE, और कुछ नहीं लिखना है इसके बाद, बस स्पेस दीजिएगा. ठीक है, स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद अपना नाम लिखकर आपको 5599 पर भेजना है. अगर आपने फॉर्च्यून लिखकर कुछ और लिखा या डॉट कर दिया या डैश कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो अनफॉर्चुनेटली वो सही तरीके से एंट्री आपकी नहीं आएगी. सो फॉर्च्यून लिखकर अपना नाम लिखकर 5599 पर भेजें इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, और अगर आप अपनी एंट्री सेंड कर देते हैं तो अगले 2 मिनटों के अंदर अंदर आपका नाम हम इस ड्रॉ में ज़रूर शामिल करेंगे, जहां पर फॉर्च्यून की ओर से फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में आप जीत सकते हैं $1,000 कैश.
2: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
4: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
5: Rusbe, tickets book ho gaye.
6: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
8: हेलो एवरीबॉडी.
4: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
4: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum. Hum, accurate traffic.
10: Harper Court and Curtin Studios, 3-day sale on now.
11: Cloudy with showers, bit windy today, high of 19. At Northwestern Motorway, got a breakdown coming in, blocking the middle lane before Newton Road, close to the CBD. It's quite heavy all the way in from Point Chev. 26 minutes in from Massey isn't horrible though. Southern, 28 minutes in from Mudiko, 50 from Drury, slow Papakura on and off to Mount Wellington. Northern, 20 in from Constellation, slow there to Milford and slowing at Silverdale.
10: Massive savings on carpet, hard floor, curtains and blinds. Hurry, 3 days only in Saturday.
4: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
12: There's more to your everyday rewards. From points on weekly shops to cents off at fuel stops, get more value on everyday spending. It really is never ending. Enjoy more rewards and more value today. TCs and exclusions apply.
13: Mila Outlet Store is having a huge 3-day sale. On now until Friday, there's huge savings with up to 60% off a range of selected Mila appliances. your kitchen, your sanctuary, your chance to grab quality Miele appliances at amazing prices, but for 3 days only. Don't miss out on Miele Outlet Store's huge 3-day sale on now and only at 880 Great South Road, Penrose. For more info, go to steelfort.co.nz.
14: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
15: Yes, Bebo.
14: Catch kya hai?
15: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
14: I still can't believe it. No catch.
15: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
16: PNC Supply.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: Breakfast Catch Up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye lekar aa rahe hain. Hum playing Bollywood's biggest hits par 104.2 FM par agar aap hame Auckland ke andar sun rahe hain ya fir Rova app ke zariye agar aap hame out of Auckland ya fir New Zealand ke bahar se kahin se bhi subah subah hamare saath jude hain to shukriya aap sabhi ke saath ke liye. By the way, before we move on, ek khabar aa rahi hai ki ek gana hai Dhurandhar The Revenge ka. I don't know aapne Dhurandhar The Revenge jo hai ye dekhi hai ya nahi, aur agar aapne nahi dekhi hai to shayad you won't know about this song, but agar aapne shayad reels wagaira mein is gaane ko suna ho phir se jo ekdam end mein play hota hai when Ranveer Singh ka jo character hai, it goes back to his village और वहाँ पर अपनी माँ और बहन को देखते हैं.
1: Nice song.
0: इमोशनल गाना है वो ना. हाँ, तो वो जो गाना उस टाइम पर जब प्ले हुआ था तो इट कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ इमोशंस, स्पेशली जिस तरीके के बोल है उस गाने के एंड म्यूजिक एज वेल एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अरिजीत सिंह ने इसे गाया है, बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग दिस मॉर्निंग इज क्योंकि इस गाने के लिए कहा गया इसे ग्रैमी के लिए कंसिडर किया जा रहा है फिलहाल.
1: वाओ,
0: इट्स नॉट फाइनल, it's not part of the official nomination list, but इसे consider किया जा रहा है and it's being considered not for the music or for Arjit Singh singing it, लेकिन इस गाने को लिखने के लिए जो है ये consideration मिल रही है for visual media. So let's see कि क्या ये होता है या नहीं, because if it does happen, it's like a big achievement as well. और कभी कभी कुछ ऐसे खूबसूरत गाने होते हैं जिनके लिए हम शायद कह सकते हैं कि हमारे लिए शायद सुबह सुबह play करना थोड़ा hard हो जाता है. But doesn't mean that we are not aware of such songs or yeah, we don't listen to it.
1: Okay, so let's see ki kya is gaane ko wo jagah milti hai ya nahi, but a very lovely song also. New Zealand ke Garden City mein Christchurch ya phir Costco ke darwaze jo hain ye khul sakte hain.
0: Haan, maine bhi padha.
1: Christchurch mein shayad Costco ki ek dukaan khule aur ek proposed store jo hai ye banaya ja sakta hai. Khali zameen hai Memorial Ave aur Avon Head Road ke beech. It's close to the airport. Christchurch City Council के Waimaiiri Ward Councillor जो हैं Sam McDonald ने confirm किया है कि Council को feedback देने के लिए कहा गया है on a Costco Fast Track application और उन्होंने इस development को welcome भी किया है. Let's see क्या feedback मिलता है and क्या इस Fast Track application को approve किया जाता है. ये रिपोर्टों के अनुसार ये फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन हैज नॉट बीन पब्लिश्ड ऑन गवर्नमेंट्स फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन वेबसाइट एट दिस स्टेज. कॉस्टको के ओर से भी जो कमेंट्स है उसका इंतज़ार किया जा रहा है. कॉस्टको ने अपना जो ओनली स्टोर है ये अभी तक ऑकलैंड में 2022 में खोला था. ऑन ओपनिंग डे इट वॉज एडवर्टाइज टू ओपन एट 8 AM, बट एक घंटे पहले ही उन्हें खोलना पड़ा था क्योंकि इतनी लंबी कतारें जो है ये लग गई थी. आपको याद होगा शायद 2022 में ये हुआ था
0: जी.
1: और साउथ ऑकलैंड में भी उनका एक नया आउटलेट जो है ये बनने को है.
0: Okay, very interesting. So let's see when does it happen or after ye hota hai to isko kya you know grand appreciation milta hai ya nahi, but filhal ke liye to chaliye program mein aage badhte hue 13 minute baki hai is samay hamare studios mein subah ke 7 bajne mein aur idhar humne aapko mauka bhi diya tha aaj hamare sath pehla jo competition hai festival of fortune mein part lete hue $1000 cash jeetne ke liye. So jitne logon ne hamare paas apni entry send ki, thank you so much. Aap sabhi ka naam hum draw mein shamil kar rahe hain.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज के लिए कहा गया है बारिश होगी, मेनली सुबह के समय और फिर शाम के समय या अराउंड मिड डे हैवी बारिश जो है ये होने की संभावना है। बाद में चलकर तो थमती हुई नजर आएगी, सनसेट 7:38 PM पर होगा। राइट नाउ टेम्परेचर हैज गॉन अप टू 16.4 डिग्रीज, ओवरनाइट 19 डिग्रीज या 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा, हाई ऑफ 19 डिग्रीज आज एक्सपेक्टेड है। बाद में चलकर
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून, एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको, बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम, हैरिंगटन Living Monaco.

0: Finance Experience. Call 0800-634-234.
1: 3 minute हो रहे हैं 7 बजकर on the breakfast show with Vijay and Pooja और Mega Finance की ओर से morning madness में आपका स्वागत हम कर रहे हैं. Welcome to the show और इस घंटे तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, including your stars for the day. लेकिन उससे पहले वीकेंड्स के बारे में, आज थर्सडे हो चुका ना
2: जी,
1: वीकेंड्स के बारे में कुछ बातें जो है ये कर लेते हैं हम लोगों को. जनरली क्या होता है कि सैटरडे संडे जो है ये छुट्टी का दिन जो है ये वीकेंड माना जाता है, बट दिस इज नॉट द सेम फॉर ईच कंट्री.
2: मतलब
1: हर एक कंट्री में सैटरडे संडे वीकेंड नहीं होता है.
2: तो कब होता है?
1: अभी सऊदी अरेबिया के बारे में अगर देखें तो एक रिपोर्ट जो है ये आई थी जहां पर कहा गया कि सऊदी अरेबिया

0: फॉलो करता है संडे टू थर्सडे वर्किंग वीक गवर्नमेंट ऑफिसेज में, और फ्राइडे और सैटरडे जो है
1: वीकेंड होता है,
0: वीकेंड के तौर पर छुट्टियां मिलती हैं। और उससे पहले
1: संडे टू थर्सडे वीक वर्किंग वीक है, और फ्राइडे सैटरडे छुट्टी,
0: फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है। 2013 में उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले थर्सडे फ्राइडे वीकेंड हुआ करता था वहां पर। कतार जो है यहाँ पर वर्किंग वीक जो है संडे को शुरू होता है, नॉट ऑन अ मंडे। और वहां पर कहीं कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में जो जिस तरह का बिजनेस होता है, जैसे यहाँ है ना, डिपेंड करता है, बट जनरली वर्किंग वीक बिगिंस ऑन थर्सडे संडे एंड इट गोज टिल थर्सडे,
1: राइट।
0: तो वहां भी फ्राइडे सैटरडे छुट्टी। बांग्लादेश में गवर्नमेंट ऑफिसर्स संडे टू थर्सडे ऑपरेट करते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे वीकली हॉलीडेज। ब्रुनेई में दो दिन बैक टू बैक हॉलीडेज नहीं मिलते हैं, छुट्टी नहीं होती, वीकेंड नहीं होता है। ब्रुनेई में गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए अलग अरेंजमेंट है, वहां पर दे वर्क फ्रॉम मंडे टू थर्सडे एंड देन ऑन सैटरडे,
1: मंडे टू थर्सडे फिर सैटरडे को,
0: फ्राइडे और संडे छुट्टी होती है।
1: अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
0: हाँ, तो सैटरडे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए रेगुलर वर्किंग डे हो जाता है। शारजा जो कि 7 में से एक एमिरेट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, वहां पर तो 4-day वर्किंग वीक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड होता है।
1: नाइस।
0: इसे 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसराइल थोड़ा डिफरेंट सिस्टम फॉलो करता है, जहाँ पर यू नो सैटरडे प्रिंसिपल डे वहाँ पर रेस्ट के लिए होता है फॉर ज्यूइश एम्प्लॉइज, रिफ्लेक्टिंग कि वो अपना सबत जो है ये फॉलो करते हैं। और नॉन ज्यूइश एम्प्लॉइज में है फ्राइडे सैटरडे और संडे एज देयर वीकली रेस्ट डे।
1: वेरी इंटरेस्टिंग यार। तो अच्छा है, आई मीन कुछ कंट्रीज जहाँ पर है 2-day वीकेंड, लेकिन कुछ कंट्रीज जहाँ पर ब्रेक के बाद 2 दिन होता है, इट्स नॉट कंटिन्यूसली बैक टू बैक, बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई रियली लव्ड द फैक्ट कि एक कंट्री जहाँ पर 3 दिन का वीकेंड है, मतलब 4 दिन काम करो 3 दिन छुट्टी।
0: आप बताइए, अगर आपको ये पावर मिल जाए कि आप वीकेंड को चेंज कर दे, तो आप कौन से दिनों को वीकेंड रखेंगी?
1: मुझे अगर मिले,
0: हाँ,
1: I definitely include weekend में Sunday और Monday.
0: Saturday weekend नहीं होगा?
1: नहीं, Saturday is fine. Saturday चल जाता है. Sunday Monday ना, पता नहीं कुछ अलग ही बात है मेरे लिए Sunday और Monday को लेकर, पता नहीं क्या है, कुछ तो है जो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता इन दो दिनों के बारे में। तो probably I'll just change them and make them a weekend.
0: Okay, so आपको ये पावर मिल जाए तो आप Sunday और Monday को weekend कर देंगे, Tuesday to Saturday would be a working week. आपकी भी अगर कोई राय है तो वो आप हमें जरूर बता सकते हैं।
1: तो 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे पास और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी ओर जबकि एक खबर जो है कोरेक आ रही है, आपने बिट्टू तबाही के बारे में सुना है?
0: बिट्टू तबाही?
1: जी, हमने इनके बारे में ब्रेकफास्ट शो में बातें की थी,
0: कुछ नदी
1: रिवर वगैरह जो ये साफ करते हैं। हाँ, he has taken it as a responsibility on his own, जिसके बाद चलकर इन्हें ना केवल नेशनली इंडिया में ही लेकिन इंटरनेशनली जर्मनी वगैरह में भी लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, स्पेशली द पीपल हु आर वर्किंग टूवर्ड्स अ क्लीनर एनवायरमेंट, अ हेल्थियर प्लैनेट। तो उन्होंने इनको रिकॉग्निशन भी दी, इनको काम के लिए ऑफर भी दिया। इनके बारे में खबर आ रही है कि इन्होंने 8 महीने जो है ये लगाए थे अंजार नदी को साफ करने के लिए, जो मध्य प्रदेश में है।
0: हाँ।
1: और ये खुद को एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और कंटेंट क्रिएटर भी मानते हैं। अब इनके बारे में कहा गया है कि जब ये मध्य प्रदेश वापस गए, बिकॉज इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों से ये भी कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं कौन सी अगली नदी जो ये साफ करूं और किस शहर में। तो ऐसे करते करते ही हैड गॉन टू डिफरेंट प्लेसेस, आई थिंक ही वेंट टू दिल्ली एज वेल, वहां पर भी कोई एक नदी उन्होंने साफ की थी जहां पर कुछ लोकल्स भी इनके साथ जुड़े थे और उन्होंने मिलकर इनकी हेल्प की थी टू क्लीन इट अप। पर जब ये वापस गए मध्य प्रदेश और अंजार नदी को जाकर इन्होंने देखा तो इनका दिल टूट गया, क्योंकि इनको ये देखने को मिला कि वहां पर लोगों ने फिर से कूड़ा कचरा जो है ये फेंकना शुरू कर दिया नदी में। और इसके बाद चलकर उन्होंने एक और एक वीडियो जो है ये बनाया और उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट तो एक्सप्रेस किया, लेकिन नदी का जो हाल है ये देखकर उन्हें दुख बहुत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इज नॉट गिविंग अप एंड ही विल क्लीन इट अगेन। एंड वो वापसी मतलब वापस से इस नदी के सफाई में जो है ये जुट गए अकेले।
0: ओके,
1: इट्स क्वाइट सैड टू सी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको एक अच्छी चीज जो ये मिलती है और आप उसकी कदर नहीं करते, आप उसकी हालत इतनी खराब कर देते हो और बाद में फिर आप ही बोलते हो कि यार ये कितना गंदा है, कितना बुरा है, कितना ऐसा है वैसा है. बट यहाँ पे देयर इज दिस पर्सन जिन्होंने मेहनत कर कर उसकी सफाई की, लोगों ने फिर से उसको गंदा किया, बट ही हैज नॉट गिवन अप.
0: Hopefully this time around it makes some, you know, some people think.
1: Yeah, and it brings sense to people ki yaar aisa nahi karna chahiye.

0: 4234.
1: Rashi Vibes.
2: मेष यानी एरीज, आज बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। जो फाइनेंशियल सिचुएशन है पहले से बेहतर होगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आज आपका, आज आपके लीडरशिप क्वालिटीज की बड़ी तारीफ होगी।
3: उसके बाद वृषणी टोरस, आज आपके लिए कहा गया है कि आज जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें और परिवार में आपके जो सदस्य हैं इनके बात पर ध्यान भी देना ज़रूरी है। सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ना ही सुन रहे हैं ना समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे न केवल आपके रिश्ते ख़राब होंगे लेकिन कुछ बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। बजट पर भी ध्यान देना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज यू नो यू विल बी रीचिंग न्यू हाइट्स अपने काम में, नए मुकाम हासिल करेंगे और पति पत्नी की ज़िंदगी जो है खुशहाल होगी, इनकम बढ़ेगा, मेंटली आप काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे।
3: कर्क ने कैंसर, आज आपके लिए कहा गया है कि नौकरी में जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके, इनसे भी सलाह लेनी ज़रूरी है नौकरी के मामले में, सॉरी, और ऐसे में कभी कभी वो भी ऐसी सलाह आपको दे सकते हैं जिसके बदौलत आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपके बिजनेस के मामले में जो रुका हुआ पैसा है ये आज आपको मिल सकता है और इसकी वजह से यू विल फील वेरी हैप्पी, और साथ ही साथ एक प्रोग्रेस जो है अपनी लाइफ में, ये भी आप नोट करेंगे।
2: सिंह यानी लियो, आज तरक्की के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, बिजनेस में बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी आपकी तो ये भी आज खत्म होगी।
3: और इसके बाद अगर देखा जाए तो आज का नियम यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि काम में कुछ ऐसी रिश्ते आप बनाएंगे, मतलब नौकरी के मामले में कुछ ऐसे रिश्ते आप बनाएंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बिजनेस के मामले में डिसीजंस आप ले रहे हैं तो सलाह मशवरा कर आप डिसीजंस ले सकते हैं, इस मामले में आपको फ़ायदा होगा। और साथ में आपके लिए कहा गया है कि आज अचानक से कोई भी चीज़ करने का मन ना बना ले, बिकॉज हो सकता है कि किसी भी चीज़ में आप अचानक से घुसने की कोशिश करें और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित ना हो।
2: तुला यानी लिब्रा, आज इन्फ्लुएंस ऑफिस में बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, बिजनेस में कुछ नए पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं जिससे आप काफ़ी खुश होंगे।
3: और उसके बाद आज वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आपकी काम करने के तरीके की काफ़ी तारीफ की जाएगी, आपकी जो रणनीति है ये आपके काम में आएगी टू गेट यू प्रोग्रेस, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा और इससे पैसों में फ़ायदा आपके हाथ लगेगा।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, क्रिएटिव कामों में आज काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे आपको, और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इसमें सक्सेस भी आपको मिल सकता है, बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है एंड इनकम के नए साधन जो है ये बनेंगे आज आपके लिए।
3: और उसके बाद आज अगर देखा जाए तो मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि ज़रूरी फैसले आज लेने हैं आपको, कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको करनी है, इससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो टेक योर टाइम, अच्छी तरह से सोच कर समझ कर रिजल्ट या रिसर्च वगैरह कर ये फैसला आप ले। परिवार के सहयोग से आज बातें सुलझेंगी और मुश्किल से मुश्किल काम का अच्छा रिजल्ट आप हासिल करेंगे।
2: और उसके बाद कुंभ यानी एक्वेरियस, फाइनेंशियली आपका दिन जो है और इम्प्रूव होगा आज, आप हेल्थ भी बढ़िया रहेगा और काम सभी आपके बड़ी आसानी से पूरे होंगे।
3: और इसके साथ साथ आज वैसे अगर देखा जाए तो फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि बातों में एक मधुरता जो है ये आप ज़रूर लेकर आएंगे और इसके वजह से आज आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका, कई ऐसे प्लान्स भी आप पूरे कर पाएंगे जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक प्रोग्रेस ज़रूर देखेंगे। सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ चलिए आज के इस दिन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म,
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
4: चुप हो जा पापियो, चुप हो जा।
5: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
6: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
5: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
6: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
5: बस इतना ही।
6: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
1: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल।
0: Wheel of Fortune and get in the draw to win your share of $5,000 worth of prizes like grocery vouchers, fuel vouchers, home deco and furniture vouchers, building and garden supply vouchers and cash. Festival of Fortune, brought to you by Indelible Homes, your building experts. Harrington Living, Manukur, beautiful furniture with 60 months interest-free. NZPMI, your local development experts. Logic Finance and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
7: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु कंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. Logic Finance के गुरु कंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं.
8: Terms, condition, fees and credit criteria apply. Call Logic Finance ke Guru Kendola ko on 0800 Logic G, which is 0800-564-424.
9: Your favorite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki. All together Auckland.
10: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
11: Yes, Bebo.
10: Catch kya hai?
11: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
10: I still can't believe it. No catch.
11: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland,
12: PNC Supply.
13: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
14: मुझे भी
13: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
1: Celebrity Alarm.
2: Hit it.
3: सेलिब्रिटी अलार्म की बारी आई, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले आप बातें कर रहे थे कि अगर आपको मौका मिला और आप अगर वीकेंड में कुछ बदलाव ला सके तो वो आप कौन से दिनों को एज वीकेंड जो है ये हॉलीडे के रूप में जो है ये यू नो इम्प्लीमेंट करेंगे. तो पाल भाई ने हमारे पास मैसेज किया है कि अगर उन्होंने लोटो जीत ली ना, लोटरी मतलब, तो उनका तो हर दिन वीकेंड रहेगा.
2: अरे
3: ये इन्होंने कहा है, तो आप किस्मत आजमा सकते हैं अपना, क्योंकि कल किसी ने भी लोटो नहीं जीता, जिसके चलते अब सैटरडे वाले ड्रॉ के लिए $10 million हो चुका है.
2: अच्छा.
3: तो 10 million ऑन सैटरडे लोटो पावर बॉल के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप जीत गए तो फिर हर दिन वीकेंड रहेगा आपके लिए. फिलहाल 26 minutes अवे फ्रॉम 7, या माफ कीजिएगा 26 minutes आफ्टर 7, और आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में एक आवाज़ आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको पहचाननी है, और वो आवाज़ है ये.
16: सर सर सर सर क्या बात है सर, वाह वाह वाह सर. और सर गोरी सी सूरत हाथों में केटली, उदित खड़ा चिल्लाए चाय चाय. गोरी सी सूरत हाथों में केटली, उदित खड़ा चिल्लाए चाय चाय. और मेरी तरह अगर नाच ना हो एक बार तो पी जाए.
3: तो बताइए ये कौन है? मुझे लगता है बहुत इजी है आज की आवाज पहचाननी, और ये एक अवार्ड फंक्शन के टाइम पर मेरे ख्याल से एक अवार्ड फंक्शन के दौरान जो है ये हुआ था, जहाँ पर एक और एक आर्टिस्ट थे जो स्टेज पर मिमिक्री कर रहे थे कुछ और आर्टिस्ट्स की, जिनमें से ये आवाज़ जो है ये तब आपके लिए हम लेकर आए हैं. तो देखते हैं क्या आपने ये आवाज़ पहचानी है या नहीं. अगर आपने पहचान ली है तो आपको करना क्या है?
2: आपको सबसे पहले लिखना है BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और उसे भेज देना है हमारे पास 5599 पर। याद रहे BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और 5599 पर आप हमारे पास भेजें। देखिए कितने लोगों को पता है इसके बारे में। मुझे तो बहुत इजी लगा क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है ये देखी थी, या फिर हाँ, ये जो प्रोग्राम है इसको टीवी
3: पर। प्रोबेबली दैट्स व्हाई, बट आई थिंक आवाज इटसेल्फ इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अगर आपने नहीं भी देखी है फिर भी आप अगर ये आवाज ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है।
16: सर सर सर, क्या बात है सर, वाह वाह वाह सर। और सर, गोरी सी सूरत हाथों में केटली, उदित खड़ा चिल्लाए चाय चाय। गोरी सी सूरत हाथों में केटली, उदित खड़ा चिल्लाए चाय चाय। और मेरी तरह अगर नाच न हो एक बार तो पी जाए गोरी सी।
3: तो जल्दी से अपने आंसर्स आप हमारे पास मैसेज करें ऑन 5599। आप सबसे पहले BF लिखें, फिर अपना आंसर अपना नाम। देखते हैं आप में से कितने लोग आज के हमारी सेलिब्रिटी अलार्म में जो वॉइस है इसे पहचानते हैं।
12: Hollywood's most wanted.
17: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
18: मैं लाऊं अपना A game.
12: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: 2026 जनरल इलेक्शन से पहले कल दूसरी लीडर्स डिबेट में क्रिस हिपकिंस और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच तीखी बहस हुई, जहां लक्सन ने अपॉर्चुनिटी पार्टी के साथ काम करने से दोबारा इनकार कर दिया। साउथ ऑकलैंड में गैंगपेड के दौरे के बाद हिपकिंस ने साफ किया कि उनकी सरकार में तेपाती माउरी या ग्रीन्स के किसी एमपी को करेक्शंस या पुलिस पोर्टफोलियो नहीं दिया जाएगा। क्वींसटाउन में आईएसबी ग्रेट डिबेट के दौरान तीन पार्टी लीडर्स और फाइनेंस स्पोक्सपर्सन ने देश की अर्थव्यवस्था पर आमने सामने होकर अपने विचार रखे। अब स्टफ के 20 अक्टूबर को होने वाले फाइनल डिबेट में दोनों नेताओं से आम जनता के सवाल पूछे जाएंगे, जो चुनाव से पहले उनका आखिरी हेड टू हेड मुकाबला होगा। रग्बी लीग वर्ल्ड कप आज से शुरू होने जा रहा है। इस साल के वर्ल्ड कप का पहला मैच आज 10 PM पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। उधर यूएफए चैंपियंस लीग के जो मैचेस फिलहाल खेले जा रहे हैं, उसमें अगर देखें तो आज या पूरे हो चुके हैं। क्लब ब्रुगे की जीत इंटर मिलान के खिलाफ 4-3 से हुई और लिवरपूल ने LASK को 6-3 से हराया। और अभी जो मैच खेला जा रहा है उसमें फाइनल 3-1 8 बजे से जो मैचेस शुरू होंगे उसमें AEK शक्ता दोनिस्ताक का सामना करेगा। रियल बेटिस पोर्टो से खेलेगा। रोमा रियल मैड्रिड का मैच खेला जाएगा। स्लोवान ब्रातिस्लावा VFB स्टटगार्ट का सामना करेगा। एस्टन विला फेनाबाचे से खेलेगा। मैनचेस्टर सिटी की भिड़ंत PSG से होगी और बोर्डो ग्लिमेट साथ में डॉर्टमुंड का मैच होगा, जिन पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। और वेस्ट इंडीज ने इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज को बराबर कर दिया है। आज सुबह जो मैच खेला जा रहा था उसमें वेस्ट इंडीज की जीत 24 रन से हुई। टीम ने पहले बैटिंग की और अपने इनिंग्स में तीन खिलाड़ी खोकर 247 रन बनाए। जवाब में इंडिया के सभी खिलाड़ी 19.3 ओवर्स में 223 रन पर बाहर हो गए। इंडिया की ओर से अगर देखें तो इस मैच में संजू सैमसन ने 23 बॉल्स पर 56 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 25 बॉल्स पर 43 रन बनाए, जबकि नीतीश रेड्डी ने 20 बॉल्स पर 41 रन जो है ये बनाए थे। और अब दोनों देशों के बीच अंतिम और डिसाइडर T20 मैच खेला जाना बाकी है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Hum. Accurate traffic.
5: Kitchen Mania free installation.
6: Showers at times, a bit windy and a high of 19 today. Into the city, Southern Motorway taking 46 minutes, Monaco to town. Over an hour from Drury. Slow most of the way from Papakura, heavy patches, Monaco to Ellis. Southwestern heavy northbound through Whitty, not bad the other way. Northern 26 from Constellation, slow from there with heavy patches, heavy at Silverdale. Northwestern 34 and from Massey, slow from there with heavy patches frequent.
5: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
7: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
9: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
10: We're celebrating 80 years of colour and innovation with the Resene Birthday Sale. 25% off premium paints, 25% off wood stains, 25% off wallpaper and decorating accessories. Shop in-store or online today. Conditions apply.
11: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. 10, you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Her eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
0: Octopus Factory Farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.
3: The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: Birthday greetings.
13: Iska birthday bhai?
14: Mera hi birthday, chalo line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
2: Many many happy returns of the day. आज 15th of October सबसे पहले आज किरण सिंगला जी हैं अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं और जोगिंदर कौर आप दोनों पापाकुरा में हैं और आज अपना बर्थडे जो है ये मना रहे हैं। खुशी के इस मौके पर आपके तमाम परिवार वालों की ओर से आज शुभकामनाएं मिल रही हैं। हम सभी की ओर से भी ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो।

0: finance experience. Call 0800-634-234.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. It's 19 minutes away from 8 for now. और on the Breakfast Show, चलिए अब आपके लिए हम जो है wrap up कर रहे हैं हमारा आज का celebrity alarm. मैंने सोचा था बहुत आसान है because इतना simple सा आवाज़ है जो आप पहचान सकते हैं आसानी से. But बहुत कम लोगों ने इनफैक्ट अपने आंसर्स जो है ये हमारे पास भेजे हैं. So हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी हुई हो टू आइडेंटिफाई दी वॉइस फॉर टुडे. बट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए आज रिवील करते हैं हमारे सेलिब्रिटी कौन थे इन सेलिब्रिटी अलार्म. सो द करेक्ट आंसर फॉर टुडे वाज सोनू निगम. और जितने लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स मैसेज किए थैंक यू सो मच आप सभी के जवाबों के लिए. बट ऑन द अदर हैंड थोड़ी देर बाद आपके लिए एक और एक अपॉर्चुनिटी हम लेकर आएंगे जहां पर आज हमारे साथ फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में आप पार्ट लेते हुए जीत सकते हैं इंडेलिबल होम्स की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर.
2: तो ये जीतने के लिए आपको हमारे साथ ही शामिल रहना है. जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले मेक श्योर यू गेट योर एंट्रीज इन एज क्विकली एज पॉसिबल. तो इसके बारे में जैसे ही हम तैयार हो जाएंगे आपको बताएंगे. दूसरी तरफ ये भी ख्याल रखें कि नेक्स्ट वीक सैटरडे को नोचो दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होने जा रहा है. स्टेफानोस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टीम पुनीश ऑफ एना टीम पुनीश एंड एना ऑफ बाफू थॉमसन ये अगले सैटरडे 24 अक्टूबर को दिन में 12 से रात 9 बजे के बीच स्मेल्स फार्म तकपूना में लेकर आ रहे हैं नोचो दिवाली. डांस परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द डे होते रहेंगे. बच्चों के लिए बहुत सारे फन एक्टिविटीज खाना पीना फेस्टिव शॉपिंग एंड मच मोर. और रात 9 बजे स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स भी होगा. एंट्री फ्री है पार्किंग फ्री है और अब और भी बड़े और बिगर वेन्यू में बेटर वेन्यू में आपके लिए होस्ट किया जा रहा है नोचो दिवाली. याद रहे नेक्स्ट वीक सैटरडे को स्मेल्स फार्म तकपूना आपको पहुंचना है.
1: दिन में 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यहां पर ये चलता रहेगा आपके लिए. और फायरवर्क्स का भी मजा ये फायरवर्क्स डिस्प्ले का मजा जो है ये आप ले सकेंगे अराउंड 9 PM. नाउ फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए जितने लोगों ने हमारे पास मैसेजेस भेजे थे थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. वैसे आपको हम याद दिला दे आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग व्हाट्स यू टेक टॉपिक एज वेल. और इस पर भी चर्चा जो है ये हम आपके साथ करेंगे. बट टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटी अलार्म आज के सेलिब्रिटी थे सोनू निगम. जो आप में से कुछ लोग गेस कर पाए तो कुछ लोग नहीं. गुंजन सोम सनी और साथ में नंदिनी आपने सोनू निगम कहा. विकास आपने आदित्य नारायण कहा. ज्योतिका ने सुदेश लहरी और शाहिद कपूर ये किसी ने हमारे पास टेक्स्ट किया था.
3: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: toast, butter, jam, or a special chai.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2. Accurate traffic.
6: KFC's $9.99 Wicked 6 deal.
7: Showers today and a little windy, a high of 19 degrees. Coming in on the Southern Motorway, 48 minutes from Manukau to the city, over an hour from Drury, slow from Papakura all the way in, heavy most of the way from Manukau. Northwestern, 41 minutes Massey to town, heavy on and off all the way from Upper Harbour. Southwestern, heavy northbound through Whitty, and the Northern, 30 from Constellation Drive, heavy at Silverdale and on and off from Greville.
6: Six Wicked Wings plus chips for just $9.99. Wicked value only at KFC.
8: Power into summer with Powerball. There's 100 extra prizes of $20,000 that must be won. Get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn 17th October. T's and C's apply.
9: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
10: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
11: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
12: Yes, Bebo.
11: Catch kya hai?
12: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
11: I still can't believe it. No catch.
12: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
13: PNC Supply.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
4: ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए, जबकि हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया मौका जहां पर आप जीत सकते हैं हमारे साथ. याद रहे $300 कैश एंड दैट टू हमारे एक बहुत ही स्पेशल दिवाली प्रमोशन के तहत जो हम आपके नाम कर रहे हैं.
14: पहली बार हम पर एक दिया एक कहानी. आप इसमें क्या करते हैं कि यू गिव अस अ कॉल और आपकी फैमिली के बाहर किसी एक ऐसे शख्स के बारे में हमें बताते हो जिन्होंने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से की है. और ये आपको बस विद 30 seconds का टाइम भी आप विद इन 30 seconds भी बता सकते हैं, या चाहे तो थोड़ी और कहानी भी सुनाकर बता सकते हैं.
4: बिल्कुल, हम आपको समय देंगे, बट आपको एक ऐसे शख्स को आज याद करते हुए उनका शुक्रिया करना है या फिर उनको एक शाउट आउट देना है फॉर दी बींग दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ. और ऐसा करते हुए बस ड्रो का हिस्सा बन जाओगे, जहां पर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विन $300 कैश. और ये करने के लिए अब हम आपको दे रहे हैं 1 मिनट, और विद इन अ मिनट आपको हमारे पास कॉल करना होगा 0800-004-866 पर, और थैंक यू करना है या शाउट आउट देना है स्पेशल शख्स को आपकी लाइफ में. ये याद रखिए, ये आपसे ब्लड रिलेटेड ना हो तो इट वुड बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमारे जो अपने होते हैं ये हमेशा हमारा साथ देते हैं, बट देर कुड बी सम पीपल नॉट रिलेटेड टू अस बट गिविंग अस दैट स्पेशल सपोर्ट ऑलवेज. गुड मॉर्निंग परविंदर, कैसी हो आप?
15: गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे?
4: एकदम बढ़िया, इतने दिनों बाद आपसे बातें हो रही हैं. तो सबसे पहले तो बता दो आज किसको शाउट आउट देने वाली हैं जो आपकी लाइफ में दैट स्पेशल पर्सन है.
15: आपने बोला फैमिली का नहीं होना चाहिए ना, मतलब ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए.
4: ब्लड रिलेशन नहीं हो तो अच्छा है,
15: वहाँ भी हो सकती है.
4: हाँ चलेगा, वैसे तो भाभी भी फैमिली का हिस्सा है
15: पर बाद में आई है ना।
4: अच्छा वो बाद में आई है, ओके। हाँ बताइए।
15: तो मैं मेरी भाभी के लिए शॉर्ट आउट देना चाहूंगी, जैसे कि मेरी मम्मी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है और कभी कभी हो जाता है कि मेरी मम्मी बहुत से नहीं अच्छी लगती है, वो जैसे होता ना कि जो बुजुर्ग होते हैं वो नहीं चेंज करते हैं अपने तरीके।
4: अच्छा
15: है ना, तो उस वजह से ना कभी मम्मी मेरे से भी हो जाती है, अब तक मेरी मम्मी सबसे हो जाती है पर जो मेरी भाभी का पेशेंस लेवल है, जो मतलब कामनेस आप कह लो, आई डोंट नो, जो मर्जी कह लो, वो कभी मतलब वो ऑल्टरकेशन में पड़ता ही नहीं है।
4: अच्छा
15: मतलब आई नो माय मॉम है ना, क्योंकि मैं रही हूँ मेरी मम्मी के साथ में। वो पेशेंस आपका दो मतलब 20 सेकंड में तोड़ सकते हैं।
4: अच्छा तो इसी वजह से आज अपनी भाभी को आप शाउट आउट दे रही है।
15: हाँ तो मैंने उनसे ये मैंने भी ये सीखा है अपनी लाइफ में पॉजिटिव लेकर आई हूँ कि जैसे ऑब्वियसली मेरा और मम्मी का भी ब्लड सेम है तो टेम्परामेंट सेम ही होगा ना।
4: चलो थैंक यू सो मच परविंदर आपके कॉल के लिए जी।
15: मैंने सीखा है मेरी भाभी से हाउ टू बी मोर
4: काम और पेशेंस, क्योंकि जब मेरी शादी थी तो मुझे भी पता था कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट बहुत जगह तो करने पड़ते ही है ना, नॉट जस्ट एज अ गर्ल एज अ ह्यूमन बीइंग है ना। ट्रू, थैंक यू परविंदर। ओह सॉरी मुझे लगा इन्होंने बोल दिया था, सॉरी अबाउट दैट यार। वेरी नाइस, तो चलिए आज आपका नाम हम जरूर ड्रो में शामिल कर रहे हैं एंड आपकी भाभी को याद भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपकी एंट्री के लिए, वंडरफुल डे,
15: वंडरफुल डे, बाय बाय
4: बाय।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: याद रहे सुपर सिटी ऑकलैंड में आज वेदर के लिए कहा गया है कि बारिश होगी अराउंड मिड डे, तो गंभीर बारिश की संभावना है। शाम के समय थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। सनसेट 7:38 PM पर होगा। टेम्परेचर 16.6 डिग्रीज है करंटली। हाई ऑफ 19 एक्सपेक्टेड, बाद में चलकर ओवरनाइट 9 डिग्रीज रहेगा आज।
2: Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: वैसे ट्रेंड पेट्रोल में हम कई बार तरह तरह की चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, बीइंग दोज ट्रेंड्स ऑनलाइन जो करते हैं उनके बारे में, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया ट्रेंड्स जहां पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कोई रील वगैरह जो ये ट्रेंड कर रहा है इसके बारे में तो चर्चा करते ही है। लेकिन आज हम आपसे बातें करना चाहते हैं, अर्जुन शंकरन इनका नाम है और पेशे से ये एक कैंसर सर्जन है, और इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जाकर कुछ चीज़ें जो है ये शेयर की, जिसके बाद चलकर इनका ये पोस्ट जो है ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो मैंने सोचा के बारे में ही बातें कर लेते हैं। यू नो, ईटिंग सीड्स, डिफरेंट सीड्स ड्यूरिंग योर मील, या फिर इसे अगर आप

0: कंज्यूम करते हैं इनकॉर्पोरेटेड विद योर मील या फिर बस ऐसे ही एज अ स्नैक, ये डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज है जो पिछले कई सालों से पॉपुलर होती आ रही है. पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट, हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट क्वाइट अ लॉट. और अर्जुन शंकरन जिन्होंने ये कहा है कि सीड्स को भी कंज्यूम करने का एक तरीका होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप ऑलरेडी अगर इसे खा रहे हो या फिर यू प्लानिंग टू स्टार्ट दिस जर्नी तो आप बस जैसा मन में आए वैसा कर रहे हो. सर्टन सीड्स जो है सर्टन तरीके से अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसके 100% बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. बट अगर उन्हें आप सही तरीके से नहीं कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा या डिफरेंस होता नहीं है आपको. तो इन्होंने कुछ सीड्स लिस्ट किए हैं जिनमें सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पॉपी सीड्स, चिया सीड्स, हलीम सीड्स और पम्पकिन सीड्स के साथ साथ सनफ्लावर सीड्स जो है ये शामिल है. इन्होंने कहा कि अगर आप सेसमी सीड्स यानी तिल ये लेते हैं तो आप इसे लाइटली रोस्ट कर फिर उसे अच्छी तरह से क्रश करके आप ऐसे ही च्यू कर सकते हैं 1 टेबलस्पून पर डे. आप चटनी या सब्जी या रोटी के डो में भी इसे डालकर बनाकर खा सकते हैं. इसमें हेल्थी फैट्स और मिनरल्स होते हैं जो आपके तबीयत के लिए बहुत अच्छी है. दूसरी ओर फ्लैक्स सीड्स की अगर बातें करें तो बहुत से लोग फ्लैक्स सीड्स को ब्रेड वगैरह में डालकर जो ये कंज्यूम करते हैं. पर अगर आप इसे ग्राइंड कर फिर उसका पाउडर्ड फॉर्म जो है ये खाते हैं, आप चाहे तो इसे दही में मिलाकर, आटे में मिलाकर, इसका डो बनाकर या स्मूदीज में डालकर, यू नो पाउडर्ड फ्लैक्स सीड्स ये डालकर कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है. क्योंकि जो होल फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये अक्सर अनडाइजेस्टेड पास आउट हो जाते हैं.
1: ओके.
0: और अगर आप हर रोज़ 1 टेबल स्पून कंज्यूम करते हैं तो आपको यो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 जो है ये मिलता है इन अ गुड क्वांटिटी, गुड अमाउंट, यू नो.
1: ओके.
0: ओमेगा 3 जो है बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए. पॉपी सीड्स के बारे में अगर आपको बताएं तो इसके बारे में भी ये कहते हैं कि इसे आप पहले सोक कीजिए या फिर आप चाहे तो इसे रोस्ट कीजिए और ग्राइंड कर इसका पाउडर्ड फॉर्म आप ले सकते हैं. ग्रेवीज में डाल सकते हैं, इसकी चटनी जो है ये बनाकर खा सकते हैं और कुकिंग में आप इसको डालकर इस्तेमाल करते हैं. इसमें फाइबर एंड मिनरल्स होते हैं जो अगेन आपकी तबीयत के लिए बहुत सही साबित होते हैं. लोग बहुत से लोग जो है चिया सीड पुडिंग वगैरह जो ये कंज्यूम करते हैं, चिया सीड को ऐसे ऊपर से स्प्रिंकल कर भी खाते हैं ना. लेकिन कहते हैं कि चिया सीड को खाने का तरीका या कंज्यूम करने का तरीका वुड बी अगर आप इसे भिगो कर रखें फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम या ओवरनाइट भी अगर आप इसे भिगो कर रखते हैं पानी में या दूध में भी तो ये अच्छी तरह से स्वेल अप हो जाता है. आप चाहे तो जैसे कि चिया सीड पुडिंग होता है ओट्स के साथ या दही के साथ आप इसे ले सकते हैं, या अगर पानी में से आप भिगो कर रखते हैं ओवरनाइट तो जब ये थोड़ा जेली टाइप कंसिस्टेंसी इसकी हो जाती है तो अगली सुबह अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो पानी में मतलब एक ग्लास पानी में आप सोक्ड चिया सीड्स डालकर उसमें थोड़ा सा नींबू डालकर लीजिए तो आपको 100% बेनिफिट्स इसके मिलते हैं. और इसमें फाइबर होता है जो आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है.
1: ओके.
0: हलीम सीड्स के बारे में मैंने पढ़ा था, इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और अगर आप चाहते हैं कि हलीम सीड्स कंज्यूम करते हुए आप अपने शरीर के जो आयरन कंटेंट्स को बढ़ाएं तो आपको इसे कंज्यूम करने का सही तरीका आना चाहिए, विच इज़ इसे आप ओवरनाइट पानी में सोक कर रखें फिर अगली सुबह आप इसे नींबू के पानी के साथ ले सकते हैं. दैट्स द बेस्ट वे कि आपके शरीर में जो आयरन है ये एब्जॉर्ब करने में या इसमें से जो आयरन है आपका शरीर एब्जॉर्ब करने में आपको हेल्प करेगा. वैसे इसके लड्डू भी बनाकर आप खा सकते हैं इनके हिसाब से. और अगर बातें करें हम पम्पकिन सीड्स की या सनफ्लावर सीड्स की तो पम्पकिन सीड्स में होता है मैग्नीशियम और अ थर्ड ऑफ योर डेली नीड अगर आपको चाहिए ऑफ पम्पकिन मैग्नीशियम तो आप एक हैंडफुल ऑफ पम्पकिन सीड्स जो है ये कंज्यूम कर सकते हैं. आप चाहे तो जैसा आपको मिलता है बाजार में वैसा या फिर आप इसे लाइटली रोस्ट कर भी कंज्यूम कर सकते हैं, सैलड्स में डाल सकते हैं, स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं. और सनफ्लावर सीड्स इसमें विटामिन ई मौजूद होता है. लाइकवाइज अगर आप चाहें तो इसे कच्चा या फिर इसे लाइटली रोस्ट कर कंज्यूम कर सकते हैं और ये आपको या आपकी तबीयत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है. पर डे अगर आप 1 से 2 टेबलस्पून कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम 1 इज इनफ, तो ये आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स जो ये प्रोवाइड करता है.
1: तो कौन से सीड्स हैं, किस तरह से इनको कंज्यूम करना चाहिए, अब ये भी बात सामने आ गई है. एंड होपफुली इफ वे वे नॉट डूइंग इट राइट, यहाँ से आगे जो है ये सही तरीके से हम कर लें. कुछ देर बाद आज का व्हाट्स योर टेक.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: At Woolworths, these back-to-school specials are a great way to save. Get Harvest Snaps 120 gram for just $2.99 each. And Mugget Yogurt 10-pack, just $9.99 a pack. Tea season exclusions apply. Only at Woolworths.
0: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
3: A message for all parents. Kids age 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.
4: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
4: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
6: What's your take? What's your take? A simple, straightforward question aaj aapke liye. Aur is question ke piche reason kya hai, wo bhi hum aapko batayenge baad mein chalkar. Lekin pehle aaj what's your take mein jo question hai. Does working from home make people more productive because there are fewer office breaks ya office gossip breaks, or less productive because the couch is right there?
7: ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया हो ना,
6: हाँ.
7: तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस कंपेयर करने के लिए रहेगा. बट जिन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम नहीं किया, शायद वो अजम्पशन बेसिस पर अपने आंसर्स दे सकते हैं.
6: आप आपको जो लगता है वो बता सकते हैं.
7: बट कोविड के टाइम पर आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम.
6: हाँ, देयर वर सम इंडस्ट्रीज हु जस्ट हैड टू stay home. They
7: essential
6: could not.
7: Essential workers जो है उनको जाना पड़ता था. But the other you know industries had kept it you know strictly work from home. तो आप अगर you know आपने कभी ना कभी experience किया है तो आपके पास थोड़ा बहुत तो होगा ही feedback to share. And if you have any such thing to share to talk about, तो आप जरूर हमारे पास call कीजिए. आप 0800-004-866 पर हमें call कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस मामले में आपका take क्या है. गुड मॉर्निंग.
8: गुड मॉर्निंग पूजा. गुड मॉर्निंग विजय. कैसे आप लोग?
6: हम लोग ठीक हैं, आप कैसी हैं?
8: मैं ठीक हूँ. मेरा नाम प्रीति है.
7: जी,
8: तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, लेकिन टू डेज अ वीक ऑफिस जाना पड़ता है. तो आई थिंक घर से काम करना इज मोर प्रोडक्टिव.
7: ओके,
8: बिकॉज जब आप ऑफिस में रहते हो तो यू वॉक अराउंड, आप बातें करते हो कोलिग से, फिर ब्रेक लेते हो. लेकिन घर पे होते हो सर, यू जस्ट स्टिक टू योर ब्रेक टाइम. और फिर ऑफिस में इतना शोर होता है तो हम लोग सोचते रहते हैं, तो फिर वो भी डिस्टर्ब होता है. और ट्रैवलिंग में भी, आपका बिकॉज मुझे सिटी जाना पड़ता है, सो आई वेस्ट माई लाइक 3 hours a day.
7: तो टाइम बचता है आपका ट्रैवलिंग में भी, इज व्हाट यू ट्राइंग टू से.
8: Yes, and by the end of the day, it gets very tiring जब हमारा ऑफिस डेज होता है.
7: Interesting. So, प्रीति का कहना है कि work from home is more productive, right?
8: Yes.
7: Okay.
6: Thank you.
7: Thank you, Preeti. Have a nice day.
6: तो आप भी हमें बता सकते हैं, यू नो कभी कभी वर्क फ्रॉम होम क्या ये ट्रस्ट बेस्ड है या फिर हर कोई चुपचाप कुछ ना कुछ में लगा रहता है। गुड मॉर्निंग, हेलो,
9: हेलो,
6: हाय,
9: हाय, माय नेम इज रक्षा एंड करेंटली आई डू व्हाट आई वर्क फ्रॉम होम ऑन द फ्राइडे, बट आई डू ऑन फ्राइडे आई थिंक आई डू लाइक टू और थ्री डेज वर्क लाइक सो फास्ट and like I complete my like full like 9 hours and because then I have to waste time on traffic. Yeah, so I think work from home is definitely productive.
7: Okay,
6: very nice. Yeah.
7: Thank you, Raksha. Have a wonderful day.
9: Thank you.
7: तो दो कॉल्स सोफा और दोनों का कहना है वर्क फ्रॉम होम इज मोर प्रोडक्टिव।
6: क्या यू नो जो जो सवाल है हमारा सिंपल कि डज वर्किंग फ्रॉम होम ये हमें और प्रोडक्टिव कर देता है बिकॉज दे आर फ्यू ऑफिस गॉसिप ब्रेक्स, कम्यूट टाइम नहीं होता, यू गेट मोर टाइम टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, या फिर लेस प्रोडक्टिव होता है बिकॉज द काउच इज राइट देयर, योर टीवी रिमोट इज जस्ट सिटिंग यू नो एक हाथ की दूरी पर, एंड साथ ही में डिस्ट्रैक्शंस घर पर बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप लॉग इन कर देते हैं अपने ऑफिस पीसी पर या फिर रिमोटली काम कर रहे हैं, जो भी करना होता है लॉग इन कर देते हैं, बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग इट
7: राइट। तो आप चाहे हमारे पास वैसे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और आप जब हमें मैसेज करते हो ऑन 5599 तो याद रहे कि अपना नाम जो है ये आप ज़रूर लिखें व्हेन यू आर सेंडिंग अस द मैसेज, और आपका जब मैसेज हम पढ़ेंगे तो वील बी एबल टू क्रेडिट इतना कि आपने हमारे पास अपना मैसेज जो है ये सेंड किया है, सौ इन सौ ने हमें टेक्स्ट किया है। पर राइट नाउ दूसरी ओर ये भी आपको याद दिला दें कि अगर आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है 0800 हम 800-004-866 पर।
6: इस नंबर पर अपने या आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है ये शेयर कर सकते हैं आज के हमारे व्हाट्स योर टेक टॉपिक के बारे में। गुड मॉर्निंग, हेलो,
10: गुड मॉर्निंग, विजय पूजा जी, हाउ आर यू?
7: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
10: गुड गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई वुड ओनली लाइक टू से आई बीन वर्किंग फ्रॉम होम 3.5-4 इयर्स हो गए। Working from home for me is very productive. Office mein jaake, I love going to office, I love meeting people, baatein karna, gossip karna bahut acha lagta hai, but if you come to productivity, home is more productive. But I think it also depends totally on your own discipline ki aap kaise apne day ko organize kar rahe ho. Bahut time aisa hota hai ki hame you know office mein sunne ko milta hai that people are not working from home, but again it depends on yourself entirely. That's my take on it.
7: That's very interesting. Thank you so much. Aapke bhi call ke liye bahut bahut shukriya. Have a wonderful day.
10: Thank you. Have a nice day. Bye.
7: You too. Bye. तीनों कॉलर्स ने कहा है कि इट्स बेसिकली मोर प्रोडक्टिव व्हेन यू वर्क फ्रॉम होम।
6: कुणाल ने कहा है हाय, वर्क फ्रॉम होम इज मोर प्रोडक्टिव, लेस डिस्टरबेंस, यू नीड टू बी ऑनेस्ट
7: देन ओनली।
6: हाँ, ये इन्होंने कहा है। तो अभी तो क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें गुरु से भी बातें जो है ये करनी है
7: जी,
6: तो अब आप चाहे तो 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आपको बताएंगे कि क्यों ये कहानी जो है ये या फिर ये व्हाट्स योर टेक टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि सिडनी बेस्ड एक करेंसी डीलर थे, इनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया।
7: क्यों?
6: क्योंकि इन्होंने इनको मौका मिला था टू वर्क फ्रॉम होम, लेकिन एक्चुअली में पता चला दैट ही वाज एक्चुअली ऑन हॉलीडे इन सिंगापुर और वहां से काम कर रहा था।
7: अरे यार, बट काम कर रहे थे।
6: हाँ,
7: तो इजंट इट लाइक
6: जो कुछ थोड़ा मोड़ा काम होता था
7: वही, मतलब बेसिक
6: जो है कि लगे कि ये हाँ है काम कर रहे हैं जो है, चाहे एफएक्स ऑस्ट्रेलिया के एक एम्प्लॉय जो है ये ट्रेड करते हैं एक्सी एज एक्सी, एंड द कंपनी डिसमिस्ड हिम पिछले साल दिसंबर में आफ्टर ट्रेसिंग हिज वर्क लैपटॉप टू अ होटल इन सिंगापुर। ही वाज सपोज्ड टू बी वर्किंग फ्रॉम होम इन सिडनी ऑन 17 नवंबर, और स्ट्रेट टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ग्रैम हैड स्ट्रेच्ड द बाउंड्रीज ऑफ रिमोट वर्किंग। इससे पहले उसने बाली से काम किया था, जबकि मैनेजर को उन्होंने बताया था ही वाज एट होम वेटिंग फॉर अ प्लंबर टू फिक्स हिज बाथरूम इश्यूज।
7: वाह वाह वाह, क्या बात है यार। इसीलिए ऐसी भी थोड़ी देर पहले भी हमारे एक text, मतलब listener ने text किया saying कि you need to be honest. That's important. If it's 2 days a week, then you will be more productive because then you take the opportunity to be away from distractions and office gossip, and you will do what you need to catch up on. However, if it becomes a norm and everyday thing, then you will be less productive as it kills the excitement and you will lean towards your luxuries slowly as you will become bored. Ye Aaron ne kaha hai.
6: Inhone bhi sahi kaha.
7: I kinda agree with Aaron. Kinda nahi, I agree with Aaron. Sapna ne message kiya ki Ramayan Gatha ka play hoga. Thank you so much, Sapna. Unfortunately, what happened today is हम play करना भूल गए थे टाइम तो सपना का मैसेज देखा तो याद आया.
6: चलो अब सुना दो.
7: जी अभी सुनाते हैं. थैंक यू आपके मैसेज के लिए. Here we go.
11: Diwali Ramayan Gatha brought to you by Fortune Foods with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win. Big Bazaar, your one-stop Diwali superstore. Shop online at bigbazaar.co.nz. Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Finance World, your trusted finance advisory in South Auckland. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Arjun Supermarket and Food for Less, located in New Lynn and Botany. Sona संसार परंपरा की चमक त्योहार की पसंद. Shine out with specials. Visit Sona Sansar Papa Toy and Mount Roskill. And Ramayana movie releasing this Diwali through Forum Films.
12: माताओं और नगर के स्त्रियों ने स्वर्ण थाल सजाए और द्वार द्वार पर मंगल कल

0: क्या वृद्ध क्या बालक सब प्रभु के दर्शन को आतुर थे।
1: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आऊं।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: आपके लिए देव नेगी एंड अकासा सिंह की आवाजों में इस ट्रैक को हम पेश कर रहे थे आज बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड में। और जैसे कि इस घंटे की शुरुआत में भी हमने आपसे कहा था, आज बातें करेंगे लॉजिक फाइनेंस के गुरु खिंडोला के साथ। तो सबसे पहले तो गुरु, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो।
1: गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। कैसे हैं आप?
0: हम तो एकदम बढ़िया हैं, आप कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया पूजा जी।
0: ओके, तो आज आपसे वैसे गुरु हम जानना चाहते हैं डिक्लाइन केसेस के बारे में, और जो सवाल आज हम आपसे करना चाहते हैं, बिकॉज आई हैड अ चैट विद अ फ्यू पीपल जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जहां पर एक एप्लीकेशन के बाद उनके उनके केस को डिक्लाइन कर दिया गया। अब वो जानना चाहते हैं कि ऐसे मामले में अगर एक बार केस डिक्लाइन हो जाए तो क्या इसके बाद वी कैन से इट्स अ डेड एंड फॉर देम, दे कैन नॉट ट्राई अगेन, या फिर उनके लिए स्टिल कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ चांसेस होते हैं ऑफ एक्सप्लोरिंग?
1: मुझे डेफिनेटली जो क्वेश्चन है डिक्लाइन का, डेफिनेटली डिक्लाइंस होते हैं मार्केट में एंड एप्लीकेशंस डू गेट डिक्लाइन, बट डिक्लाइन का जो आपने बोला कि इज देयर अ डेड एंड, I personally don't believe that it's a dead end, because I've been doing those cases jisme deals decline hua and came to me, I reviewed it, put a case together again, aur wahi wali deals ko dobara I've got it approved, and in some cases I've got approval with the same bank jisne pehle decline kiya tha. So I personally don't see that it is a dead end, because it gives us an opportunity that you have to explore and you don't have to lose your kind of hope. Agar aap apni hope chhod dete ho, so that's basically you can't reach to your target. It's similar, log kai bari kai jagah phans jate hain, you know, earthquake aa gaya, something ho gaya, banda niche debris ke niche daba hota hai aur kitne dinon ke baad nikalta hai, but wo tabhi nikalta because uski hope hoti hai ki wo जिंदा निकलेगा। तो बेसिकली दैट होप हैज टू बी देयर। डिक्लाइन डील्स आर प्रीटी मच इन द सेम बोट। तो अगर आप अपनी होप को नहीं छोड़ोगे, आई एम प्रीटी श्योर कि दैट डिक्लाइन डील विल गेट अप्रूव्ड एज वेल। और आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए इन अ वे टू एक्चुअली कम अलोंग विद यू इन दैट वे एज वेल, कि जो आपको हेल्प करे। एंड इन दो सिचुएशंस इट कुड बी योर फाइनेंशियल एडवाइजर, योर मॉर्गेज ब्रोकर, या आप जिस बैंक के साथ डील कर रहे हैं, अगर वो बैंकर आपको उस जगह से हेल्प कर सकता है। सो समवन हैज टू देयर टू एक्चुअली, बिकॉज डिक्लाइन डील्स उसका एक रीजन होता है कि वो क्यों डिक्लाइन हुई है, और वो ही अगर अप्रूव्ड हो रही है तो उसका भी कोई रीजन होना चाहिए कि व्हाई इट इज गेटिंग अप्रूव्ड, एंड दैट रीजन समवन हैज टू गो एंड फाइंड टू गेट दैट अक्रॉस टू द बैंक्स, टू द credit team jo bank loan approve karti hai, so that point has to come across to get the approval. So I personally don't see it as a dead end. So okay, agar aapka loan decline hua hai, don't lose the hope. Definitely mera to track record raha hai, to agar aap jaake mere reviews dekhoge logic finance mein ya google reviews dekhoge, you will see a lot of them jisme deals been declined and guru got an approval or logic finance got the approval. Wo jo track record hai, I back myself on that anyways, ki mere ko wo challenging cases acche lagte hain, and I would love to deal with those cases. Aur kabhi kabhi jab mere ko phone calls aate hain to wo mere ko yahi bolte hain ki yaar guru aap hamesha challenging case mang rahe the, dekho mera to bahut zyada challenging case hai, ye pakdo aap. So and sometimes though mujhe bahut badhiya lagta hai ki jis tarah se wo mujhe approach karte hain ki aap khud hi mang rahe the, ye lo ye challenging case hai.
0: Interesting.
1: So yeah, would love to deal with those cases. So it is not a dead end in nutshell.
0: Right. Okay. So ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी का केस डिक्लाइन हुआ है प्रीवियसली एंड दे थिंक कि अब तो खत्म ही हो गया सब कुछ, एक बार कम से कम आपको अप्रोच कर जरूर देखे ना, जस्ट टू सी कि आप क्या कर सकते हैं उनके लिए.
1: 100%. एक बार मेरे से बात जरूर कीजिए, because और वही जो चैलेंजिंग वाला केस है वो आप मेरे को एनालाइज करने दीजिए, एंड देन डेफिनेटली होपफुली आपकी वो जो यू नो डेड होप थी उसको लाइव करके will just give make it active.
0: Okay. Now let everyone know ki agar wo aap se baate karna chahte hai to what's the number to call on and you know just discuss your case or meeting wagera jo hai ye wo aapke saath arrange kar sake.
1: Mujhe simple logic lagana hai. Logic finance. Agar aap Google mein search karoge, so you will get my details from there. और वहाँ पे आप वो रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं जिसके बारे में बात कर रहा था
0: जी.
1: मेरा 0800 नंबर है विच इज टोल फ्री नंबर है तो विच इज 0800 लॉजिक जी. जब आप लॉजिक जी टाइप करते हैं अपने मोबाइल अपने कीपैड में देन इट कम्स टू मी विच इज 0800 564 424 0800 564 424 इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी.
0: ओके थैंक यू सो मच गुरु आपके साथ और समय के लिए. आप नेक्स्ट वीक थर्सडे को और डिटेल्स आपसे हम जरूर हासिल करेंगे. थैंक यू. एंजॉय योर थर्सडे.
1: Thank you, same to you.

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: Flix even, you're skipping a bag.
3: High of 19, cloudy, windy and some showers today. Citybound on the Northern Motorway, 33 minutes. Constellation Drive to town, 56 from Silverdale. Heavy at Silverdale and Greville to the bridge. The Southern, 48 minutes in from Manukau, starting to ease but still slow from Papakura and heavy Otahu to Green Lane. The Northwestern, 46, Massey to town, heavy on and off from Upper Harbour, and Upper Harbour slow northbound to Beach Haven.
2: Visit flexibin.co.nz for stockists, TCs and collection areas.
4: The enrolment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
5: Enrolled yet?
4: How about you?
5: Are you enrolled?
6: Last chance to enrol is midnight 25 October. Enrol now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
7: Mila Outlet Store is having a huge three-day sale. On now until Friday, there's huge savings with up to 60% off a range of selected Mila appliances. Your kitchen, your sanctuary, your chance to grab quality Miele appliances at amazing prices, but for 3 days only. Don't miss out on Miele Outlet Store's huge 3 day sale on now and only at 880 Great South Road, Penrose. For more info, go to steelfort.co.nz.
8: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
10: Yes, Bebo.
9: Catch kya hai?
10: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
9: I still can't believe it. No catch.
10: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
11: DNC Supply.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
12: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
14: 10 minute baki hai samay hamari studios mein 9 bajne mein aur recording message jo hai ki aaya aaj what's your take topic ke liye hamare paas inhone kaha hai Ram Ram Vijay bhai and Pooja ji, work from home is purely based on trust and honesty. For me, I work from both office and home. Most of the time I'm alone, both at home and office, in daytime, but have hum FM all the time, inhone kaha. Thanks for awesome Ramayan Gatha episodes, ye bhi appreciate kar rahe. Vim ne Port Waikato se hamare paas message kiya hai.
15: Thank you so much, Vim, aapke message ke liye, aur apna jo kya bolte hain, view jo hai, ye share karne ke liye, what's your take topic ke baare mein. और अभी देखें 9 मिनट रह गए हैं 9 बजने में. अगले घंटे कुछ और ज़रूरी बातें जो है ये तो होनी है, लेकिन इनाम की बातें भी इक्वली इम्पोर्टेंट. अभी टाइम है ना,
14: बिल्कुल.
15: तो हमारा जो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून है, इसमें टोटल $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं. और इस बार इनडेलेबल होम्स, जो बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, indelibleholmes.co.nz आप विजिट कर सकते हैं. उनकी ओर से $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर्स. भाई अभी इस वीक में देख रहा था स्पेशल्स पर, फ्यूल जो है स्पेशल्स पर अराउंड
14: $3.29, $3.30, $3.50 जीतना चाहते हैं थैंक्स टू इनडेलेबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स. आप indelibleholmes.co.nz विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, और टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए अराउंड द प्रमोशन आप hum.rover.nz विजिट कर सकते हैं. याद रहे स्टैंडर्ड कैरियर रेट अप्लाई जब भी आप टेक्स्ट करते हैं 5599 पर. अगर ड्रॉ में शामिल होना है $1,000 का ये फ्यूल वाउचर आप खुद के लिए जीतना चाहते हैं, बिकॉज इफ यू आर द विनर, ये दो तीन विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. एक विनर को ये सारे के सारे $1,000 की फ्यूल वाउचर्स जो है ये मिल जाएंगे, तो अब आपके पास चांस है टू सेंड योर एंट्रीज थ्रू।
15: और आपको सबसे पहले लिखना है IH इनडेलिबल का शॉर्ट फॉर्म, IH लिखें, उसके बाद ये बताएं कि अभी के टाइम पर क्या अपनी गाड़ी को आप फुल टैंक करते हैं या फिर यू कीप योर कार एकदम टॉप तक टॉप फुल टैंक, या आप थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल डालते हैं क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव और सोचते हैं कि शायद अगर मैं फुल टैंक कर लूँ और अगले हफ्ते दाम कम हो गया तो आई विल मिस आउट।
14: राइट, तो आप क्या करते हैं ये आप बताइए, आप लिख सकते हैं फुल टैंक या फिर नो जो भी ऑप्शंस है उस हिसाब से, नो एज इन आप नो लिखोगे तो हम जान जाएंगे
15: या फिर थोड़ा सा डालते हैं तो कितना पेट्रोल हफ्ते का आप डालते हैं, अगर फुल टैंक नहीं करते तो कितने का पेट्रोल आप हफ्ते का डालते हैं वो लिखिए और अपना नाम लिखिए और 5599 पर भेज दें।
14: राइट, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आपके पास है टू सेंड योर एंट्रीज इन 5599 पर आपको टेक्स्ट करना है।

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Accurate traffic.
2: Switch your pool to swim at.
3: Wet at times, a bit windy today, 19 at our high. Into the city at the moment, the Southern Motorway, 45 minutes Manukau to the city. Still slow from Papakura and heavy Otahuhu to Green Lane. Southwestern, heavy northbound at Wiri. Northwestern, 44 Massey to the city, where heavy on and off from Massey to the city. And Northern, 32 Constellation to town, heavy patches from Greville to the bridge.
2: Switch to specialist pool and spa advice and service today. Call your nearest swim art now.
4: Martin Mega Henderson. वीकडेज पे सुबह 6 बजे से खुला है. बिल्डिंग सप्लाईज, टिम्बर, पावर टूल्स और ट्रेड एसेंशियल्स सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो. गेट इन, गेट सॉर्टेड एंड गेट द जॉब डन अर्लियर. ओपन फ्रॉम 6 एएम. माइटन मेगा हेंडरसन.
5: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
6: At PB Tech, they like to cut out the middleman so you pay.

0: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00010.
1: Good morning, it's 1 minute ho raha hai 9:00.
2: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Nursing shortages have put some child cancer and blood disorder treatments on hold at Auckland Starship Hospital. Health New Zealand says while rescheduling decisions aren't made lightly, this is a time of high demand and clinical complexity. It's working close with the Child Haematology Centre in Christchurch to help out. A Manawatu police officer has received the Police Association's Bravery Award. Constable David Cramp gave vital first aid to 3 injured people following a shooting in Horowhenua earlier this year. The association's Steve Watts says he didn't know if the gunman was still at large.
4: David was able to fall back on his previous military training, which ultimately saved 3 people's lives, all the while not knowing what he was going into and putting his own safety at risk.
3: The Professional Firefighters Union is questioning how organisational support was allowed to fall so low. A commissioned report on staff wellbeing found it has dropped from 15% to 4% since 2024. Watty Watson says that's 2 years where changes could have been made.
5: Should the worst happen and Fens haven't acted, then this report will be evidence that they were required to act.
3: To Rugby League with Machinery House in a league of their own. The Kiwis begin their World Cup quest against the Kangaroos in Sydney just after 10 tonight. Captain James Fisher-Harris is drawing on inspiration from the only New Zealand team to win the title.
6: When they won it in 2008, that made me want to sort of go down this path. So hopefully we can do something like that.
3: The All Blacks are also in Sydney and name their team at 2 p.m. for Saturday's test against the Wallabies.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari good brands bhi hai.
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर याद रहे कि ज़्यादातर बारिश होने की संभावना है. सुबह के समय तो बारिश होगी लेकिन अराउंड मिड डे पॉसिबली हैवी रेन प्रेडिक्ट किया जा रहा है. फिर शाम के समय थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बताई जा रही है. सनसेट आज का 7:38 PM पर होगा. टेम्परेचर 16.8 डिग्रीज तक पहुँच चुका है. हाई ऑफ 19 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे, जबकि ओवरनाइट टेम्परेचर 9 डिग्रीज आज रहेगा.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: What's going on? Kya bakte ho?
9: Are kehna kya chahte ho?
1: आज की क्या बकते हो स्टोरी आपके लिए हम लेकर आए हैं. एंड दिस इज अबाउट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो मदुरई तमिलनाडु इंडिया में रहते हैं. और इसी महीने ही ये थोड़ा वायरल हो गए हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना फ़ोन नंबर और अपना होम एड्रेस जो है ये शेयर किया अपने फॉलोअर्स के साथ और उनसे कहा कि दिवाली आने वाली है तो दिवाली के मौके पर मुझे आप कुछ गिफ्ट्स दिवाली के लिए और कुछ मिठाइयाँ वगैरह जो है ये भेजो. तो इस उम्मीद से कि उनके फॉलोअर्स उनको ये मिठाइयाँ ये गिफ्ट्स भेजेंगे, इस चक्कर में उन्होंने अपना फ़ोन नंबर और अपना जो एड्रेस है ऑनलाइन अपने वीडियोज़ के ज़रिए शेयर किया. लेकिन कमाल की बात ये है, वीरमणि नाम है इनका, ये अब एक बार फिर थोड़ा ज़्यादा ही वायरल हो रहे हैं. और रीज़न ये है कि लोगों ने इनके पास भेजे गिफ्ट्स भेजे, मिठाइयाँ भेजी, जिसमें गिफ्ट्स में देखा जाए तो टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर्स है, वॉशिंग मशीन जैसे आइटम्स हैं और भी बहुत से आइटम्स जो है इन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें जो है ये भेजी है. लेकिन कमाल की बात ये है कि ये उन्होंने उनके घर तक डिलीवर कराया है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पर.
10: अरे प्रभु.
1: एंड द क्लेम इज कि अभी जो मैं पढ़ रही थी बहुत सी जगह पर इनफैक्ट इसके बारे में बात जो है ये हुई है. वेरीफाइड जहां तक अगर देखा जाए तो शायद ये वाला पार्ट जो है आई कांट गारंटी कि ये सच है नहीं, बट आई हर्ड लाइक डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स स्पीक अबाउट इट. सोशल मीडिया पर भी वीडियोज आ रहे हैं, कुछ और जगह पर भी इसके बारे में पोस्ट किया गया है कि किसी ने करीबन 70 करोड़ का T-90S बैटल टैंक जो है ये तक इनके लिए ऑर्डर कराया. I don't know if that's possible to order online, but ये ऐसी खबरें सर्कुलेट हो रही. But the other
10: ये है क्या T-70
1: टैंक जो वो में इस्तेमाल होता है.
10: अच्छा वैसा वाला टैंक.
1: हाँ yes. तो I cannot guarantee about this, but as I said कि some news channels have reported that. लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें ये लोगों ने डेफिनेटली ऑर्डर की है कैश ऑन डिलीवरी फॉर हिम. कुछ न्यूज़ रिपोर्ट

0: है जो ये कह रही है कि आफ्टर दीज आइटम्स एंडेड अप एट हिज हाउस तो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए. लेकिन वीरमणि जो है इन्होंने वापस एक वीडियो बनाया और ये कहा कि ये तो हद ही हो गई, लाइक यू गाइज आर मैड. एक तो इतने सारी चीजें भेज रहे हो कैश ऑन डिलीवरी मेरे घर पर, मेरी माँ मुझसे परेशान हो गई है. तो ये कुछ वीडियो जो इन्होंने बनाकर अपना जो फीलिंग है ये शेयर किया है. बट इमेजिन आस्किंग फॉर गिफ्ट्स एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और लोगों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया, मजे लूटे बेसिकली.
1: भाई सीओडी वाला भेज दिया सब कुछ,
0: कैश ऑन डिलीवरी,
1: क्या बीत रही होगी उन पर.
0: अब लौट कर कभी जिंदगी में किसी से तोहफा नहीं मांगेंगी. तो शायद यही सबक सिखाने के लिए भी लोगों ने इनके साथ ऐसा किया. बट नेवरदलेस चलिए आज की क्या बकते हो स्टोरी आपके लिए ऑन हम लेकर आ रहे थे हम. बट इधर दूसरी ओर हमने आपको मौका दिया है इंडेलिबल होम्स की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर्स जो है ये जीतने का. और जो इस मौके का फायदा उठाएगा वो समझदार है ही, क्योंकि इतना सारा फ्यूल वाउचर अगर आपको मिल जाए $1,000 का, तो इमेजिन आप अगर लॉन्ग रोड ट्रिप्स जो ये प्लान कर रहे थे महंगाई के ज़माने में जहाँ पर फ्यूल का इतना ज़्यादा दाम है, या फिर आपको बहुत कम्यूट करना पड़ता है ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो आपके लिए कितना काम आ सकता है ये $1,000.
1: एग्जैक्टली आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है IH और उसके बाद आपको लिखना है क्या बोलते हैं उसको कि हफ्ते में क्या आप फुल टैंक करते हैं, और अगर फुल टैंक नहीं रखते हैं अपने व्हीकल को हमेशा, तो कितने का फ्यूल अभी के प्राइस के मुताबिक से आप डालते हैं अपनी गाड़ी में. उसके साथ अपना नाम लिखकर 5599 पर आपको भेजना था.
0: राइट, तो देखते हैं कि आप में से कितने लोग जो है ये अपनी एंट्रीज हमारे पास अभी भी भेज सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा टाइम और आपको दे रहे हैं. 5599 पर आप टेक्स्ट करें, एंड्रो में शामिल होकर आप ये $1,000 वो तो फ्यूल वाउचर जरूर जीत सकते हैं. बाय द वे बिफोर यू मूव ऑन, 8th of November को दिवाली जो है ये मनाई जाएगी.
1: हाँ.
0: और ऐसे में आपको पता है कि हमारी खुद की कम्युनिटी में बहुत से दिवाली सेलिब्रेशंस जो है आपके लिए, मतलब हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए होते रहते हैं. तो ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है जहां पर आप शामिल हो सकते हैं. अगर आप नोट शो में रहते हैं तो, या फिर नोट शो के आसपास के इलाके में रहते हैं तो, नोट शो दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का हिस्सा जो है ये आप बन सकते हैं. स्टेफनोज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड टीम पुनीश एंड एना फ्रॉम बारफुट एंड थॉमसन आपके लिए लेकर आ रहे हैं नोट शो दिवाली, जो कि अगले शनिवार यानी नेक्स्ट सैटरडे 24th of October को होने को है, दिन में 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक स्मेल्स फार्म टकापुना में. और यहाँ पर दिन भर डांस परफॉर्मेंसेज होंगे जो आप इंजॉय कर सकते हैं. बच्चों के लिए बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होंगे, बहुत से अमेजिंग यमी फूड स्टोर्स जो आप चेकआउट कर सकते हैं, और फेस्टिव सीजन के दौरान खूब शॉपिंग करने का भी मौका आपको मिलेगा. बट डोंट फॉरगेट रात 9 बजे स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स डिस्प्ले ये आपके लिए रहेगा, जहाँ पर एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है और पार्किंग भी फ्री है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस बहुत से हैं इसका हिस्सा बनने के लिए.
1: याद रहे नेक्स्ट वीक स्माइल्स फार्म तकपुरा सैटरडे को दिन में 12 से रात 9 बजे तक.

0: going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: तो चलिए देखते हैं हमारे आसपास कहां कहां पर नवरात्र का पर्व जो है ये मनाया जा रहा है सुपर सिटी ऑकलैंड में और कैसे आप इसका हिस्सा जो है ये बन सकते हैं. सबसे पहले रामकृष्ण मंदिर 25 ओनस्लेव मैनिकाओ, यहां पर ट्यूजडे 20th ऑफ अक्टूबर तक जो नवरात्रि का पर्व है ये मनाया जाएगा हर रात 6 बजे से. और यहां पर डेली आफ्टर कथा गरबा और डांडिया रास भी होता है जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं.
3: श्री हनुमान मंदिर 14 बाय पार्क प्लेस बर्गडेल नोचो में हर शाम 6:15 बजे से पूजा आरम्भ होती है.
2: और इसके अलावा श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर, यहाँ पर भी 20th ऑफ अक्टूबर तक आप नवरात्र का पर्व जो है ये सेलिब्रेट कर सकते हैं. 7 PM टू 9 PM 38A वॉर्म्सली रोड ऑटोहू आपको पहुँचना है.
3: दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाओ में हर शाम 6:30 बजे से.
2: और माँ दुर्गा टेम्पल 4/3 ओनस्लो एफ पापाटोईटोई, यहाँ पर नवरात्र का पर्व मंडे 19th अक्टूबर तक मनाया जाएगा हर रात 7 बजे से. कन्या पूजन जो है ये 18th एंड 19th ऑफ अक्टूबर को होगा.
3: और इसके अलावा श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में हर शाम 6 बजे से पूजा आरम्भ हो जाती है जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं.
2: और इसके साथ साथ आपको याद दिला दें और भी कहां कहां पर क्या कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और कैसे आप इनका हिस्सा बन सकते हैं. सबसे पहले हम याद दिला रहे हैं आपको अबाउट गरबा इवेंट जो कि होने जा रहा है इसी फ्राइडे को यानी कि कल, और सैटरडे यानी कि परसों 17th ऑफ अक्टूबर को. तो याद रहे फ्राइडे 16th एंड सैटरडे 17th ऑफ अक्टूबर को नोचो कम्युनिटी इवेंट्स द्वारा एट बाफुट एंड थॉमसन नेटबॉल सेंटर 44 नॉर्थ कोर्ट रोड नोचो आप पहुंच सकते हैं इसका हिस्सा बनने के लिए रात 7 बजे से. एंट्री is absolutely free for you to be part of.
3: संप्रीति का जो सेकंड एनुअल दुर्गा पूजा ये इसी वीकेंड पर होने जा रहा है सैटरडे और संडे को फ्रीमेंस बे कम्युनिटी हॉल में ये होगा जहां पर आपके लिए एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है. जो पारंपरिक दुर्गा पूजा और अंजलि है दोनों दिन आपके लिए भोजन का भी प्रबंध रहेगा रात 7 बजे से. बोथ नाइट्स कल्चरल इवनिंग जो है ये रहेगा और उसके अलावा सिंदूर खेला और कई अन्य ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस इस दौरान यहां पर होंगे तो आप जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं.
2: और इसके साथ साथ कोमल निषाद आपके लिए लेकर आ रहे हैं रागा बाय द बे, एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल शो जिसका हिस्सा बन सकते हैं. ये बिल्कुल फ्री इवेंट है, फ्री म्यूजिकल शो है जो आप अटेंड कर सकते हैं. और यहाँ पर सरोद प्लेया प्राशेक बोरकर, ये जो कि मैहर घराना के हैं जिसके बहुत से कमाल के कलाकार जैसे पंडित रविशंकर और साथ में अली अकबर खान ये भी आए हैं फ्रॉम द सेम घराना. और साथ में तबला पर रहेंगे मंजीत सिंह जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब घराना को, जिसमें से पंडित अल्लाह रखा और साथ में उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार जो है ये हमें मिले हैं. तो इनको आप परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं 24th ऑफ अक्टूबर को, विच इज़ नेक्स्ट सैटरडे को, शाम 6 बजे से फ्रीमेंस बे कम्युनिटी सेंटर पर, जहां पर आपके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जिसके लिए आप व्हाट्सएप पर 02210985922 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं.
3: मेनोपोज ग्लोबल आपके लिए ला रहे हैं एक फ्री ऑनलाइन इवेंट वर्ल्ड मेनोपोज डे से मुतल्लिक, इसी संडे को ये रहेगा और आप बिल्कुल मुफ्त में रजिस्टर हो सकते हैं globalpowersurge.com पर.
2: वैसे आपको याद दिला दें अम्बेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब अपना 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं जहाँ पर एंट्री बिल्कुल मुफ्त है और ये अल्कोहल फ्री इवेंट है, ये आप याद रखें क्योंकि इट्स अ फन फैमिली इवेंट और आप इसमें ज़रूर पार्ट ले सकते हैं. इट्स फैंटास्टिक वीकेंड जहां पर स्पोर्ट्स को, म्यूजिक को, कल्चर को और फैमिली एंटरटेनमेंट को सेलिब्रेट किया जाएगा इन कोऑपरेशन विद अंबेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब. ये होने जा रहा है नेक्स्ट वीक सैटरडे 24th एंड संडे 25th ऑफ अक्टूबर को कॉलिन लॉरी फील्ड्स 47 रेनॉल्ड्स रोड पुके को ही आप इसके लिए पहुंच सकते हैं. यहां पर कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टग ऑफ वॉर जैसे जो स्पोर्टिंग इवेंट्स है ये होंगे. साथ ही साथ देयर बी प्लेंटी ऑफ फन एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन and women as well. Activities like lemon and spoon race, musical cheers और बच्चों के races जो है ये भी होंगे. और इसके अलावा यहाँ पर live musical performance popular पंजाबी singer माशाली ये करने वाले हैं Saturday 24th of October को, तो आप भी इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो आ गए.
5: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
6: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
5: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
5: बस इतना ही।
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
6: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु कंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं।
12: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424।
13: Freedom's Outdoor Furniture Flash Sale is on now. Get 30% off outdoor furniture and homewares. From outdoor lounges to outdoor cushions, save 30%. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.
14: Hi, it's me, your lawn. On behalf of Lawns Everywhere, a reminder not to ignore us this spring. We'll make it worth your while.
15: Don't just leave it to the mower and the hose. Take the next step for a barefoot-ready lawn and add Yates Weed and Feed.
16: Be in to win one of five $10,000 MyTitan gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho, camping ka pura gear le sakte ho, ek room ka makeover kar sakte ho, ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo, and you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at MyTitan.
17: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
18: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
17: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
19: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
20: रुजबे, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
21: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलीडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
20: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
21: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलीडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
20: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली, बैंकॉक और फ्री क्रूज।
21: बुक नाउ विद सन टूर्स।
20: कॉल करें 0800 478688।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: All Whites जो है इनकी ओर से या माफ़ कीजिएगा All Whites versus India ये होने जा रहा है सुपर सिटी ऑकलैंड में जहाँ पर आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं. दिस इज़ लाइक वन ऑफ दोज बिग मैचेस जो होने वाले हैं इस बार और अगर आप भी इसमें पार्ट लेना चाहते हैं एज इन ऑडियंस के रूप में और 12th ऑफ नवंबर को जबकि ये रहेगा तो न्यूजीलैंड फुटबॉल ये आपको इन्वाइट कर रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग मैच जो लाइव होने वाला है गो मीडिया स्टेडियम में और यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन डबल पासेस टू गो एंड विटनेस दिस.
3: ये बहुत ही यूनिक एंड कभी जब बाद में चलकर बातें होंगी या फिर आप फोटोज लेंगे तो अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली को दिखा सकेंगे कि जब इंडियन सॉकर टीम फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड आई थी तो आप गए थे उस मैच को देखने के लिए जब न्यूजीलैंड ने उनको होस्ट किया था All Whites versus India. अभी तक टू ओकेजन्स पर दोनों का आमना सामना हुआ है. इन 1981 जैसे मैंने पहले बताया इट एंडेड इन अ नील ओल ड्रो एंड इन 2018 इन न्यूजीलैंड की जीत हुई थी 2-1 से. दोनों टीमों ने बहुत ज्यादा इवोल्व किया है सिंस 2018 और अभी कौन सी टीम कहां पर है किस स्टैंडर्ड पर है इसका पता चलेगा व्हेन दे कम फेस टू फेस और आप वहां पर हो सकते हैं. यह अपॉर्चुनिटी हम पर आपको हम दे रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्री में जाकर उस मैच को देखें क्योंकि डबल पास हमारे पास है जो हम आपको दे सकते हैं. ऑल यू गॉट टू डू इज विजिट आवर फेसबुक पेज. फीचर्ड फोल्डर में आपको एक पोस्ट मिलेगा जो मैच है उससे रिलेटेड. वहां पर आपको दो चीजें करनी है.
2: जी पहली चीज आपको उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर किसी को टैग करना है
3: चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फैमिली हो उन्हें आप टैग कर दें. दूसरी चीज प्रिडिक्ट करें कि जो मैच गो मीडिया स्टेडियम पर होगा 12th ऑफ नवंबर को उसका फाइनल स्कोर क्या होगा. व्हाट विल बी द फाइनल स्कोर बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड 12th ऑफ नवंबर को. ये दो चीजें आप करें एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द ड्रो. ड्रो मंडे को होगा ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा तो वेल इन एडवांस आपको पता चल जाएगा. यू विल बी एबल टू गेट योर टिकट्स एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड.
2: यस एब्सोल्युटली पर टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है बिकॉज जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं इसके वैसे वैसे एंट्रीज जो है क्लोज होने का दिन भी करीब आ रहा है. इसी वजह से अगर जितना जल्दी हो सके अपनी एंट्रीज आप रजिस्टर कर दीजिए उतना आपका फायदा होगा. ड्रो में एक बार आपका नाम चला गया देन यू रेस्ट अश्योर्ड कि एटलीस्ट आपने इसमें पार्टिसिपेट तो किया एंड एटलीस्ट जीतने का एक चांस तो है. बट इफ यू डोंट पार्टिसिपेट एट ऑल तो आप कैसे उसे जस्टिफाई कर सकते हो विनिंग. तो अगर आप भी फुटबॉल बहुत पसंद करते हैं या फुटबॉल को बहुत सपोर्ट करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ दोज मैचेस जो आप विटनेस करना चाहते हैं अभी इसी वक्त विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और वहां पर फीचर्ड फोल्डर में जो पोस्ट मिले उसे विजिट करते हुए आप कमेंट सेक्शन में किसी को टैग कीजिए और साथ ही साथ आप उसके साथ जो फाइनल स्कोर है इस मैच का ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं.
3: तो कई लोगों ने किया है. प्रवीणा है मुनेश है अकी है और साथ में दवनेश है आप सभी ने अभी ही अभी आपके पास इफ यू थिंक यू गॉट अ मिनट विजिट आवर फेसबुक पेज और गो एंड गेट द नीडफुल डन ताकि आपकी एंट्री जो है ये सॉर्टेड हो जाए फॉर द बिग ड्रॉ ऑन मंडे.
0: Hollywood's most wanted.
4: Gundi khad gao. Ya seedha andar aao.
5: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: जा।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
2: Kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
3: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
4: Booking a flight? Save on your stay too.
5: Oh, wow.
4: With Webjet, add a hotel to your flight booking and unlock a great deal on selected accommodation. Bundle and save on your holiday. Visit webjet.co.nz and go somewhere. T's and C's apply.
6: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 ka trolley dash. Saath mein har hafte 10 winners ko $101 ka in-store credit. Bas entry form bharo, receipt lagao aur entry box mein dal do. Fortune Diwali, be in to win. Ends 15th November. T's and C's apply.
7: Glad I got my enrollment sorted the other day.
8: See, Mai, I told you it was easy.
9: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
8: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
9: Really? What if I miss it?
8: Well, your vote won't count for this year's election.
9: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
10: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
11: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोटोए, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
12: It's a very good time to go electric with Winger Motors. For a limited time, drive away in a new Jaqu J5 EV Summit with 0% interest and no deposit over 12 months. Experience all the comfort, technology and practicality you'd expect from a premium SUV. It's the affordable way to switch to EV this summer. Winger Motors, East Auckland, North Shore and Pukekohe or winger.co.nz. On now till October 31st. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
13: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai. Haan,
14: achha?
13: Batao, tuhanda focus. Saada kuch nahi.
14: Shh, Mrs. Singh.
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
16: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
17: Fashion Landscape, जिनके नाम में ही फैशन हो, सोचिए उनकी टीम कितनी पैशनेट होगी। रिटेनिंग वॉल्स, कंक्रीट एंड पेविंग ड्राइवेज, फुटपाथ एंड कार पार्क्स, व्हीकल क्रॉसिंग्स, कर्बिंग एंड वॉकवेज, ड्रेनेज वॉक एंड न्यू बिल्ड, या फिर गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, सब डिविजन या लाइफस्टाइल ब्लॉक्स, या चाहे हो प्लांटिंग, डेकिंग, फेंसिंग या पॉन्स, ओवर 16 इयर्स लोकल एक्सपीरियंस। फैशन लैंडस्केप है लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स। कॉल 02107513330। फैशन लैंडस्केप, आपके आउटडोर स्पेस स्पेशलिस्ट।
18: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
19: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
4: What's going on?
15: डेली राउंडअप का वक्त अब हो चुका है और आज सबसे पहली खबर जो है कि
0: वन न्यूज वोट कॉम्पस के 114,000 से ज्यादा जवाबों से पता चला है कि माउरी इलेक्टोरल रोल हटाना, रफ स्लीपर्स को हटाने के पुलिस राइट्स और फ्री जीपी विजिट्स न्यूजीलैंड के सबसे पोलराइजिंग मुद्दे हैं। माउरी रोल हटाने पर लोग सबसे ज्यादा डिवाइडेड हैं, जबकि वेग वीजा के लिए इंग्लिश टेस्ट जरूरी करने 79% और रेंट कैप्स लगाने 69.7% जैसे मुद्दों पर ज्यादातर लोगों की आम सहमति है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट लारा ग्रीव्स के मुताबिक सोशल मीडिया और छोटी पॉलिसी डिबेट के कारण जनता और उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। ये ऑनलाइन टूल लोगों को अपनी राय बिना किसी प्रेशर के पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड से कंपेयर करने का मौका देता है।
2: दूसरी ओर खबर मिल रही है कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड जो है इन्होंने शार्पली इंक्रीज किए हैं रिफ्यूजल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस, जहां पर कुछ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स के कंसर्न्स ये सामने आए हैं। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने कहा कि इन्होंने 70% ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम बांग्लादेश एंड 39% फ्रॉम इंडिया ओवर द पास्ट 3 मंथ्स में डिक्लाइन किए हैं। अक्रॉस ऑल कंट्रीज मोर देन 6,200 फुल फी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस जो है ने रिजेक्ट किया गया बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर, पुशिंग द ओवरऑल refusal to 34% rate, up from 13% जो previous financial year में record किया गया था। Immigration officials का कहना है कि increased checks on applications for master's degree जो है इसकी वजह से ये particular rise देखा गया है। They've also identified cases जहां पर financial documents जो है इनके साथ alteration जो है ये किए गए, जिसकी वजह से कुछ reused documents भी सामने आए multiple applications में। However, immigration advisors और universities ने warn किया है कि genuine students भी इस चक्कर में फंस सकते हैं अगर सही तरीके से इसकी जांच नहीं होती है। तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनका अप्रूवल रेट फॉर बांग्लादेशी एप्लीकेंट्स फेल टू जस्ट 24% लास्ट मंथ, और सम एजुकेशन एजेंट्स जो है वो रीसेंट रिफ्यूजल्स को रिव्यू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ऐसे टारगेटेड एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन नेशनैलिटी के मुद्दे पर कोई भी एलिगेशन को डिनाई कर रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि सेम रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू एवरीवन एंड वो वॉर्न कर रहे हैं एजुकेशन प्रोवाइडर्स को टू मॉनिटर द एजेंट्स वर्किंग ऑन देयर बिहाफ।
0: साउथ वेस्ट पैसिफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन जो है ये 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, और इस बार सुपरचार्ज्ड एल नीनो और न्यूजीलैंड के पास गर्म समुद्र के कारण ये सीजन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अभी जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन में 7 से 11 यानी 7 से 11 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आने की उम्मीद है, जिनमें से 4 सीवियर कैटेगरी के हो सकते हैं, यानी ये कैटेगरी 3 या उससे ऊपर के हो सकते हैं। न्यूजीलैंड पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के इम्पैक्ट का रिस्क इस सीजन 0 से 1 यानी नॉर्मल है, हालांकि सीजनल डेट्स के बाहर भी साइक्लोन्स आने की आशंका बनी रहती है।
2: और इसी के साथ साथ आपको हम याद दिला रहे हैं कि एक खबर अभी थोड़ी देर पहले ही सामने आई है जिसके बारे में काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं। बताया गया है कि न्यूजीलैंड में स्टारशिप हॉस्पिटल में जो कैंसर ट्रीटमेंट से बच्चों के लिए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ नर्सेज इसे फिलहाल सस्पेंड किया जा रहा है, और कुछ जो ट्रीटमेंट्स हैं इन्हें रीस्केड्यूल किया जा रहा है। हेल्थ न्यूजीलैंड स्टारशिप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर क्रेग विलियम्स ने कहा है कि ये जो सर्विस है इट हैड टू रीस्केड्यूल खास तौर पर कुछ ट्रीटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए।
5: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do baate.
2: Pahli baat. Ajeeb hai aspatal ka ye bistar bhi. Ajeeb hai aspatal ka ye bistar bhi. मौत के करीब ले जाकर जीने का ख्वाब दिखाता है।
3: ओह, that is very true. अगर आप इसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था तो something that you can actually think about.
2: दूसरी चीज
3: जी,
2: धैर्य आपकी मर्जी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं।
3: धैर्य यानी patience ना?
2: Yeah, it should be your choice, not your क्या बोलते हैं मजबूरी को। आप डिसाइड कर लो।
3: अरे याद ही नहीं आ रहा यार, ऐसे में छोड़ो यार। चलो एनीवेज, चलिए इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल होती है एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर हम आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे।

0: Achan on 021-279-1233 or visit abcsolutions.co.nz for more details.
1: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं. प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स. बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स. बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है. बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि.
2: The rain falls softly across the estate. He waits for you beneath the old oak tree. He's hoping that this time you'll take his hand, despite the scandal and that unfortunate incident with the peacock. You approach. He smiles, takes a breath, and says,
3: "The next station is Karangahape."
4: Read, scroll, draw, knit, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains and ferries.
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर. अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स. स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर फॉर यू. और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है. बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz. सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ. द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली.
8: Time check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
9: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Morning, Glenn here with the latest at 10. Health NZ assures patient safety is a top priority as nursing shortages push back child appointments at Starship Hospital. It's been forced to reschedule some blood and cancer treatments. The health agency says decisions are being based on clinical need at a time.

0: बैठे क्योंकि आ रही है
1: My Time with Kashika.
2: Kia ora, namaskar and a very very good morning to you people. How are you? बारिश में तूफान में लड़ते लड़ते आ गई हूँ मैं कशिका आपका साथ देने के लिए. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. वैसे आप कैसे हैं, कैसी तबीयत है? मौसम तो ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है, क्या करें, मौसम तो ऐसा चलता रहेगा. लेकिन हम तो ऐसे आपके साथ 10 से 12 बजे का टाइम कुछ भी हो, आंधी हो तूफान हो, पहुँच जाते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए. Isn't that something nice? A commitment towards you and me together. मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे माई टाइम में. वैसे एक बात और भी बताना चाहती हूँ आपको, कशिश फूड्स को थैंक यू ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाती हूँ और या आपके साथ बातचीत कर पाती हूँ. मेंटल अवेयरनेस का हफ्ता चल रहा है. हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ गोइंग? आर यू लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ? आर यू लुकिंग आफ्टर द पीपल अराउंड यू और नॉट? बताइए. लेकिन थोड़ी देर बाद मैं चाहूँगी कि ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जब मैं बात कर ही रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में आपको उस में से निकालने वाला कोई था या नहीं था, मुझे बताइएगा क्योंकि मैं आपके लिए एक कॉन्टेस्ट करने वाली हूँ थोड़ी देर बाद. दिया जो आपकी ज़िंदगी की द लाइट ऑफ योर लाइफ. और क्योंकि आपसे मैं कह रही हूँ, ये सवाल कर रही हूँ, मुझे पता है कि आपको ये भी पता है, एक दिया एक कहानी में आप भाग ले सकते हैं. $300 वर्थ का आपको कैश प्राइज भी मिल सकता है.
1: बचाओ क्या?

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: एक्सपर्ट्स अड्डा में मैं चाहती हूँ कि आज आप एक्सपर्ट बन जाएं एक ऐसे शख्स या शख्सियत का, लेडी या लेडा, मतलब मेल या फीमेल, आपके कोई दोस्त हैं जो ब्लड रिलेटिव नहीं हो, आपके ऑफिस के कुलीग हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है, जिसने आपको इंस्पायर किया है, आपको एक रास्ता दिखाया है, कोई भी हो सकता है वो आपके लिए। तो आपकी ज़िंदगी को रास्ता दिखाने वाला, वो रोशनी दिखाने वाला कोई एक है जो आप जिसको शाउट आउट देना चाहते हैं, 0800 00 हम पर आप मुझे कॉल कीजिए और मुझे उनका आप नाम बताइए। मैं चाहती हूँ कि मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूँ। $300 कैश जीतने का मौका है। 6th of September के दिन ये ड्रॉ होगा। तो $300 भाई बहुत बड़ी मायने रखते हैं आज की ज़िंदगी में। अप्रिशिएट कीजिए उनको जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत महत्वपूर्ण आपके टर्न में लाने में बहुत आपकी मदद की थी। तो चलिए कॉल करें मुझे ऑन 0800 00 हम 0800 00 4866 पर। आपका नाम मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि ड्रॉ में जाए और आप बातचीत करें, आपको जो भी आपको जिसने भी इंस्पायर किया या आपको मोटिवेट किया, आप उनका नाम मेरे सामने डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू ऐड यू टू द ड्रॉ। ठीक है, चलो अब कॉल करो 0800 00 हम 0800 00 4866 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक चीज़ और बताएं, और वो चीज़ है कि क्या आपने इस मेंटल अवेयरनेस वीक में कुछ किसी की मदद की है? हो सकता है आप किसी की ज़िंदगी का दिया बने हैं, हो सकता है किसी ने आपको कहा हो डिटेल्स। चलो 0800 00 हम, लेट्स जस्ट हेयर इट आउट फ्रॉम यू इफ़ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इन द ड्रॉ। चलो चलो चलो, कम ऑन। मैं भी एक काम कर रही हूँ, ऑफिस शॉर्ट आउट के लिए भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और मीन वाइल आपको याद दिला देती हूँ वाइल आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल कि गो मीडिया स्टेडियम में 12 तारीख को ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया फुटबॉल टीम, ये आपके लिए मैच होने वाला है। और यहाँ आप जा सकते हैं कैसे, हमारे फेसबुक के पेज पर आप पहुँच जाइए और अपने साथ किसको लेके जाना चाहते हैं उन्हें टैग कीजिए, प्रिडिक्ट कीजिए फाइनल स्कोर क्या होगा। ठीक है, आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा एंड हो सकता है आप वो लकी पर्सन बने जो ये जीत के जाए।
0: माय टाइम विद कशिका,
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, हैप्पी तो नहीं।
3: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
3: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
3: बस इतना ही।
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
5: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु कंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
6: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800 56 44 24।
7: Be in to win one of five $10,000 Might to 10 gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho, camping ka pura gear le sakte ho, ek room ka makeover kar sakte ho, ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo, and you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at Might to 10.
8: Yeah. क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
9: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है। मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में।
8: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
10: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
11: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
12: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku for full terms and conditions.

0: सिस्टम।
1: तो चलिए देखिए, मेरे साथ साथ आ चुके हैं सनिल। बहुत लंबा इंतजार किया है इन्होंने, बट अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू सनिल। कैसे हो?
2: बढ़िया बढ़िया, आप बताओ?
1: मैं बढ़िया हूँ। बताओ, आपकी जिंदगी के दिया या लाइट ऑफ लाइफ कौन है?
2: मेरा बॉस है।
1: बॉस है? अरे वाह, क्या बात है। क्या किया बॉस ने, बताओ?
2: मेरे को काम दिया, अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। मेरे पास काम नहीं था।
1: आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्या नाम है आपके बॉस का? कहाँ काम करते हैं आप?
2: उसका नाम है मेल मेटोक्राफ्ट ऑफिंग।
1: क्या बात है, चलो गॉड ब्लेस योर बॉस। मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड थैंक यू फॉर वेटिंग।
2: थैंक यू।
1: ओके, टेक केयर, बाय। ऑफिस शट आउट। ऑफिस शाउटआउट की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले ऑफिस शाउटआउट में देना चाहती हूँ टू नन अदर देन अमित। अमित, आप अपना आज 45th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका जो घर में फैमिली है वो फिजी में है, और क्योंकि वो फिजी में है आप एनजेड पोस्ट के साथ ड्राइव करते हैं ट्रक। थैंक यू वेरी मच, आपने पापा टोई टोई से मुझे टेक्स्ट किया एंड आपका नाम मैंने वैसे ये कह सकती हूँ ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ। अगला गाना एक है बहुत ब्यूटीफुल सा, वो मैंने आपको डेडिकेट भी किया है। और दूसरी ओर बारिश तूफान, चलो चलो इनका मैसेज तो मैं पढ़ते हुए जब बहुत मज़ा आता है। क्योरा, वेरी हैप्पी बारिश तूफान में फिर भी आते हुए हमें एंटरटेन करने और हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए रखने की सलाह देते हुए माई टाइम वाली काशिका जी को हमारा वेरी हेल्थी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऐश, रामू, अतीश, निशा। ओ, इतने सारे लोग, क्या बात है। सुशील, मसल शेफ टीम फ्रॉम वेलिंगटन, सो थैंक यू सो मच ऐश, रामू, अतीश एंड निशा, आप मुझे सुन रहे हैं। मेरी ओर से प्लीज़ एक कॉफ़ी सिप कर लो और एक काम करते हैं हम लोग, चलो वर्चुअली अमित आपके नाम से हम कॉफ़ी से चीयर्स करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू अमित फ्रॉम पापा टोई टोई, गॉड ब्लेस। और अगला गाना आप लोगों के लिए
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
1: अमित, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक हम आपके साथ हैं ना, और जब तक हम हैं आप और हम गुनगुनाते रहेंगे, एक साथ हम करते रहेंगे। समझो ना इन प्यारी प्यारी बातों को, जरूर समझा करो, ठीक है? I only wish I have made your day by saying that, and मैं चाहती हूँ एक छोटा सा स्माइल दे दो आप। थैंक यू, दिस इज फॉर यू।

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
2: Are you ready? Chatbusters.
3: थोड़ा तो हॉल बना दे।
4: तो भाई आज बर्थडे गुरदीप जी आपका भी है, आप भी बर्थडे, मेरा भी आज बर्थडे है, तो एलो जी थोड़े लिए।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: हमारी तो कोई ब्रांच है नहीं, मगर एक बात तो ये है कि वी ब्रांच आउट टू द पीपल, स्पेशली जब यू नो दिवाली आने लग जाती है. और जब दिवाली आने लगती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं. खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए तैयार है. $5,000 वर्थ के प्राइजेस गिफ्ट्स जो हैं हम शेयर कर रहे हैं दिवाली पे, और इस बार हम इन्हें बांट नहीं रहे हैं, इकट्ठे 1,000-1,000 करके आपको दे रहे हैं. तो बस आपको क्या करना है, आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड कर सकती हूँ. $1,000 वर्थ के हैरिंगटन लिविंग के होम डेको और फर्नीचर का वाउचर एक विनर को मिलने वाला है. अब इनके बारे में बता देती हूँ. हैरिंगटन लिविंग मैनकाओ की स्प्रिंग सेल चल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल फर्नीचर है, 60 months इंटरेस्ट फ्री. नए दिवाली पे नए नए फर्नीचर को लेकर आओ, 60 months इंटरेस्ट फ्री, आप बिल्कुल यहाँ पे फर्नीचर करके खरीद सकते हो. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई किए जाते हैं. हैरिंगटन लिविंग इज ओनली हैविंग वन ब्रांच एंड दैट इज इन मैनकाओ. पहुँच जाइए आप वहाँ पर, लेकिन इससे पहले कि आप वहाँ पहुँचे, आप पहुँच जाइए अपने मोबाइल की तरफ, HL लिखिए. ये बताइए कि आप, ऑफ कोर्स मैंने पूछ लिया कि क्या फर्नीचर खरीदेंगे, कहाँ लेंगे, मैंने अभी आपको बड़े आराम से कुछ बताया. ये बताइए हैरिंगटन लिविंग की कितनी ब्रांचेस हैं ऑकलैंड में, हैरिंगटन लिविंग की कितनी ब्रांचेस हैं मैनकाओ में, इतना ही बताना है. तो HL लिखो, हैरिंगटन लिविंग की कितनी ब्रांचेज हैं मैनकाओ में, अपना नाम लिखो, हम तक पहुँचा दो.
3: सोनम गुप्ता, सोनम गुप्ता.

0: इतना ही कहती हूँ, ईट बेटर लिव बेटर. लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर कॉस्को फैंस और यूएस होलसेलर कॉस्को जो है, इन्होंने एक अप्लाई किया है फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू बिल्ड 16,000 स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल डेवलपमेंट एंड दैट टू इन क्राइस्ट चर्च. क्या बात है. अब इस 16,000 स्क्वायर मीटर की जगह, अब आप सोचो कितना बड़ा वेयर हाउस ये बनने वाला है एंड इसमें लार्ज फॉर्मेट पे रिटेल एक्टिविटी होने वाली है. लेट्स वेट एंड वॉच क्या एग्जैक्टली होगा. बट यस, तो यहाँ तो आप जाते ही जाते होंगे, लेकिन जो लोग क्राइस्टचर्च से सुनते हैं उन्हें भी ये पता ही होगा कि अब ये यहाँ पे बहुत जल्द इसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है एंड फास्ट ट्रैक प्रोसेस जो है वो उसकी वजह से लगता है जल्दी जल्दी यहाँ पे हेलो हाय होने वाला है. 2022 में वेस्टगेट में जब ये खुला था तो इनका सेकंड स्टोर जो है इन्होंने प्लान किया था इन ड्रूरी इन साउथ ऑफ ऑकलैंड, लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी कोई खबर नहीं आई है. चलो कोई आपके पास खबर है तो मुझे आप 5599 पर टेक्स्ट करें या 800 हम पर कॉल करें. ड्रीम, आपके ड्रीम का कोई इंटरप्रिटेशन करना है तो बताओ.
1: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने. हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने.
2: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
3: Save big at Rebel and get the family sorted for the summer season. Take 15% off all kids' Nike clothing. Their selected big brand kids and adults tees, 2 for $50. Plus, get 20% off selected bags and bottles. Summer value is on now, only at Rebel Sport. See you on T's and C's.
4: The trade tested cabin sale is on now with up to 20% off our entire range. Nordic timber, easy to build, and over 30 bottles to choose from. Make a backyard yoga studio or just build a bar. Genius! Head to Trade Tested today.
5: Ends November 2nd.
6: I was 11 when I was put into an induced coma and airlifted to Starship. I have a rare lung condition, and my family gathered to say their goodbyes. But instead,
7: I woke up. The people at Starship saved my life, and now I have two beautiful kids of my own. Looking back, seeing how far I've come, I think little me would be so proud.
8: Mercury, helping Starship turn little into big for 25 years.
9: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel Fusion main camera with variable aperture for more creative control, and four gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
10: The rain falls softly across the estate. He waits for you beneath the old oak tree. He's hoping that this time you'll take his hand, despite the scandal and that unfortunate incident with the peacock. You approach. He smiles, takes a breath, and says,
11: "The next station is Karangahape."
12: Read, scroll, draw, knit, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains and ferries.
13: Remember your Fiji? The people who welcomed you like they'd known you forever. The laughter that started with strangers and ended with new friends. The family holiday where everyone still talks about that one night. The crab race you didn't expect to take so seriously. The moments that become stories you still tell. That's the Fiji feeling. And it's still here. Come back and make some more memories. Book your next escape at fijiairways.com.
5: दिवाली आई खुशियाँ लाई BFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं BFSL के साथ होम लोन करवाएं $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं BFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं सर्च BFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई
14: दिवाली बस आने ही वाली है तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर फॉर यू और सबसे बढ़िया बात आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली
15: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: तो Dream Diary में मेरे पास actually what does it mean that if you see crabs, I mostly saw the crabs covered, mostly covered in crabs. I was mostly covered with crabs on the lower part of your body and trying to take it out. मतलब आपकी बॉडी को क्रैब्स खाने की कोशिश कर रहे हैं ओके तो ये लेट मी ट्राई एंड सी इफ आई कैन लोकेट दिस बट मीनवाइल यू नो जब मैं कह सकती हूँ आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो सनिल आपका मैंने नाम ड्रॉ में ऐड कर लिया है और इसके साथ साथ ये कह सकती हूँ दैट फरीशा आपका भी किन्नरी आपका भी शिफाली आपका भी वन ब्रांच आपने लिख के भेजा शिफाली फ्रॉम हैमल शिवांगी शिवानी फ्रॉम हैमिल्टन थैंक्स काशिका जी फॉर द लवली सॉन्ग थैंक यू शिवानी एंड सनिल आपने भी लिख के भेजा है फरीशा किन्नरी शिफाली हो गया सनिल हो गया मितेश हो गया दिनेश कुमार शर्मा वन ब्रांच विशाल येस आई डोंट नो हाउ टू पुट माई नेम वाया ऐप बट ऐप ऐड ऑन माई नेम इन द ड्रॉ नहीं 5356 आपको 5599 पे ही टेक्स्ट करना है HL और अपना नाम वन ब्रांच करेक्ट सुनील वन ब्रांच मैंने कहा ये हैरिंगटन लिविंग का है सरबजोत आपका भी दो ब्रांचेस तो नहीं है और आपने कीवर्ड तो लिखा नहीं वन ब्रांच लीना एक ब्रांच अश्विन चंद आपने लिख के भेजा है ठीक है नाउ कमिंग टू क्रैब्स ट्राइंग टू ईट यू ओके So basically, people who are having little pressure in your life and वो आपको overwhelm कर रहे हैं your personal to cross your personal boundaries. Probably you are feeling targeted. It's a difficult behavior which is happening to you. दूसरे लोग जो हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं तो yeah, ये quite possible है कि आप कुछ struggle कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसे fight out कर सकते हैं and गोल्ड एंड रुद्राक्ष की ड्रीम है गोल्ड का ड्रीम इज ऑलवेज सपोज टू बी वेरी गुड क्योंकि गोल्ड का क्या गोल्ड की ज्वेलरी आपने लिख के भेजा है तो अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी की बात करते हैं तो पब्लिक रिकग्निशन पर्सनल रोल सेल्फ एस्टीम आप किस तरह से यू नो बिलीव करते हैं ज्वेलरी में क्या आपने देखा वो पता नहीं एंड गॉड्स आइडल आपने मैंने गॉड्स के बारे में तो बताया था आपको आपने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए एंड गॉड्स के बारे में मैंने पहले भी बात की थी लेकिन रुद्राक्ष के बारे में आपने कहा है एंड यू आर फ्रॉम अपर हट वेलिंगटन से आप मुझसे पूछ रहे हैं अगर आप रुद्राक्ष या शिवलिंग देखते हैं कहते हैं दैट इट्स एन इंडिकेशन इट्स अ ग्रेस कहते हैं इट्स अ कॉल फॉर मेडिटेशन और हो सकता है एक स्पिरिचुअली आपको आप इंक्लाइन होते चले जा रहे हैं ऑल राइट सो आई होप मैं एक लाइन में ही आंसर कर सकती हूँ मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं बट हाँ ड्रीम इंटरप्रिटेशन जरूर कर सकती हूँ
15: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट NZPMI.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो जब बात कर रहे हैं कि दिवाली कैसे हमारे सर पर आ चुकी है और बिल्कुल एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा है, नवरात्रि का आज पांचवा दिन भी है और आप लोग गरबा खेल रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, नॉट शो दिवाली के बारे में आपका क्या कहना है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स आपके लिए स्टीफनस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और टीम पुनिश एंड एना बाफुटन थॉम्सन के नॉर्थ शोर की दिवाली लेकर आ रहे हैं 24 अक्टूबर को दोपहर 12 से लेकर रात 9 बजे तक स्मॉल्स फार्म टाकापुना में डांस के परफॉर्मेंसेस होंगे, पूरे दिन फन एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होंगी, डिलिशियस खाने पीने के स्टॉल्स होंगे, फेस्टिव शॉपिंग करने का मौका मिलेगा और रात को 9 बजे स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स का डिस्प्ले भी होने वाला है। फ्री एंट्री है और फ्री पार्किंग है और आपको तो पहुँचना ही पहुँचना है क्योंकि यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। इतने बड़े पैमाने पर एक नए एरिया में ये होने वाला है, स्मेल्स फार्म, स्मेल्स या स्मॉल स्मेल्स फार्म टाकापुना, इट्स क्वाइट अ बिग प्लेस। मुझे पता है आना ने हमें वीडियो पे भी दिखाया था एंड लुक्स ह्यूज एंड नाइस एंड पार्किंग की तो कोई इशू ही नहीं है वहाँ पर।

तो ड्राइव शो में आज आउटरोवा स्पीक्स में किले वोंग, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट, माय अपोलॉजीज इफ आई एम नॉट, ये बातें करने वाले हैं अबाउट दी अपॉर्चुनिटी पार्टी और किस तरह से ये इनके पास डिटेल्स है. तो जरूर 5599 पे टेक्स्ट करें अगर आपके पास कोई सवाल है.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: 2626.
1: The highs of 19 overnight, temperature of 9. Aaj ka forecast bata ja raha hai. It feels like it 18 degrees. Possibly heavy rainfall subah early afternoon mein ho sakti hai. Kuch showers dheere dheere kam hoti chale jayenge. Northerlies badh rahe hain. It feels like 18 and 7:38 for sunset. My time with Kashika. Mid morning maza. Bajao kya? गाना बजाने में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी मैं कि मैंने सोचा मैं क्या करूं. लेकिन थैंक यू टू यू 0365. अरे मैंने आपके लिए थोड़ा सा ही तो कुछ बताया, पूरा डिटेल्स तो नहीं बता पाई, बट डेफिनेटली इफ़ आई वाज ऑफ हेल्प टू यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट. देखो लाइट ऑफ माई लाइफ आप या कह सकते हैं, या किसी ने आपको थोड़ी सी रोशनी दिखाई ना, मैं समझती हूँ उनको थैंक करना बहुत बढ़िया एक काम होता है. और ऐसा काम आप मेंटल अवेयरनेस के हफ्ते में अगर आप कर रहे हैं तो यू विल स्टिल फील लाइटर, डोंट यू थिंक सो. आपका बर्थडे है तो आप एनिवर्सरी है तो प्लीज़ अपना बर्थडे एनिवर्सरी में हमारी विशेस आप प्लीज़ कबूल कर लीजिए. और अभी आज एक बॉलीवुड की एक सिंगर है सुजैन डिमेलो, बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है इनकी, चलो इनकी आवाज़ पहचानने की कोशिश करो. अगले दो गाने मैंने आपके लिए रेडी किए हैं उनकी आवाज़ों में, जिन्होंने एक जगह अरिजीत सिंह के साथ गाया और एक जगह उन्होंने पूरा गाना खुद गाया.

0: ईट बेटर लिव बेटर, इतना कुछ होता है, लेकिन हमें ज़रूर ऐसा होता है कभी कभी, वी फील ओवरवेल्म्ड, हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली हर डायरेक्शन में भाग रहा होता है, और ऐसे में हमें लगता है कि एक थ्री पार्ट का फॉर्मूला जो होता है ना, कभी कभी वो हेल्प करता है जब हमारे एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और ये एक ईजी नेचुरल वे हो सकता है. एवरीथिंग यू नो स्टार्ट्स ऑफ विद द प्रैक्टिस ऑफ नोटिसिंग, एक जेंटल आर्ट ऑफ विटनेसिंग आपका इनर सेल्फ क्या है, बिना जजमेंट के सिंपली अपने थॉट्स को नोटिस करो, अपने इमोशंस को, अपने ब्रीदिंग को, आपके बॉडी के सेंसेशंस को, दैट दे आर देयर, इन्हें फिक्स नहीं करना, नो फोर्सिंग, जस्ट अवेयरनेस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ ये अवेयरनेस जो है ये वीव करती है अराउंड द मोडालिटी ऑफ SOM. अब जब मैं SOM की बात करती हूँ, सो सोम विचार इट्स कॉल्ड. अब सोम विचार इज सोम विचार, सोम क्रिया, सोम मंत्र, ये चीज़ जो है ये आपके लिए एक हेल्प लेकर आ सकती हैं कॉन्स्टेंटली, इन केस यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड. एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ योगा जिसमें आप नोटिस करेंगे आपकी ब्रीथिंग, आपका अलाइनमेंट, किस तरह आपकी टेंशन होती हैं, आपका माइंड जो है वो आपको डाइवर्ट कर देता है. आयुर्वेदा समटाइम्स आपकी प्रकृति को, आपके डाइजेशन को और आपके इमोशनल पैटर्न को, आपके लाइफस्टाइल के बैलेंसेस को हेल्प करता है. एक्यूपंक्चर जो है आपके एनर्जी के जो मेरिडियन होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करता है. नेचुरोपैथी ऐसा है जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्ड करता है, आपका फूड, आपका हाइड्रेशन, आपका रेस्ट, आपका डेली का रिदम. सोम क्रिया की अगर मैं बात करती हूँ, अवेयरनेस ऑफ योर एक्शन. एक बार आप अगर अवेयर हो जाते हैं एक सोम क्रिया के बारे में, इट्स पार्ट ऑफ यू, हाउ यू फील एवरी डे, और ये आप नोटिस करते हैं आपकी जेंटल एक्शंस, आपकी एनर्जी किस तरह से जो एक स्टक होती है कई बार, और फिर आप उसे मूव करने की कोशिश करते हैं. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट अ फ्री फ्यू राउंड्स ऑफ आई कैन से ब्रीदिंग. आपने जस्ट बिफोर यू ओपन योर लैपटॉप, कुछ भी होता है, एक ईजी स्ट्रेच, बैक टू बैक कॉल्स लेने से पहले आप कर सकते हैं, एक कुछ अपने वैल योर कम्यूटिंग, वैल योर ट्रैवलिंग, अपने टेंशन को रिलीज कीजिए, गाइए, गाने सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए. ये वाइब्रेशंस, ये रिदम, ये हमिंग करना आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है फ्रॉम अ लॉन्ग डे. इट हेल्प्स यू, दैट्स व्हाई दे से ना, व्हाइल यू आर ड्राइविंग बैक यू आर लिसनिंग टू फन एंटरटेनमेंट विद सैंडी एंड रुस्बे. इट्स सो ट्रू बिकॉज दे आर फन एलिमेंट. आपका माइंड उस चीज़ से हट जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है. एक्यूपंक्चर कभी कभी इसे प्रेशर पॉइंट्स में भी हेल्प करता है. सोम मंत्र ये होता है जब एक साइकिल पूरा होने लगता है और आपको एक मॉडर्न लाइफ से आप अपने आप को थोड़ा सा हटा लेते हैं और ये चेंजेस आप सिंक इन होने देते हैं. हर रोज़ में एक ब्यूटीफुल सिंपल वन मिनट का पॉज बिफोर यू स्टार्ट योर मीटिंग और योर कॉल, अ स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिफोर पिकिंग अप योर फोन, अ माइंडफुल डे रिचुअल, आप इसको अगर बना लेते हैं नोटिस करेंगे कितना आपको ये एलिवेट कर सकता है. योगा एट द एंड हेल्प ज़रूर करता है. आयुर्वेदा एक स्टेबिलिटी लेकर आता है, खाना पीना किस तरह से आपके रिदम है आपकी बॉडी का, इतना खाना है, इतना ही सोना है, आपको पता है आपकी बॉडी की एनर्जी क्लॉक किस तरह से काम करती है. फर्स्ट यू नोटिस योर विचार, योर थॉट्स, देन यू मेक अ सिंपल मूवमेंट, अ डूएबल एक्शन, उसको बोलते हैं क्रिया, और फाइनली एक पॉज करते हैं जहाँ पर आपका किस तरह से आप उसे सेटल होने देते हैं. ये चीज़ें अगर आप अलाइन कर लेते हैं ना, आपके मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा रहता है. सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट, और बहुत डिवाइन फीलिंग्स के साथ साथ मैं वेट कर रही हूँ 5599 पे आपके टेक्स्ट का.
1: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी रोशन करें. एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ. हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा. हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, PFSL, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स.
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 ईयर्स।
5: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
6: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
6: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
10: At Bunnings, spring starts in the garden, and we've got what you need to get stuck in.
11: Whether you're a long-time gardener or you're getting your hands dirty for the first time, we can help you bring some life to your backyard.
12: Start gardening for less this spring at Bunnings.
13: Bunnings Warehouse.
14: It's a very good time to go electric with Winger Motors. For a limited time, drive away in a new Jaqu J5 EV Summit with 0% interest and no deposit over 12 months. Experience all the comfort, technology and practicality you'd expect from a premium SUV. It's the affordable way to switch to EV this summer. Winger Motors, East Auckland, North Shore and Pukekohe or winger.co.nz. On now till October 31st. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
3: इस दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए।
15: अरे तेजल, चल जल्दी जाइए धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार में। तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता, सोना संसार।
3: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ 190 स्टोलाट रोड माउंट रोस्किल। कॉल 0962933333।
16: Octopus Factory Farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.
17: Your favourite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki. All together Auckland.
18: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
19: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
20: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz।
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
21: Hi, hi, hi, hi.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
0: I really got carried away, and इन्होंने अम्मा अम्मा आपने लिख के भेजा है। इन्होंने बोला, I have always loved a good challenge. ओके, पता नहीं आपका कोई चैलेंज होगा जिसकी वजह से आपने ये बिल्कुल लिखा होगा। कैप्टिवेटिंग पोर्ट्रेल ऑफ डिवाइन कॉम्प्लेक्सिटी, कैप्टिवेटिंग पोर्ट्रेल ऑफ डिवाइन कॉम्प्लेक्सिटी लव्ड। ओके, आई थिंक प्रॉब्ली इफ आई कैन रीफ्रेज इट, लव्ड कैप्टिवेटिंग पोर्ट्रेल ऑफ डिवाइन कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट नवरात्रि, विच इज़ रियली लवली, फैंटास्टिक। आई मीन, आप जब इस तरह की खबरें, चीज़ें जो मुझे भेजते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाइन आर्म्स बेरिंग गिफ्ट्स वंस लीथल। ओके, नाइस, ठीक है। आपने जो भी भेजा है मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि कल भूलना नहीं, मेरी स्टोरी जाएगी फेसबुक पर भी जाएगी, वो इंस्टा पर भी जाएगी। आपको लगता है कि कुछ आपको भी ऐड करना है उसमें, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप मुझे 5599 पे ज़रूर ज़रूर ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं पहुँची हूँ एक और ख़बर की तरफ, जहाँ पर हम बातें जब नवरात्रि की कर रहे हैं तो रामकृष्ण मंदिर ऑनस्लो एवेन्यू मैनकाओ में और साथ साथ कई जगह नवरात्रि सेलिब्रेशंस हो रही हैं। आप यहाँ पहुँच सकते हैं, श्री हनुमान मंदिर बगडेल नॉर्थ शोर में भी पहुँच सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए 18 तारीख से 6:30 बजे गरबा होगा। आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर यहाँ पर भी वॉम्सली रोड ओटाहू में प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मैनकाओ में ऑपोजिट वेयर हाउस आपके लिए यहाँ पर भी दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने बंदोबस्त किया है। माँ दुर्गा टेम्पल ऑनस्लो एवेन्यू में 18 और 19 तारीख को कन्या पूजन भी होने वाली है। श्री राम मंदिर में 20 तारीख तक 6:30 बजे 8:30 बजे से गरबा होगा। बाकी इवेंट्स में अगर मैं कहूँ तो 16 और 17 तारीख को नॉर्थ शोर कम्युनिटी इवेंट्स बाफुट एंड थॉम्सन नेटबॉल हॉल नॉर्थ कोर्ट में नॉर्थ शोर की 7:00 बजे से नवरात्रि गरबा इवेंट होने वाला है। ये बिल्कुल फ्री है, ज़रूर पहुँचेगा। संप्रीति जो सेकेंड एनुअल दुर्गा पूजा है 17 और 18 तारीख को बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर भी आप पहुँच सकते हैं। फ्रीमन बे कम्युनिटी में रागा बाय द बे एक क्लासिकल कोमल निषाद जो है आपके लिए सरोद का एक कमाल का गायन लेकर आ रहे हैं, जो कि पंडित अल्ला राखा और उस्ताद जाकिर हुसैन के पंजाब घराने के सुर रिप्रेजेंट करें। 24 तारीख को 6:00 बजे होगा। मेनोपॉज ग्लोबल प्रेजेंट एक फ्री ऑनलाइन वर्ल्ड मेनोपॉज डे 18 तारीख को globalpowersearch.com के जरिए। अंबेडकर स्पोर्ट्स एंड क्लब 34th एनुअल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करने वाले हैं, ये फ्री इवेंट है, और 24th एंड 25th को आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमें बिल्कुल भाग लेना चाहिए और पहुंचना चाहिए, ज़रूर इन जगह पहुंचेगा।

वैसे आपको ये पता है ना कि एक एरर जो है, एक मैसेज जो है ट्रेन कंट्रोल के स्क्रीन पर आ रहा था विदाउट साउंडिंग एन ऑडिबल अलार्म फॉर मोर देन 15 मिनट्स बिफोर, जब ये वेलिंगटन की पैसेंजर ट्रेन जो थी ये क्रैश हो गई थ्रू द कॉन्क्रीट बैरियर. अब ये इंसिडेंट्स जो है ये एक डिटेल इवेंट जो था जो खंडाला ये तो कौन सा खंडाला आ गया स्टेशन के आसपास, कुछ और इसको प्रोनाउंसिएशन होगा, 6 तारीख को ये क्रैश हुआ था जहाँ 2 ट्रेन के क्रू मेंबर्स जो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, 4 पैसेंजर्स जो थे उन्हें परेशानी भी हो गई थी और इंजर भी हुए थे, और साथ में ये ट्रेन जो है रेड सिग्नल को पास कर गई थी एंड इट वॉज डाइवर्टेड इंटू अ रनवे ट्रैक जहाँ सेफ्टी मैकेनिज्म जो था वो इंगेज ही नहीं हो पा रहा था. ये ट्रेन 33 किलोमीटर्स की रफ्तार से चलती चली जा रही थी एंड इट गॉट स्टक एट द ब्लॉक ऑफ अ कॉन्क्रीट यू नो आफ्टर अ वाइल. तो उसके ऊपर कुछ पता चल रहा है, कुछ वार्निंग जो बताया जा रिपोर्ट में पता चल रहा है, करीब 6:50-7 बजे ये हुआ, 6:50 के करीब पहला साइन जो था इसका वार्निंग आना जोहान्सविल के आसपास शुरू हुआ और फिर ये एरर जब हुआ ये समझ में नहीं आया, मगर ट्रेन ने अपना सिग्नल ज़रूर दिया था. अरे गरबा डांडिया की बात करते हैं तो हाउ अबाउट दिस.

0: Rashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून बिल्कुल शुरू हो चुका है और ऐसे में 30 अक्टूबर के दिन फ्राइडे के दिन इसका ड्रॉ भी होगा. हज़ार हज़ार डॉलर के हमारे पास 5,000 वर्थ के प्राइजेस हैं और ये जो प्राइज़ मैं आपको देने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइटी 10 के 10 वाउचर्स हैं $1,000 वर्थ के और ये आपको दे रहे हैं कौन? NZPMI के पॉल. अब आप NZPMI के बारे में आपको मैं बता देती हूँ. आप अपनी प्रॉपर्टी की ट्रू सेल वैल्यू जो है अनलॉक कर सकते हैं एंड दैट टू विद NZPMI. ये आपके लोकल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट है जो फ्री साइट असेसमेंट कर सकते हैं. आप NZPMI.co.nz की वेबसाइट पे जा सकते हैं, नहीं तो 0800-4 दैट इज़ अ न्यूमेरिक 4 NZPMI पे कॉल कर सकते हैं. अब आपका टाइम आ रहा है जहाँ $1,000 का आपको माइटी 10 के वाउचर जो है एक विनर ढूंढ रहे हैं ये जीतने का, लेकिन इसका नाम आपका ड्रॉ में हम ऐड करेंगे. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जाएंगी, स्टैंडर्ड करियर चार्जेस भी अप्लाई किए जाएंगे. ठीक है, तो बाकी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हम rova.nz के जरिए आप पता भी लगा सकते हैं. NZPMI आपका कीवर्ड है. इसके साथ साथ आपको लिख के मुझे ये बताना है कि अभी आज इतने सारे गाने सुने उसमें से आपको बेस्ट सॉन्ग कौन सा लगा जो मैंने प्ले किया. ठीक है, डन, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका मूड इस मेंटल अवेयरनेस के हफ्ते में हैप्पी हैप्पी रहे. ठीक है, देखो हिंट भी दे दिया मैंने. ठीक है, NZPMI लिखे कौन सा गाना आपको पसंद आया जो मैंने आज आपके लिए प्ले किया और अपना नाम लिख के हम तक पहुंचा दीजिए.
0: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया आदमी.
5: अभी ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
8: Okay, who drank all of the milk?
9: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
10: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
11: Enrolled yet?
12: How about you?
11: Are you enrolled?
13: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
0: How does one person finance on a new Jayco sound? Right now at West City Omura Jayco, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jayco J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jayco. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
7: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
14: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. T's and C's apply.
1: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-44-2288. Lotus Foreign Exchange. Getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
2: बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं प्योर मार्बल मूर्तिज कॉपर मूर्तिज गन मेटल मूर्तिज देवी देवताओं के वस्त्र सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स मिरर्स कर्टन्स सोफा कवर्स बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोई योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि
6: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
12: Lots.
6: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
12: Probably.
6: Am I paying for this free coffee?
12: Definitely.
6: Will they talk me into an upgrade?
12: Oh.
6: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
15: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
16: Rescue me, recycle me.
3: एक बात बताओ आपको ये जो प्लास्टिक होता है ना मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वी यूज इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता 14% जो दुनिया के वर्ल्ड के प्लास्टिक की पैकेजिंग है इट इज कलेक्टेड फॉर रिसाइकलिंग इफ वी डू नॉट चेंज आवर हैबिट्स तो 30 साल आगे चल के क्या हो सकता है दिल बी मोर प्लास्टिक बाय वेट इन दी ओशन फिश नहीं मिलने वाली प्लास्टिक मिलने वाला है बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखें तो प्लास्टिक के बैग्स जो हैं आपको बीच के एंड्स पर ओशंस के आसपास मिलते हैं इट्स एक्चुअली किलिंग द सी लाइफ इट्स ईजी टू ब्रिंग योर ओन शॉपिंग बैग्स एंड देन शॉप और साथ साथ इट्स ईजी टू से नो टू प्लास्टिक आइटम्स जो रिसाइकल नहीं हो सकते मेक श्योर एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है या नॉन रिसाइकल रिसाइकलेबल आइटम्स है ये ओशन में या पानी में आप नहीं ऐड करें मरीन लाइफ ख़राब हो रही है जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदने जाते हैं दे कम इन टू मच ऑफ पैकेजिंग ध्यान से देखो कि ये चीज़ें जो पैकेज हुई हैं डू यू थिंक कि अननेसेसरी प्लास्टिक रैपिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ये श्रिंक रैप्ड वेजीज एंड ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में Is that really important? We can always refuse and say no. No to these kind of things. Yeah, I am totally with you for all this. But chalo, thank you. Kehdete hain. Aapko Leena Dholi gana pasand aaya. Dandiya song, Keval Singh. Devinder Singh Dholi, Dholira, Kinnari aapko bhi pasand aaya. So thank you very much for all this. Achha, sab thank you to kar hi rahi hoon. Diwali ka mauka bhi aa raha hai. To aapko bata deti hoon ki North Shore Diwali jo hai. Aapke liye bilkul Stephanus Financial Solutions or Team Punish. एंड एना फ्रॉम बाफेट एंड थॉमसन लेकर आ रहे हैं 24 अक्टूबर के दिन दोपहर 12 से लेकर रात 9 बजे तक स्मेल्स फार्म टाकापुना में डांस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द डे होने वाली हैं फन एक्टिविटीज़ बच्चों की होंगी खाने पीने के स्टॉल्स होंगे फेस्टिवल शॉपिंग करने का मौका आपको मिलेगा और रात को 9 बजे फायरवर्क्स का डिस्प्ले भी होगा फ्री एंट्री है और फ्री पार्किंग है तो बिल्कुल आपको पहुंचना है नॉर्थ शोर की दिवाली को 24 तारीख को दोपहर 12 से लेकर 9 बजे तक स्मेल्स फार्म टाकापुना में
16: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI
3: गानों की बात चल रही है तो वैसे आपका म्यूजिक कुछ शायद पुराने गानों का हो तो 60s 70s के ट्रैक्स रिवाइंड रोवा पे आप म्यूजिक स्टेशन सुन सकते हैं 80s का जूक बॉक्स जो है आप ये सुन सकते हैं रोवा ऐप के जरिए पीजी के भजन या कीर्तन संग्रह सुनना चाहते हैं उसका भी एक अलग म्यूजिक स्टेशन है पंजाबी हिट्स में चढ़दी कला और फिर राहत फतेह अली खान के सूफी गाने भी आप सुन सकते हैं रोवा स्टेशन

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: वेल टाइम हो चुका है जाने का, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी एक तड़कती मड़कती अलग आवाज में.
2: तुम्हारी आवाज, तुम कोशिश कर लो, हजार कोशिश कर लो केतन, लेकिन तुम काशिका नहीं बन सकते.
1: वो तो डेफिनेटली है, थोड़ा मर्दानगी टाइप आप इजहार करो.
2: तुम्हारी तो सिंगर की आवाज है, सुपर सिंगर की आवाज है भाई.
1: मैं आगे बोलने भी वाला था, माय टाइम विद केतन.
2: Good one. How have you been?
1: Good, yaar. Amazing. Very nice day outside. आज फिर से पकौड़े और चाय पीने का मन कर रहा है. Unfortunately, हम रहते भी सिटी में और यहाँ पे बहुत दूर है. अगर लेना भी हो तो.
2: मतलब मेरे फास्ट चल रहे हो, तुम पकौड़ों की बातें कर रहे हो.
1: Oh, I'm so happy.
2: अच्छा, मेंटल अवेयरनेस वीक है ना, मेंटल अवेयरनेस की वीक है, इस चक्कर में तुमने मतलब मेरे लिए हैप्पीनेस लेकर आए हो, ये बता के कि पकौड़े खा लो जाके बाहर है.
1: नहीं, बट यू कैन हैव इट वन टाइम, राइट?
2: वन टाइम आई कैन हैव.
1: हां, तो यू थोड़ा सा सब्र करो,
2: थोड़ा सा
1: पेशेंस आप में है ही है.
2: हां,
1: तो बस कंट्रोल करके वंस यू ओपन, अबाउट टू ओपन द थिंग, तब बहुत सारे पकौड़े, बहुत सारे चाय, बहुत सारे अलग अलग. मैं नहीं बोलना चाहता, मैं वो कहते ना कि वो कहते ना वो नहीं लेना चाहता.
2: सब्स बाग. अच्छा, तुम पाप नहीं लेना चाहते. हाँ. ये बोल के. अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, तुमने मेन्यू मेरा सेट कर दिया. आज के दिन मैं पकौड़े खा सकती हूँ, अच्छा सिंगाड़े के, आटे के, और भी बहुत सारी चीजें खा सकती हूँ मैं. एक्चुअली
1: आप साबूदाने की खिचड़ी भी ट्राई.
2: हाँ, मेरी फेवरेट है, परसों बनाई थी मैंने.
1: ओ, मैं पता है उस फास्टिंग के लिए मैं, मतलब मुझे इतना पसंद है कि उसके लिए मैं फास्ट रखता था.
2: सीरियसली? हाँ. तुम पहले बताते, तुम्हारे लिए मैं लेकर आया.
1: मैं भी बोल देता हूँ. मैं भी
2: कमिटमेंट ले ली तुमने, क्या बात है. थैंक यू सो मच केतन, तुम यहाँ आए. बस देखो, अच्छा लगा, वेरी नाइस. ऐसे आते रहा करो.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: ठीक है, तो मैं इसी के साथ साथ कह सकती हूँ कि कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है वीरवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, जो भी से कहना जाए. मेरी मुलाकात होगी, दिन कहलाएगा शुक्रवार. एंड TGIF में मैं तो आऊंगी, लेकिन जाने से पहले केतन को आप जरूर वेलकम कीजिएगा. एंड आई विल सी यू डे टुमारो एट 10 o'clock. टेक केयर. एंड केतन, ओवर टू यू.

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Mid morning maza. March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
8: दिवाली आई, खुशियाँ लाई. PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है. अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं. PFSL के साथ होम लोन करवाएं. $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं. 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं. तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं. PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं. सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934. टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई.
9: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
10: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
9: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
10: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
9: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
10: 100% authentic and pure as mother's love.
11: Weird, I thought we still had bananas.
12: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
13: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु खंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
9: Terms, condition, fees and credit criteria apply. Call Logic Finance ke Guru Kendola ko on 0800-LOGIC-G which is 0800-564-24.
14: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो.
15: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
16: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड.
15: सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
16: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ attorney. For appointments with Raja Ashima, call on 09-2799-439 or visit legalassociates.co.nz.
17: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
18: हाँ. अच्छा,
17: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
18: मिसेस सिंह.
19: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
20: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
21: Booking a flight? Save on your stay too.
22: Oh, nice.
21: With Webjet, add a hotel to your flight booking and unlock a great deal on selected accommodation. No coupon codes, no extra steps, just built-in savings on eligible hotels. That's more money to spend on your holiday, not your accommodation. Book your flight, add your hotel and save. Visit webjet.co.nz and go somewhere. T's and C's apply.
23: Time check.
24: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
25: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. The Health Minister's Office has shot down claims of cancelled cancer treatment at Starship Children's Hospital. A spokesperson says while a handful of chemo sessions have been delayed by less than a week, no child has missed out on care. Health NZ blamed nursing staff shortages, resulting in treatments being rescheduled. Kiwi actor Cliff Curtis faces a more serious charge, with police alleging he was more than double the speed limit when he crashed in Auckland. A taxi driver was seriously injured during last month's incident. Stuff reports that police have asked the judge to upgrade the charge to causing injury by driving with excess blood alcohol. A Manawatu police officer has received the Police Association's Bravery Award. Constable David Cramp gave vital first aid to three injured people following a shooting in Horowhenua earlier this year. The association's Steve Watts says he didn't know if the gunman was still at large.
1: David was able to fall back on his previous military training, which ultimately saved three people's lives, all the while not knowing what he was going into and putting his own safety at risk.
25: And in Taranaki, heavy rain and flooding has closed a section of State Highway 3 through Awakino Gorge. The transport agency says it's closed between Mōko and Mahoe Nui with no viable detour. People travelling north are likely having to head inland on 43. In sport, Rugby First and the All Blacks reveal their team at 2pm for Saturday's test against the Wallabies in Sydney. Commentator Nigel Yeldon would keep changes to a minimum.
3: Given the injuries that the All Blacks suffered, there will be quite a few new faces in the team compared to last week. That's actually a reason why you don't want to go wholesale, in my opinion.
25: And staying with rugby, Black Ferns co-captain Ruahe Dumont will return from a calf injury via the bench for Saturday's test against France in Hamilton.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चल जान लेते हैं। आज 19 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का

बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी गजब की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जिसको आपके साथ शेयर करने के लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, इसलिए थोड़ा जल्दी भी आ गया। एंड ये अगर आपने कशिका जी शो सुना होगा तो वहां पे भी मैं था, यानी कि आई वाज स्टूडियो हाफ एन आवर बिफोर एंड आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग हर शो एज वेल। बहुत ही बढ़िया शो करती आ रही हैं, नथिंग न्यू, आई मीन नथिंग न्यू एज इन लाइक वो हमेशा से अच्छा ही करती आई है। पर यस, आप बने रहिए, अभी सबसे पहले तो होम सिक रेमेडीज के लिए आप मुझे मैसेज भेजिए एंड देन यस, आज की डेट पे कुछ कहानियां भी मैं बताऊंगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट स्टे यू नो ट्यून इन एंड सुनते रहिए मेरा शो। लेट्स स्टार्ट विद ये गाना जिसका नाम है मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है। नहीं, मेरे पे अच्छा लग रहा है, श्रेया घोषाल की आवाज़ अच्छा लगेगा।

0: with Ketan.
1: Mujhe pasand hai.
2: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. और चलिए बात करते हैं होम सिक रेमेडीज की. आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, पर यस, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. काफ़ी इवेंट्स होने जा रहे हैं यहाँ पे. एक नॉर्थ शोर दिवाली भी सेलिब्रेट की जा रही है. नॉर्थ शोर दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, स्टीफनीज फाइनेंशियल सोल्यूशन एंड टीम पुनेश एंड अना एना फ्रॉम बाफुड एंड थॉम्सन, ये आप सभी के लिए लेके आए हैं नॉर्थ शोर दिवाली, जो कि सैटरडे को हो रहा है 24 अक्टूबर को, करीबन 12 से लेके 9 बजे तक, स्मेल्स फार्म टाकापुना में. वेल, आप क्या क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं? डांस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द डे, फन एक्टिविटीज विद द किड्स, फॉर द किड्स. काफ़ी अमेजिंग टेस्टी खाना होगा वहाँ पे, दुकानें होगी वहाँ की जहाँ से आप ऑब्वियसली ख़रीद सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. कुछ शॉपिंग के लिए भी वहाँ पे ऑप्शंस होंगे. एंड यस, 9 बजे गेट रेडी फॉर स्पेक्टेकुलर फायरवर्क डिस्प्ले. जी हाँ, कंप्लीटली फ्री एंट्री है और फ्री पार्किंग भी है. तो अगर आप आ रहे हैं तो आओ, अकेले नहीं, अपने फ्रेंड्स फैमिली को साथ में लेके आओ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके आओ, अपने भाई बहनों को लेके आओ, सिबलिंग्स, अपने क्लासमेट्स, रूममेट्स, पड़ोसी अड़ोसी, जिसको लाना है लाओ और एंजॉय करो नॉर्थ शोर दिवाली. दैट्स सो कूल यार, दैट्स सो कूल, मजा आएगा. लाइक यू नो, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. बट यस, ये रही होम सिक रेमेडीज. आज का जो मैसेज मैंने पिक किया है वो है, इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है एक्चुअली. लेट मी जस्ट रीड इट आउट. एक्चुअली इनका काम को ना मैसेज जो है काफ़ी पसंद आया तो इसलिए मैंने ये रखा है. बट यस, नाम इनका नहीं है, इन्होंने नाम नहीं दिया. मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर आप मैसेज भेजें तो हो सके तो आप नाम भेजिए ताकि पता पड़े यू नो टू हूम आई एम टॉकिंग. बट नहीं भी भेजा है कोई बात नहीं. इनका जस्ट मैसेज आया है. एक्चुअली इनको कैसे पता कि मैंने मैसेज भेजा है? क्योंकि शायद इन्होंने लिखा है, इन्होंने ही नाम नहीं लिखा है, इस वजह से इनको लग गया कि अरे मैंने अपना नाम नहीं लिखा है. सो दैट्स सो ऑन टारगेट है. ये है तरुण भाई, वो कह रहे हैं वॉक्ड इनटू द लोकल सुपरमार्केट यस्टरडे इवनिंग शिवरिंग फुली बंडल्ड अप इन माय हैवी काठमांडू पफर जैकेट, थिक वुलन सॉक्स एंड बूट्स व्हाइल आई वाज स्टैंडिंग इन द डेयरी सेक्शन ग्रैबिंग मिल्क. अ लोकल कीवी ब्लॉक कैजुअली strolled past me completely barefoot wearing rugby shorts and singlet picking up ice cream. this two things happened yesterday. Hai, aap itni thand mein full upar se niche tak covered aur wahan pe dusri taraf ye aate hain, to you know half things barefoot bhi hai aur kuch bhi हाथों में भी ग्लव्स नहीं है, एंड देन रग्बी शॉर्ट्स भी पहन रखा है, सिंगलेट. एंड यस, ये क्वाइट कॉमन एक्चुअली, बट दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू बीइंग कमिंग फ्रॉम योर कंट्री. दिस इज़ एक्चुअली, ये काफ़ी कॉमन है फ्रॉम नॉर्थ आइलैंड टू द साउथ आइलैंड एज वेल. ये मैं काफ़ी मीम्स देखता हूँ एंड ऑफकोर्स आई कैन रिलेट इट एज वेल, बिकॉज मैं नॉर्थ में अभी रह रहा हूँ और मैं साउथ में रहा हूँ 8 साल, तो आई नो हाउ इट फील्स. जब भी ठंड आती है, जब भी ठंड न्यूजीलैंड में शुरू होती है, लाइक लिटरली साउथ में जब स्नोफॉल्स होती है, ये सब होती है, तब मीम्स आने शुरू हो जाते हैं कि हाउ नॉर्थ आइलैंडर्स लिविंग. दे आर शिवरिंग, दे आर फुली क्लोथ एंड दे आर लाइक लिटरली 15 डिग्री से नीचे जाते ही उनको एकदम हीट पंप चालू करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है. वाइल ऑन अदर साइड द साउथ आइलैंडर्स आर लाइक यू नो दे आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट विदाउट लाइक लिटरली हाफ ये शॉर्ट्स पहन रखे एंड देन दे आर वॉकिंग अराउंड विदाउट सो मच फीलिंग कोल्ड, जबकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है. सो ये काफ़ी डिबेट होती है. बट यस, यहाँ पे कौन एग्री करेगा? इफ एनीवन इज देयर हु वुड लाइक टू शेयर विथ मी डिफरेंस ऑफ विंटर दे हैव एक्सपीरियंस, एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफ़ी लिसनर्स होंगे जो साउथ में भी रहे होंगे और नॉर्थ में भी रहे होंगे. सो आप मुझे कंपेयर करके बता सकते हैं लाइक हाउ यू फील बेटर, वॉज इट बेटर इन साउथ और इज इट बेटर इन नॉर्थ? तो ये आप मुझे जवाब दीजिए और बताइए, मुझे कॉल करके बताइए प्लीज़. 0800-004-866 पे मुझे कॉल करिए एंड लेट्स शेयर द थाट्स. बट थैंक यू सो मच तरुण भाई. अभी इसका तो मैं क्या ही जवाब दूँ, लाइक बस मैं ये कह सकता हूँ कि कवर करो, शो ऑफ. देखो, हो सकता है वो यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं तो उनको इतनी ठंडा लगती हो, बट आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए और बॉडी को फुली कवर रखिए अनटिल अनलेस यू डोंट फील योरसेल्फ कि भाई नहीं, अब मैं झेल सकता हूँ. यू नो आई कैन I'll be fine. I'll be very comfortable with that much of cold. क्योंकि मैं, for example, एक live example मैं अपने आप का भी बताता हूँ. जिस तरह से मैं South Island में रहा हूँ 8 साल, तो अब मैं whenever I go to India during peak winter time, during December, January, तो literally I am walking around without jackets. और in fact, काफ़ी ऐसे shoots करते हैं, जैसे music video में बनाता रहता हूँ, तो हम midnight shoots करते हैं, तो वहाँ पर literally मैं, लड़के लोग तो क्या लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जैकेट दे दिया करते, या फिर उनका ध्यान रखने के लिए, या फिर उनको उनकी केयर करने के लिए देते हैं. मैं लॉन्डो को दे रहा था वहाँ पे कि हाँ पे तू रख यार, तू मेरा जैकेट पकड़. सो माय पॉइंट इज़ कि उनको इतनी ठंड लग रही थी वहाँ पे, बट आई वॉज ओके, आई वॉज लिटरली ओके. बट यस, अगर कॉल आता तो बहुत ही बढ़िया होता, मैसेज आता तो, मैसेज तो खैर आए हैं एक, मैं थोड़ी देर में उसके बारे में पढ़ूंगा. बट यस, थैंक यू सो मच तरुण भाई, एंड यू हैव अ लवली डे.
0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
0: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
0: बस इतना ही.
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
12: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
13: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks! On now at Pack and Save.
14: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
15: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
14: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
16: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
17: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
18: अब हमारा क्या होगा?
15: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
5: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
19: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
3: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
20: Lunchbox with Ketan.
21: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
3: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: से चढ़ गए।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड हिस्ट्री, ओरे वेरा एंटी टेरर रेड्स 2007 में हुआ था, आज ही के दिन। जी हाँ, न्यूजीलैंड में एक मेजर पुलिस ऑपरेशन हुआ था जिसमें ओरेवेरा रेड्स के नाम से जाना जाता है। पुलिस ने टेररिज्म सुपरेशंस एक्ट के एक्ट का जो हवाला था उसे देते हुए 18 लोगों को अरेस्ट किया, और ये रेड्स बे ऑफ प्लेंटी के रोआटोकी और फकताने के साथ ऑकलैंड, हैमिल्टन, पामर्सन नॉर्थ और वेलिंगटन में भी की गई थी। पुलिस की एलिगेशन थी कि ओरेवेरा रेंजेस में मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं। अरेस्ट होने वालों में माओरी एक्टिविस्ट टेम इल्टी भी शामिल थे। 2012 में टेम इल्टी और तीन दूसरे लोगों पर ट्रायल हुआ और जूरी क्रिमिनल ग्रुप में पार्टिसिपेशन के चार्जेस पर एग्रीमेंट तक नहीं पहुंची, लेकिन चारों फायर आर्म्स ऑफेंसेस के लिए गिल्टी पाए गए। एंड 2013 में इंडिपेंडेंट पुलिस कंडक्ट अथॉरिटी ने कहा कि रेड्स के दौरान पुलिस ने लोगों को अननेसेसरली थ्रेटन और इंटिमिडेट किया था। अगले साल पुलिस कमिश्नर माइक बुश ने रेड्स में हुई गलतियों के लिए माफी भी मांगी, और ये इंसिडेंट न्यूजीलैंड में पुलिस पावर्स, सिविल लिबर्टीज और माओरी कम्युनिटीज के साथ पुलिस के ट्रीटमेंट पर एक काफी इंपॉर्टेंट डिबेट बन चुका था। बढ़िया साहब, बने रहिए, अभी थोड़ी देर में आपको और भी दिलचस्प मैं बताने वाला हूँ। एक यू नो कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिया वर्सेस ऑल वाइट्स होने वाला है बहुत ही जल्द, 12 नवंबर को, तो उसके बारे में कॉम्पिटिशन है जहाँ पे आप जीत सकते हैं कुछ अमेजिंग सा प्राइज। तो बस सुने रहिए, बनते रहिए आज के इस खूबसूरत लंच बॉक्स शो में। अभी इश्क दे फनियार ये सुनिए।

0: What a song, yaar. Toshi Sabri, Sharib, sorry, not Shabri, but they are like brothers duo, jo music industry mein hai, Bollywood music industry mein, I think 2005-2006 se, aur unka jo pehla gana tha, was like literally on another level. If you remember the song,
1: Tujhe milke laga hoon ye, tujhe dhoond raha tha main.
0: बहुत सही गाना था, बहुत सही. आज भी उतनी ही पावरफुल यू नो वाइब्स आती है उस गाने से. पर एनीवेज, जो मैं कंपटीशन की बात कर रहा था वो है हम एफएम, यानी कि हमारा जो रेडियो है वो वांट्स टू सेंड यू टू द बिग मैच. घर बैठ के टीवी देखना तो होता ही रहता है, बट यस, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप फुटबॉल फैंस आप हो या ना हो, द ऑल वाइट्स आर टेकिंग ऑन इंडिया इन ऑकलैंड ऑन थर्सडे 12 नवंबर को. एंड ऑफकोर्स थैंक्स टू न्यूजीलैंड फुटबॉल, आप खुद गो मीडिया स्टेडियम में लाइव जाके अपनी आंखों से विदाउट एनी टेलीविजन और समथिंग आप खुद जाके वहां पे देख सकते हैं ये मैच. तो यस, हम दे रहे हैं डबल पास. और कैसे, आपको हमारे फेसबुक पेज पे जाना है, वहां पे पोस्ट देखना है, उस पे उसके कमेंट सेक्शन में जाके टैग करना है अपने उस शख्स को जिसके साथ आप ये मैच देखना चाहते हैं, और फाइनल स्कोर जो है उसे भी प्रेडिक्ट करना वहां पे, बिकॉज उसके थ्रू ड्रॉ में शामिल होंगे और आप जीत सकते हैं डबल पास. सो यस, द ऑल वाइट्स हैव प्रीवियसली जब फेस किया था तब पहला मैच तो ड्रॉ हुआ था 1981 में, और दूसरा जो है वो 2-1 से जीती थी 2018 में. सो ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया 12 नवंबर, डोंट फॉरगेट, गो मीडिया स्टेडियम के अंदर. एंटर नाउ ऑन हम्स फेसबुक पेज, और जितना जल्दी हो सके आप ट्राई करिए वहाँ पे. एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो.
2: लंच बॉक्स विद केतन.
3: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
2: इसके पीछे
4: हम.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
5: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
6: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
7: That is very that is a very acceleration.
6: That's a very acceleration. Yeah.
7: Amazing acceleration.
6: This is my fancy English. That's a very.
7: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Weekdays 6 to 10 a.m. TradeDepot.co.nz.
9: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
2: TradeDepot.co.nz.
7: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
10: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
11: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
12: Enrolled yet?
11: How about you?
12: Are you enrolled?
13: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
14: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु केंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु कुंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
15: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु कुंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800-564-424.
16: The sky cracks open. Your nemesis descends. He's brought an army.
17: It's a bit dramatic.
16: And there you are, cape billowing, jaws set, underwear over your pants. The fate of Tamaki Makaurau rests on your buff shoulders, so you leap into the sky, adjust your underwear, and shout!
18: The next station is Te Waihorotiu.
19: Watch, scroll, draw, game, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains, and ferries.
4: At PB Tech, they keep it no frills, so they can bring you those best price thrills. Say no to fancy stores and yes to better deals. Search pbtech.co.nz. Check, check.
17: Your favourite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki. All together Auckland.
20: Diwali aa rahi hai aur Fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Rosskill ya Botany in Namaste Indian Supermarket se koi bhi 2 Fortune ya Simply products khareediye aur jeetiye $501 ka trolley dash. Saath mein har hafte 10 winners ko $101 ka in-store credit. Bas entry form bharo, receipt lagao aur entry box mein dal do. Fortune Diwali, be in to win. Ends 15th November. T's and C's apply.
21: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
22: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
21: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
23: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI.
24: Lunchbox with Ketan.
25: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
26: चटनी शॉट्स.
0: चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है. फटाफट से मैसेज पढ़ लेते हैं. मैसेज नहीं, एक्चुअली न्यूज़ पढ़ लेते हैं. न्यूजीलैंड में कांस्टेबल डेविड क्रैम्प को फैमिली शूटिंग के दौरान 3 लोगों की जान बचाने में उनकी इंपॉर्टेंट रोल के लिए पुलिस एसोसिएशन का 2026 ब्रेवरी अवार्ड दिया गया है. ये इंसिडेंट 14 जनवरी 2026 को होरोफेनुआ के वाइटाकरे बीच में हुआ था, जब कांस्टेबल क्रैम्प और एक दूसरे ऑफिसर को घर में शूटिंग की इंफॉर्मेशन मिली. जब तो वहाँ एक 9 साल की डिस्ट्रेस्ड बच्ची ने दरवाज़ा खोला. ऑफिसर्स घर के अंदर गए और उन्हें एक आदमी हैवीली ब्लीडिंग मिला. पास में पिस्टल भी थी. घर के अलग अलग रूम्स में एक वुमेन और 2 यंग मैन गनशॉट इंजरीज के साथ मिले. सस्पेक्ट 60-year-old बेंजामिन हैरी टिमेंस की सीन पर डेथ हो गई. कांस्टेबल क्रैम्प ने अपनी मिलिट्री फर्स्ट एड ट्रेनिंग के का यूज़ करके इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया. जब मेडिकल इक्विपमेंट कम पड़ गए तो उन्होंने बैंडेज पैकेजिंग का प्लास्टिक यूज़ करके चेस्ट इंजरीज के लिए टेम्प्ररी सील बनाया. अवार्ड कमेटी ने कहा कि उनकी क्विक डिसीजन और मेडिकल असिस्टेंस ने 3 सर्वाइविंग विक्टम्स की जान बचाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. वाह.
27: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हालचाल, आज 19 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 100% चांस है बारिश के, 5.4 mm हो चुका है रिकॉर्ड, और आज का सनसेट होगा 7:38 पे, 7:38 PM पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना।